हम आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सनसिटी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर आज शनिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 19वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 9 मई 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हुए हैं। आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सनसिटी चैनल पर हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है।

0: यह आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सेंसिटिव चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सवेरे के 6 बजने को हैं। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी

0: प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आर एन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले दो टैंकरों को रोक दिया है।

0: एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले दो टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माही, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। आइए अब आपको ले चलते हैं विविध भारती मुंबई, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदन वार।

आइए सुने आज का चिंतन। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है, जो कुछ हमारा है वो हम तक आता है यदि हम उसे ग्रहण करने का सामर्थ्य रखते हैं। आइए सुने भक्ति संगीत।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें विविध भारती से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर बाद 6:35 से आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 183। संगीत सरिता कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 6:45 से और इसका पुनः प्रसारण संध्या 6:45 से। आज आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आज इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। सुबह 7 बजे से आनंद लीजिए भूले बिसरे गीतों का और 7:30 से कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। 8 बजे का समय रहेगा समाचारों के लिए और 8:15 से कार्यक्रम होगा।

ತ್ರಿವೇಣಿ. चित्रलोक कार्यक्रम का प्रसारण समय सुबह 8:30 से. पार्श्व गायक तलत महमूद पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार आप सुन सकेंगे सुबह 9:30 से. दस बजे पिटारा में गीतों भरी कहानी, कहानी है सपने में ठिठका इंतजार, लेखिका और स्वर ममता सिंह. 11 बजे से चित्रपट संगीत और 11:30 से कार्यक्रम मैटनी शो. 12 बजे आप सुनेंगे समाचार और 12:05 से सजे की यादों की महफिल. 2 बजे के सुरीला सफर कार्यक्रम का आनंद उठाइए दिन में 1 बजे से और 2 बजे से कार्यक्रम त्रिवेणी. 2:15 से समाचार होंगे और 2:30 से आप सुनेंगे सदाबहार नगमे. 7 आज शनिवार है और आज दोपहर 3 बजे से आप सुनेंगे अपना मनचाहा कार्यक्रम मन चाहे गीत. दोपहर 3:30 से नाट्य तरंग के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे नाटक पोस्टमैन का पहला भाग. के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद है ये और हिंदी अनुवाद किया है P.S. कृष्णस्वामी ने, निर्देशक महेंद्र मोदी. शाम 4 बजे आज पिटारा लाएगा बॉम्बे टॉकीज, जिसमें आप सुनेंगे गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रिकर की बातचीत. 5 बजे से छाया गीत और 5:30 से तराने नए पुराने. 6 बजे का समय रहेगा समाचारों के लिए. तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुन सकेंगे समाचारों के बाद 6:05 से और 6:35 से संध्या रंजन. संध्या 7 बजे से विशेष जयमाला कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे पार्श्व गायक मनहर उदास द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला. और हाँ, 7:45 से आज इंद्रधनुष में जिज्ञासा. रात्रि 8 बजे हवा महल के अंतर्गत आज सुनो कहानी. सुनो कहानी में आज हम आपको सुनवाएंगे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पत्नी का पत्र. आज आप इसका दूसरा भाग सुनेंगे, स्वर है ममता सिंह का. रात्रि 8:15 से कार्यक्रम चित्रलोक प्रसारित किया जाएगा और 8:45 से समाचार. रात्रि 9 बजे से कार्यक्रम होगा आपके लिए और 9:30 से आज के फनकार, जो केंद्रित होगा पार्श्व गायक तलत महमूद पर. रात्रि 10 बजे से छाया गीत और 10:30 से कार्यक्रम ढलती जाए रात. तो ये थी जानकारी विविध भारती से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की. और अब आइए सुनते हैं रामचरितमानस का भाग 183.

सुमंत्र से राम लक्ष्मण और सीता के वनगमन का वृत्तांत सुनकर राजा दशरथ के हृदय में हूक उठती है और वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। रानियां विलाप कर उठती हैं।

रानी कौशल्या अंतस में उठती व्यथा और सजल नेत्रों से सूर्यकुल का अंत होता देख रही है। महाराज को वो धीरज बंधा रही हैं। राम वियोग के अथाह सागर में डूबते अयोध्या रूपी जहाज के वे ही एकमात्र कर्णधार हैं। यदि उन्होंने भी धैर्य छोड़ दिया तो सबका डूब जाना निश्चित है। रानी के सांत्वना भरे वचन सुनकर महाराज आंखें खोलते हैं। उनकी जिह्वा पर मात्र एक ही रट है, राम कहाँ हैं? कहाँ हैं लक्ष्मण और उनकी प्रिय बहू जानकी? उनके सजल नेत्रों में वर्षों पहले का चित्र उभरता है, श्रवण कुमार के पिता अंधे तपस्वी का अभिशाप। रानी कौशल्या को वो दुखद कथा सुनाते हुए पुत्र विरह में शरीर त्याग महाराज दशरथ सुरलोक सिधार जाते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का भाग 183। हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

श्रोताओ नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी।

0: कल्पना जोकरकर आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। महिला रचनाकारों की बंदिशें इस श्रृंखला की आज अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं और आमंत्रित कलाकारों का हम स्वागत कर रहे हैं। कल्पना जी, हमें बताइए कि क्या शास्त्रीय संगीत में महिलाओं की रचना शैली पुरुषों से भिन्न रही है?
2: जी जी, बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि पहले जमाने में जो रचनाएं बनाई गई वो अधिकतर पुरुषों द्वारा ही बनाई गई है, रचित की गई है
1: जी।
2: तो उसमें उनके मन के भाव परिलक्षित होते हैं, या जो वर्णन किया जाता है वो महिला के लिए उद्देश्य से किया जाता है
1: जी, जी।
2: कई रचनाओं में नृत्य के लिए उपयोगी बंदिशें बनाई गई है, इसमें भक्ति भाव है
1: जी।
2: तो वो एक अलग एस्पेक्ट था। और अब जो महिलाएं बंदिशें बनाती है उनके मन के भाव अधिकतर हमको उसमें दिखाई देते हैं
1: जी।
2: और उसके साथ में श्रृंगार और मधुर शब्दावली और अलग अलग मन की भावनाओं को प्रकट करना, व्यक्त करना, ये अधिकतर हमें दिखाई देता है आजकल की जो महिला रचनाकार बंदिशकार हैं उनके।
1: तो आज किन बंदिशकार की चर्चा आप करेंगे?
2: आज हम डॉक्टर अश्विनी भिड़े देश पांडे जी के बारे में हम जानकारी बताएंगे और उनके द्वारा बनाई हुई बंदिशों को भी प्रस्तुत करेंगे। अश्विनी जी ने संगीत की तालीम जयपुर अतरौली घराने की गायिका और उनकी माँ श्रीमती माणिक भिड़े जी से तालीम हासिल की, जो गान सरस्वती किशोरी अमोनकर जी की शिष्या थी। उसके साथ ही उन्होंने रत्नाकर पई जी से भी संगीत का मार्गदर्शन प्राप्त किया और शैक्षणिक क्षेत्र में भी आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है और बहुत सुंदर सुंदर बंदिशों का उन्होंने रचनाओं का संकलन राग रचनांजलि के माध्यम से, एक पुस्तक के माध्यम से उन्होंने किया है
1: जी।
2: और अनेक शिष्यों को आजकल वो तैयार कर रही है घराने की परंपरा के अनुसार और अलग अलग शैलियों की शिक्षा भी वो प्रदान कर रही है
1: जी। तो जी, आज की इस कड़ी में किस राग की चर्चा की जाए?
2: आज अश्विनी जी ने बनाई हुई बंदिशों में से राग सोहनी में एक बंदिश आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, बेग मोरी सुधारो करतार
1: जी।
2: तो राग सोहनी का थोड़ा सा चलन मैं बताती हूँ और अनुजा आपके सामने वो बंदिश प्रस्तुत करेगी
1: जी। स्वागत है।

0: वाह अनुजा जी, आपने तो मंत्रमुग्ध कर दिया। ये जो तान ली आपने इस बंदिश में, बहुत अच्छा लगा। ये खूबसूरत अंदाज हम सबको बहुत पसंद आया, और राग सोहनी पर आधारित ये रचना थी, अपने श्रोताओं को बता दें। अब कल्पना जी बताइए कि हमारे श्रोताओं के लिए अब क्या प्रस्तुत करेंगी आप?
1: अब अश्विनी जी ने गाई हुई, अश्विनी जी ने बनाई हुई बंदिश आपको राग नंद में हम आपको सुनवाते हैं, मोहे करण देरे, ताल तीन ताल में
0: जी।

0: संगीत सरिता की आज की इस कड़ी में हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर अश्विनी भिड़े देश पांडे की। अब इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं और कल के संगीत सरिता कार्यक्रम में हम कुछ और जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: महिला रचनाकारों की बंदिशें, आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, आपसे बातचीत कर रही थी ममता सिंह। गायन सहभाग रहा अनुजा जोकरकर का, तबला संगति यति भागवत की और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनवणे। आपको बता दें इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

श्रोताओं नमस्कार। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के साथ हाजिर हैं हम। आइए शुरुआत करते हैं तलत महमूद और आशा भोसले के गाए इस गीत के साथ।

सोने की चिड़िया फिल्म के इस गाने से हमने शुरुआत की आज के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम की। युगल स्वर थे तलत महमूद और आशा भोसले के, साहिर लुधियानवी की रचना थी, ओपी नैयर का संगीत। साथियों, मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद की आज पुण्यतिथि है, तो आज के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में उनके कुछ नायाब गीतों को हमने शामिल किया है। चलिए अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं जिसमें संगीत है मदन मोहन का, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाजों में। पॉकेटमार फिल्म का ये गाना क्या कहता है, आइए सुने।

0: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के अगले गाने की ओर बढ़ें उससे पहले ये संदेश
1: सुनिए।
2: कहिए सुनिए एक खुशखबरी।
3: कहिए ना।
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। साथियों, इन भूले बिसरे गीतों की मिठास एक सुकून देती है। इनका सौंदर्य, इनकी खूबसूरती यूं ही बरकरार रहेगी। चलिए एक और मीठा सा गीत सुन लेते हैं।
4: सावन की रातों में ऐसा भी होता है, राही कोई भूला हुआ, तूफानों में खोया हुआ राह पे आ जाता है, ऐसा भी होता है।

0: ये गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम पत्र फिल्म से, और स्वर थे लता मंगेशकर और तलत महमूद के। गुलजार की रचना थी सलिल चौधरी का संगीत।
1: मिलती है धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना। विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी।
2: तुम आ गए
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: जी हाँ, इस वाद्य संगीत ने संकेत दे दिया, एक छोटे से अंतराल का समय हो चला है, अभी हाजिर होते हैं।
3: के गुणों से भरा वीको टर्मरिक WSO क्रीम, जो आपके चेहरे के कील और मुहासे दूर करे और आपको दे प्राकृतिक सुंदरता, अब सिर्फ 10 रुपए के सैशे पैक में भी।
4: वीको टर्मरिक WSO क्रीम।
0: अंतराल था, पलक झपकते ही पूरा हो गया। हम फिर से हाजिर हो गए भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के कुछ और अनमोल गीतों के।

मोहब्बत की धुन बेकरारों से पूछो। दिले नादान फिल्म का ये गाना आपने सुना, तलत महमूद, सुधा मल्होत्रा और जगजीत कौर के युगल स्वर थे। शकील बदायूनी की रचना को सुरों में ढाला था संगीतकार गुलाम मोहम्मद ने। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: सी रामचंद्र के संगीत से सजा ये गाना आपने सुना तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाजों में। जानिसार अख्तर के बोल थे, फिल्म का नाम था यास्मीन।
1: एक बेमिसाल शायर।

0: एक शानदार शख्सियत।
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से,
1: मैंने पढ़ा जाने की इतनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती।

तलत महमूद का गाया नगमा फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे, जिसका संगीत तैयार किया था नौशाद ने। अनिल बिस्वास का संगीत, प्रेम धवन की रचना, तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाजें, फिल्म का नाम तराना।

तलत महमूद और लता मंगेशकर के गाए इस युगल गीत के साथ ही अब आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या इंडिया पोस्ट।
2: सुरीली धड़कन विविध भारती पर हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।

जहां आरा फिल्म के इस गाने के साथ हमने हम है राही प्यार के कार्यक्रम की शुरुआत की। लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें थीं, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे मदन मोहन की तर्ज। अगले गाने में तलत महमूद के साथ सुरैया की आवाज। क्या कहता है वारिस फिल्म का ये गाना, आइए सुने हम और आप साथ साथ।

0: तलत महमूद और सुरैया का गाया वारिस फिल्म का ये बड़ा ही सुरीला मीठा सा गीत आप सुन रहे थे। कमर जलालाबादी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार अनिल बिस्वास ने। चलिए अब अगले गाने की ओर बढ़ें जिसमें तलत महमूद के साथ लता मंगेशकर की आवाज़ है, शैलेंद्र की रचना है, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार,
2: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
1: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
2: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर।
0: तो चलिए अब बढ़ते हैं सलिल चौधरी के संगीत की ओर, शैलेंद्र की रचना, तलत महमूद और लता मंगेशकर के युगल स्वर।

उसने कहा था। फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाजों में। तो चलिए अब ले लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा अंतराल, उसके बाद फिर से हाजिर होते हैं।

इस छोटे से अंतराल के बाद हम है राही प्यार के कार्यक्रम के साथ हम फिर से हाजिर हो गए और अब बढ़ेंगे खयाम की तर्ज की ओर। साहिर लुधियानवी की रचना है, तलत महमूद और मुबारक बेगम की आवाजों में आइए सुने शगुन फिल्म का ये गाना।

0: एक शानदार शख्सियत।
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से,
1: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

हमें राही प्यार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं जयदेव की धुन की ओर। वीएम आदिल के बोल हैं तलत महमूद और आशा भोसले की आवाजों में। आइए सुने समुद्री डाकू फिल्म का ये दो गाना।

सुबह का तारा फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर और तलत महमूद के युगल स्वरों में, नूर लखनवी के बोल थे, सी रामचंद्र का संगीत, और यही थी आज के हम है राही प्यार के कार्यक्रम की आखिरी सुरीली पेशकश। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है। अब समाचार दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
2: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल RN रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का

0: नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
1: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
1: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवी के को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवी के ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प
3: योजना उन नौजवानों के लिए।

0: जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
5: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it called Manavka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
2: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की

0: मृत्यु हो गए। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोक सत्य ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर एआई समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है चैटबॉट है नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक एआई चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिन्दुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। सवेरे के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुन रहे हैं वनवास फिल्म का ये गीत नाना पाटेकर शान मोंटी शर्मा की आवाज में, सुनील सिरवैया के बोल और मोंटी शर्मा का

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
3: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
4: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
5: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
4: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

श्रोताओ, फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आप सुन रहे हैं अखंडा फिल्म से। सपना पाठक की आवाज, किशन पालीवाल के बोल और थमन एस का संगीत।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
4: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
5: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
6: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
5: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

FM बैंड 102.1 MHz पर यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है। सवेरे के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार।

ऑनलाइन स्वागत सुप्रभात नमस्कार। एक नया दिन नया उत्साह और नया अंक। नमस्कार कार्यक्रम का इस वक्त आप सुन रहे हैं जोधपुर के आकाशवाणी केंद्र पर और इस कार्यक्रम में हम आपके साथ करते हैं बहुत सारी बातें, साथ ही साथ जानकारियों का पिटारा आपके सामने खोलते हैं और सूचनाओं के साथ गानों का भी साथ होता है। तो आप बने रहिए इस कार्यक्रम के साथ, बहुत सारी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल बता देते हैं कि आज की टीम में कौन कौन है जिनके सहयोग से आप तक पहुँच रहा है कार्यक्रम नमस्कार।

0: कंट्रोल रूम से हमारे साथ हैं गजेंद्र सिंह जालसू। ट्रांसमीटर पर है सीएल सोनी और चंद्रराम पटेल। अनाउंसर ऑन ड्यूटी है शैला माहेश्वरी और एफएम चैनल पर है सत्येंद्र चारण। प्रोग्राम प्रोड्यूसर है नमस्कार के संजय व्यास और संयोजन किया है राजेश लामरू ने। पूरी टीम के साथ मैं सोफिया खान
1: और मैं अर्चना चौहान।

नमस्कार में ढेर सारी बातें, सूचनाएं और जानकारियां आपको देंगे, लेकिन फिलहाल बढ़े चलते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: जी हाँ दोस्तों, शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन के साथ में 2 दिन की छुट्टी भी मिली है और इन छुट्टियों में पार्टी का मूड तो बनता ही है। और कहते हैं कि जब ये शनिवार की छुट्टी आती है तो हमारे जो पेंडिंग काम है वो तो हम करते ही हैं, साथ ही साथ नए सप्ताह की शुरुआत में क्या करना है वो भी सोच के रखते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन सोफिया, जो ये शनिवार की छुट्टी आई है, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें भी है, क्योंकि अभी तो बच्चों के स्कूल्स चल रहे हैं, उसके बाद में समर वेकेशन का जो इतना लंबा इंतजार है वो खत्म होने वाला है, तो उसके लिए कुछ प्लानिंग व्लानिंग की या नहीं?
1: प्लानिंग तो होती ही रहेगी और प्लानिंग बड़ों से ज्यादा जो है बच्चों की हो रही है, क्योंकि उन्हें ये उत्साह है कि कब छुट्टियां पड़े और कब नानी के घर जाए जाए।
0: और जो हमारे बिछड़े हुए लोग हैं जिनसे हमें मिलने का मौका मिलता है तो वो एक अवसर बन जाता है इन समर वेकेशंस में। तो हम तो अपने दोस्तों से यही कहना चाहेंगे कि ये समर वेकेशंस में आप भी अपने लोगों से मिलिए और जो ये रिश्तों में थोड़ी सी जो दूरी आ गई है उसे पाट लीजिए।

0: जब हैरी मीट सेजल, इस फिल्म से ये गाना सुना दोस्तों आपने, और गाने से पहले बात की थी कि रिश्तों को पाटना चाहिए, यानी रिश्तों में जो दूरी है उसे खत्म करना चाहिए। रिश्तों में दूरी इसीलिए भी हो जाते हैं क्योंकि कामकाजी जो जीवन है हमारा, घर से दूर रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, कई बार बच्चों से भी दूर रहना पड़ता है। और ये जो दूरी है, ये जो टाइम है, इस टाइम का जो शब्दों में इसको हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक माँ है अगर अपने बच्चों से दूर रही है कामकाज के दौरान, अगर एक पिता है अपने परिवार से दूर रह रहा है, तो उसकी जो मनोस्थिति होगी वो क्या ही होगी।
1: बिल्कुल, बहुत सही बात कही है आपने। और ये एक मौका होता है जब आप अपने बच्चों के साथ में वक्त गुजार सकते हैं, क्योंकि बच्चे भी आजकल अपने स्कूल्स और पढ़ाई में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो माँ बाप के साथ में टाइम नहीं दे पाते। और सोफिया, एक और बात है कि जब हम अपने समर वेकेशंस में रहा करते थे तो दादी नानी का घर तो हुआ ही करता था, साथ ही साथ हमारे जो भी रिलेशन में होते थे जैसे मामा मासी, वो सब भी आते थे, और जो उनके बच्चे थे उनके साथ भी हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग हुआ करती थी। लेकिन आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को समर वेकेशंस में भी किसी ना किसी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए डाल देते हैं, या तो वो खेल हो सकता है, या कोई म्यूज़िक हो सकता है, या फिर कोई और काम भी हो सकता है जिसके ज़रिए वो अपने बच्चों को दिन प्रतिदिन नई स्किल सिखाते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है कि बच्चों को आप नया कुछ सिखाएं। लेकिन

0: जो ये आपसी जो व्यवहार है,
1: तालमेल है,
0: तालमेल है, जो रिश्तों की गर्मी है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है। लेकिन समय के साथ तो हमें बदलना ही पड़ेगा, और समय के साथ एक नया गाना भी आपका इंतजार कर रहा है।
2: भड़क दिल धड़क धड़क गया, अटक अटक ना माना, लट गई रे उलझ गए कैसे कोई हट गया, मन से लिपट अनजाना, वो नील अंग सा रूप रंग लंग समाधि प्रेम भंग, अंग

हाँ दोस्तों, कान्हा पे राधा का और राधा पे कान्हा का रंग तो हमेशा से चढ़ता आया है, लेकिन हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका रंग हम पे चढ़ता है। कहते हैं ना कि हम सब जो आपसी रिश्तों में, आपसी संबंधों में ही बंधे हुए हैं। कुछ लोग हमें ताने देते हैं, कुछ शाबाशी भी, कुछ लोग छोड़

0: जाते हैं, कुछ साथ निभाते हैं। कोई आपका हाथ थाम लेता है तब जब आपको सबसे ज्यादा उसकी जरूरत होती है, और कोई आपको सिखाता है कि डरकर भाग जाना चाहिए, लेकिन क्या करना है क्या नहीं करना है यह निर्णय आपका ही होना चाहिए। जब आपको ठहरना है तो ठहर जाइए, लेकिन वो ठहरना कुछ समय के लिए होना चाहिए, उसके बाद बस चलते रहना है, क्योंकि जो रास्ता है वो तभी पार होगा जब आप चलते रहेंगे।
1: बिल्कुल, चलते रहना ही है। और चलते चलते एक गाना भी सुन लेते हैं।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
2: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
3: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबरा कर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: आज खुद को आजमा ले, एक मौका जरूर देती है जिंदगी हमें आजमाने का। वो वक्त ऐसा आता है श्रोताओं के उसमें हमको खुद को उस जीवन के हिसाब से मोड़ना ही होता है, क्योंकि हम कुछ और तय कर रहे होते हैं और हमारी लाइफ जो है वो कुछ और तय कर रही होती
1: जी
0: है।
1: जी हाँ, और इसलिए कहा भी गया है कि जो मन का करो तो भी अच्छा, और जो मन का ना हो वो और अच्छा होता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपके ईश्वर की वो जो रजामंदी होती है, सहमति होती है, वो शामिल होती है। इसलिए कहा जाता है कि ज़िंदगी जो ये उतार चढ़ाव आपको सिखाती है, दिखाती है, वो कहीं ना कहीं आपको नया कुछ सिखा के तो जाती है, साथ ही साथ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग भी बनाती है।
0: बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तो बनाती है, हर मोड़ पर ज़िंदगी का एक अलग ही लेसन होता है हमारे लिए। हमारी जो व्यस्तताएं होती है, हमारी जो प्रायोरिटीज़ होती है, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक तरफा हो जाती है और हमें उसका दूसरा पक्ष जो है वो चूज़ करना पड़ता है। और इसी के साथ श्रोताओं बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ।

ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज। प्रदेश में 479 बेंच 7.5 लाख से अधिक मामलों का निपटारा करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि नई सोच और बेहतर तालमेल से जीते जाएंगे। ग्राम 2026 के तहत हैदराबाद में हुई इन्वेस्टर मीट में 200 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए गए। और प्रदेश में सोमवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार। कई हिस्सों में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सदस्य सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, उपभोक्ता मंचों और स्थायी लोक अदालतों सहित कई स्तरों पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया, जिनमें 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रदेश में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जयपुर पीठ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा ने किया। प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम शर्मा अत्री ने बताया कि लोक अदालत के लिए 479 बेंच का गठन किया गया है। इनमें 7,77,000 से अधिक मामलों को सूचीबद्ध किया गया है। लोक अदालत में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से मामलों का निस्तारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि नई सोच और बेहतर तालमेल से जीते जाएंगे। कल जयपुर में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने नई सैन्य रणनीति के साथ भारत के सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित किया। रक्षा मंत्री ने भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच कमांडरों से भविष्य के लिए तत्पर रहने का आह्वान किया। उन्होंने एआई, स्वायत्त प्रणालियों, डेटा एनालिटिक्स और सुरक्षित संचार नेटवर्क को सशक्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया। दो दिन की इस कॉन्फ्रेंस में नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता पर मंथन किया गया। वहीं नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक ही सीमित नहीं है बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है।
1: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। टीएमआर जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
0: केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत वैश्विक सांस्कृतिक विमर्श में नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। श्री शेखावत कल जोधपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इटली के वेनिस में आयोजित ला बिएनेल में भारतीय कलाकारों की भागीदारी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और पुरानी अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रदर्शनियों में से एक है। इसमें भारतीय कलाकारों की भागीदारी लोकल से ग्लोबल बनने की दिशा में अहम है।
2: भारत के पवेलियन और भारत के कलाकारों की कला ने पूरे विश्व भर के कला साधकों का, कला प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया। न केवल ध्यान आकर्षित किया अपितु तो भारत का पवेलियन वहाँ आज इटली में और देश भर के आर्ट लवर्स के बीच में चर्चा का केंद्र बना। भारत की सहभागिता के चलते हुए भारत के आर्ट लवर्स उनकी गहराई, उनके काम की क्षमता, दक्षता, प्रवीणता, इस सब के प्रति विश्व भर के

0: इसका ध्यान आकर्षित होगा।
1: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। 804 पदों के लिए ली जा रही ये परीक्षा आज और कल दो दिन दो दो पारियों में होगी। बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इस बार अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने के लिए दो स्तरीय सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। बायोमेट्रिक जांच के साथ ही फेस रिकॉग्निशन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पारदर्शी और सुचारू परीक्षा संचालन के लिए सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। ग्राम 2026 के तहत कल हैदराबाद में हुई इन्वेस्टर मीट में 200 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए गए। ये समझौते राज्य में विभिन्न स्थानों पर फूड पार्क, सीड प्रोसेसिंग और फूड प्रोसेसिंग के विकास के लिए किए गए इस बिजनेस मीट में निवेशकों, उद्योग जगत और एग्री टैंक विशेषज्ञों के साथ संवाद किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीट को संबोधित करते हुए कहा कि हैदराबाद का लैब टू लैंड मॉडल राजस्थान के लिए प्रेरणादायी है और राज्य सरकार इसे अधिक मजबूती के साथ लागू करना चाहती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा में गेहूं खरीद के लिए 25% अधिक टोकन जारी करने और मंडियों में पड़े गेहूं के उठाव के लिए पर्याप्त संख्या में रैक लगाने के निर्देश दिए। श्री बिरला कल कोटा बूंदी क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि FCI सहित सभी खरीद एजेंसियां गेहूं लेकर खरीद केंद्र में आए किसानों की तुलाई का काम सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि खरीद का वर्तमान लक्ष्य पूरा होने के बाद भी अतिरिक्त गेहूं खरीद के लिए बारदाना और भंडारण की उचित व्यवस्था रखी जाए। उन्होंने सभी खरीद एजेंसियों को किसानों को समय पर भुगतान करने के भी निर्देश दिए। बैठक में भारतीय खाद्य निगम, राजफेड, तिलम संघ और NCCF के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कोटा मेडिकल कॉलेज में सिजेरियन डिलीवरी के बाद दो प्रसूताओं की मौत और अन्य महिलाओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। कल चिकित्सा आयुक्त BL गोयल के दौरे और प्रारंभिक जांच के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में देर रात एक चिकित्सक सहित तीन कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। UTB में कार्यरत महिला चिकित्सक डॉक्टर श्रद्धा उपाध्याय को सेवा से हटा दिया गया है, जबकि एक अन्य चिकित्सक सहित दो नर्सिंग कर्मियों को निलंबित किया गया है। वहीं वार्ड प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने अस्पताल का दौरा कर दवाओं और ऑपरेशन प्रक्रिया के रिकॉर्ड की जांच की है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। कोटपुतली बहरोड जिले के विराटनगर में करीब 100 से अधिक लोग फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए। उपखंड अधिकारी कपिल कुमार उपाध्याय ने बताया कि ढाणी गैसकांड में एक शादी समारोह में भाग लेने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने पर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि अधिकतर मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाइयों और खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं।
2: डानी गैसकान गांव से यहाँ पर एक फूड पॉइजनिंग की सूचना मिली। लगभग 45 ग्रामीण और 34 बच्चे यहाँ वोमिटिंग की और पेट दर्द की शिकायत के साथ यहाँ आए थे। इनमें से अभी तीन बच्चे अपने एडमिट है, बाकी स्वस्थ होकर लौट रहे हैं और बाकी ग्रामीण जनों का इलाज चल रहा है। ऐसे ही लगभग 14 बच्चे और 16 ग्रामीण के सापुरा भी दिखाने गए थे वहाँ पर, उनके इस शिकायत के आधार पर CBO साहब को मैंने वहाँ भेजा था। अभी तीन बच्चे वहाँ है, बच्चे स्वस्थ है और सबका इलाज करवाया जा रहा है।
1: राज्य के अधिकतर स्थानों पर कल दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार कई शहरों में अधिकतम तापमान में करीब 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में प्रचंड गर्मी का असर बना हुआ है। फलौदी, बाड़मेर और जैसलमेर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार मापा गया। वहीं 17 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में तापमान में फिर बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं 11 मई से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। इसके असर से कई हिस्सों में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज। प्रदेश में 479 बैंक

साढ़े सात लाख से अधिक मामलों का निपटारा करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि नई सोच और बेहतर तालमेल से जीते जाएंगे। ग्राम 2026 के तहत हैदराबाद में हुई इन्वेस्टर मीट में 200 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए गए। और प्रदेश में सोमवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार, कई हिस्सों में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला

0: आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। और नमस्कार में आज आपके साथ है दो साथी अर्चना और सोफिया। और आज का दिन है 9 मई का दिन। और अब बात कर लेते हैं आज के इतिहास की।
1: तो साल 1874 की बात करें तो बॉम्बे यानी अब का मुंबई में पहली बार घोड़े से खींची जाने वाली ट्राम शुरू की गई थी। 1907 में श्रोताओं इसकी जगह इलेक्ट्रिक ट्राम ने ले ली थी।
0: वहीं 9 मई 1945 का वह दिन था जब द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण किया था और जिसे रूस और अन्य यूरोपीय देशों में विक्ट्री डे यानी विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1: सैतालीस में श्रोताओं आज के दिन वर्ल्ड बैंक ने पहली बार किसी देश को लोन दिया था। दरअसल 25 जून 1946 को इस बैंक ने आधिकारिक तौर पर कामकाज शुरू किया था और इसके पास लोन के लिए पहली अर्जी आई थी फ्रांस की।
0: मई 1946 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में गोवा में पुर्तगाली शासन के खिलाफ पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था।
1: साल 1955 में पश्चिम जर्मनी नाटो का सदस्य बना था आज ही के दिन।
0: इससे 5 साल पहले यानी 1950 में सुमन घोषणा की गई थी जिसमें यूरोपीय संघ की नींव रखने वाली ऐतिहासिक घोषणा थी और यह महाद्वीप में एकता का मार्ग प्रशस्त करती रही। वहीं बात कर ली जाए 1960 की तो 9 मई का वह दिन था जब अमेरिका में बर्थ कंट्रोल पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियों को वैध करने का डिसीजन लिया गया था और यह पहला देश बना था जहां पर यह कानून लागू हुआ था। और वहीं आज से काफ़ी साल पहले 1653 में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनाया गया ताजमहल 22 वर्षों के निरंतर परिश्रम के बाद बनकर पूरा हुआ था आज ही के दिन।
1: साल 2009 में नासा ने चांद पर पानी की खोज के लिए टोही यान भेजा था।

0: की खोज के लिए टोही यान भेजा था। और साल 2010 में आज के दिन भारत की वंदना शिवा को विकासशील देशों में महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग देने के लिए साल 2010 के सिडनी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया था। और
1: आज के दिन उन्हें चुना जरूर गया था, लेकिन उन्हें यह पुरस्कार मिला था 4 नवंबर के दिन। दोस्तों, इतिहास की गलियों से बाहर निकलते हैं और जो हमारा रिश्ता जोड़ते हैं सुरों की गलियों से।

0: है कि जो ये सब्जियां होती है वो पूरी तरह पकाई नहीं जाती है, उनको केमिकल के जरिए प्रिजर्व किया जाता है।
1: बिल्कुल। और आज की जो टाइम है, सब्जियां दिखने में भले ही ताज़ी और चमकदार लगती है, लेकिन उनके ऊपर जो कीटनाशक होते हैं, धूल मिट्टी होते हैं और छोटे कीड़े लगे हो सकते हैं। और जो खेती के दौरान फसलों पर कई तरह की दवाएं छिड़की जाती हैं ताकि कीट ना लगे और पैदावार ज़्यादा हो, तो ये जो दवाएं हैं सीधे हमारी थाली तक पहुँच जाती है। और अक्सर हम सब्जियों को बस नल के नीचे 2 मिनट धोकर काम खत्म हो गया ये समझ लेते हैं, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। कई बार सिर्फ सादा पानी से धोना काफी नहीं होता।
0: जी हाँ, ये सब्जियाँ हानिकारक केमिकल के प्रयोग से पकाई जाती है और इनका उपयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकता है। ऐसे में इन्हें प्रयोग में लेने से पहले अच्छी तरह साफ करना बहुत जरूरी है ताकि ये जो कीटनाशक और केमिकल्स है उन्हें दूर किया जा सके। इन कीटनाशकों का उपयोग सब्जियों को कीट से बचाने के लिए किया जाता है और यह बहुत घातक होते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ, सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि हम सब्जी जब लेके आए बाजार से तो उसे गुनगुने पानी में धोए, और इस गुनगुने पानी में अगर आप थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो सब्जियाँ अच्छे से साफ हो पाएगी।
1: बिल्कुल। और नमक के पानी का जो घोल होता है उससे जो सतह पर लगे कीटनाशक के अंश होते हैं और जो मिट्टी और या छोटे कीड़े होते हैं वो काफी हद तक हटाए जा सकते हैं।
0: जी हाँ, अगर इस गुनगुने पानी में आप 2% बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडा मिला देते हैं और उन सब्जियों को 15 से 20 मिनट तक भिगो के रखते हैं, तो 75% जो बैक्टीरिया और कीटनाशक है वो समाप्त हो जाते हैं। और जब आप इसका इस्तेमाल करें तो इसे भिगाने के बाद सादे रनिंग वाटर के नीचे धो सकते हैं।
1: और सब्जियों से पेस्टिसाइड्स को हटाने के लिए भी अगर 3/4 पानी में एक भाग जो है वो सिरका ले लें और सभी सब्जियों को इसमें भिगोकर थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दें, तो ये जो घोल है वो भी कीटनाशकों के अवशेषों को हटा देगा और आपकी सब्जियों को साफ और ताज़ा बना देगा।
0: वहीं अगर आप गाजर, आलू, लौकी जैसी सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं तो इसे साफ करने के लिए आप एक मुलायम ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, ये मुलायम ब्रश से आप इन्हें रगड़ के साफ कर सकते हैं ताकि इनके ऊपर जो एक वैक्स की परत होती है जो इन्हें चमकदार बनाती है उसे आप आसानी से हटा सकते हैं।
1: और ये जो आसान से तरीके हैं वो बहुत ही काम के तरीके हैं श्रोताओं, और जब भी आप इन सारी चीज़ों से अगर पानी को सब्जियों को धो रहे हैं, जैसे नमक का पानी हुआ, विनेगर का पानी हुआ, इसके बाद में एक काम और करना है, फिर से सादे पानी से धोना है।
0: जी बिल्कुल। और जैसे बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती है सोफिया, जैसे कि लौकी हो गई, तुरई हो गई, खीरा और सेब जैसे फ्रूट हो गए, तो इन सब्जियों के ऊपर भी एक वैक्स की पतली सी परत लगाई जाती है ताकि कि इसे चमकदार बनाए सके। तो इन चीजों को तो आप इस्तेमाल करने से पहले इसका छिलका उतार लें, और छिलका उतार कर आप खाते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होता है। वहीं जो पत्तेदार सब्जियां होती है जैसे पालक हो गई, चंदलोई हो गई, मेथी हो गई, इन सब्जियों को आप अगर थोड़ी देर नमक के पानी में रखें और 2-3 बार पानी बदल कर इसे साफ करें तो इसमें से मिट्टी तो निकलेगी ही, साथ ही साथ जो केमिकल्स है वो भी हट जाएंगे।
1: बिल्कुल। ये जो तरीके हैं वो आपके स्वाद और बनावट को खराब करते, बस जरूरत है इनकी सही मात्रा और सही समय की। अगर आप रोजमर्रा की रसोई में थोड़ा सा समय और दे दें तो आपकी सब्जियां पहले से ज्यादा साफ और सुरक्षित होगी।
0: वहीं अगर बात कर ली जाए कि सब्जियों को आप कभी भी साबुन और डिटर्जेंट से ना धोएं, क्योंकि ये जो साबुन और डिटर्जेंट है वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। बिना छिलके वाली या पैकेट बंद सब्जियों को साफ पानी से धोना बहुत जरूरी है। और एक और ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि सब्जियों को पकाने से पहले धोएं। अगर आप स्टोर करने से पहले धोते हैं तो वो केमिकल उसके अंदर ही रह जाते हैं, इसलिए जब भी आप पकाने से पहले इसे धोते हैं तब सब्जियां आपको बिना केमिकल की मिल सकती
1: तो है। हुई ना श्रोताओं, ये आपके काम के बाद ये आसान तरीका हर रसोई में अपनाया जा सकता है, ये आसान तरीका हर रसोई में अपनाया जाना चाहिए श्रोताओं। ये छोटी सी आदत आपको और आपके परिवार की सेहत के लिए एक बड़ा कदम साबित होगी।

दोस्तों नमस्कार, कार्यक्रम में अब आपसे कर लेते हैं काम की बात। और काम की बात हमारी जिंदगी के रोजमर्रा जो काम है उससे जुड़ी हुई है, क्योंकि हर व्यक्ति को इसकी जरूरत पड़ती है और वो जरूरत होती है सब्जियों की। आप सोच रहे होंगे कि सब्जियों की जरूरत का काम की बात से क्या लेना देना। तो दोस्तों अभी का मौसम ऐसा है जब हर सब्जी पूरे वर्ष भर हमें मिलती रहती है, और चाहे कोई भी ऋतु हो, कोई भी मौसम हो, सब्जियां पूरे साल मिलती है। और ऐसा कैसे हो पाता है, उसके पीछे कारण होता है

0: श्रोताओं, अब काम की बात तो हो चुकी है, अब बात खास यानी खास बात के सेगमेंट में हम बात करेंगे आज। श्रोताओं, आज का जो दौर है उसमें मोबाइल सिम कार्ड सिर्फ कॉलिंग का साधन नहीं बल्कि हमारी पहचान और हमारी रोजमर्रा की जरूरत का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि महंगे रिचार्ज प्लान्स के कारण कई लोग टाइम पे रिचार्ज नहीं करा पाते, जिसकी वजह से उनका नंबर जो है वो बंद होने का खतरा बढ़ जाता है।
1: जी हाँ दोस्तों, जब 2016 से पहले की बात करें तो अधिकांश जो टेलीकॉम कंपनियां होती है वो बिना रिचार्ज के इनकमिंग की सुविधा देती थी, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी है। वर्तमान समय में लगभग सभी कंपनियां इनकमिंग सेवाओं के लिए भी एक्टिव प्लान जरूरी मानती है। रिचार्ज खत्म होने के बाद कंपनियां लगातार कॉल और मैसेज के जरिए यूजर को रिचार्ज कराने की सूचना देती रहती है।
0: और इसी के मद्देनजर ट्राई ने कुछ दिशा निर्देश और नियम दिए हैं। इनके अनुसार यदि कोई यूजर लंबे समय तक रिचार्ज नहीं कराता है तो उसकी सेवाएं जो है वो चरणबद्ध तरीके से बंद की जाती है। शुरुआत में आउटगोइंग सेवाओं से होती है और बाद में इनकमिंग सेवाएं बंद कर दी जाती है।
1: जी हाँ, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने कुछ नियम स्पष्ट किए हैं। इसमें वैधता समाप्त होने के बाद से समय से पहले आउटगोइंग कॉल और एसएमएस की सुविधा प्रभावित होती है। कई कंपनियां वैधता खत्म होने के बाद में आउटगोइंग की सेवाएं बंद करती है, लेकिन कुछ मामलों में ये प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पूरी होती है। इस दौरान यूजर को कुछ समय के लिए इनकमिंग कॉल और मैसेज मिलते रहते हैं।
0: अगर यूजर लंबे समय तक रिचार्ज नहीं कराता है तो टेलीकॉम कंपनी इनकमिंग कॉल और एसएमएस सेवाएं भी बंद कर देती है, और इसके बाद सिम कार्ड केवल नाम के लिए एक्टिव रहता है और उस पर किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
1: अधिकतर टेलीकॉम कंपनियां 60 से 90 दिनों तक रिचार्ज नहीं होने पर सिम कार्ड को पूरी तरह डीएक्टिवेट करती है। इसका मतलब यह है कि नंबर नेटवर्क से हट जाता है और उस पर कोई सेवा काम नहीं करती है।
0: और यदि सिम लंबे समय तक बंद रहती है तो कंपनी उस नंबर को दोबारा एक्टिव नंबरों की सूची में भी डाल सकती है। ऐसे में आपका जो पुराना मोबाइल नंबर है वो किसी दूसरे ग्राहक को आवंटित किया जा सकता है।
1: तो दोस्तों, अपने मोबाइल को समय समय पर रिचार्ज करते रहिए और इस जो असुविधा से आप बच सकते हैं।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ।
2: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद। विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
4: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
3: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न

0: एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। नन्हे परिंदों के उस जज्बे को जो हजारों मील का सफर तय कर हमारे मेहमान बनते हैं।

0: जी हाँ दोस्तों, कुर्जा जो हमारे देश में आती है सर्दियों के मौसम में, और इससे हमारा जो संबंध है वो बहुत पुराना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे लोकगीत है वो भी कुर्जा से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि पक्षी परदेसी होते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन ये बात भी सच है कि प्रतिवर्ष हजारों लाखों पक्षी मौसम परिवर्तन के समय अपने स्थान को छोड़कर भोजन और आवास की खोज में यह दूरी तय करते हैं। एक देश से दूसरे देश और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ये यात्रा बहुत लंबी होती है, और इन्हीं पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है।
1: और यह दिन श्रोताओं साल में दो बार मनाया जाता है, एक 2 मई के दूसरे शनिवार और एक अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। ये दोहरी तारीखें पक्षी प्रवास की चक्रीय प्रकृति और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में उनके अलग अलग प्रवास के समय को दर्शाती है। और इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो वो 2006 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। ये दिन प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और श्रोताओं, भारत में सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से मार्च में आने वाले कुछ मुख्य पक्षी हैं। जैसे बात की जाए साइबेरियन क्रेन, ये लगभग 4000 मील का सफर तय कर साइबेरिया से भारत आता है, और मुख्य रूप से राजस्थान के भरतपुर में। और ग्रेटर फ्लेमिंगो की बात करें तो ये कच्छ के रण और ओडिशा के चिल्का झील में पाए जाते हैं। बार हेडेड गूंज ये दुनिया की सबसे ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों में से एक है, जो हिमालय पार कर भारत आते हैं। और श्रोताओं, केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य जो हमारे हजारों प्रवासी पक्षियों का एक घर है, प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए भारत में कई वेटलैंड्स को भी रामसर साइट्स के रूप में संरक्षित किया गया है।
0: जी हाँ दोस्तों, ये जो पक्षी है वो ना केवल हमारे पर्यावरण संतुलन के लिए ज़रूरी है, बल्कि पृथ्वी के अस्तित्व के लिए भी ज़रूरी है। ये पक्षी प्रकृति की सुंदरता बढ़ाते हैं, पर्यावरण संतुलन में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं, और इनकी सुरक्षा हमारा उत्तरदायित्व है। इनकी सुरक्षा, इनके लिए आवास, जल स्रोत और हरित वातावरण की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हजारों मील का सफर तय करके आने वाले इन विदेशी मेहमानों का स्वागत और संरक्षण हमें ही करना है।

0: और श्रोताओं, अब बात हमारे स्पेशल सेगमेंट यानी शनिवार की रेसिपी। और शनिवार की रेसिपी में आज हम बताने वाले हैं आपको एक ठंडी ठंडी सी रेसिपी, क्योंकि गर्मी तो बहुत है। तो चलिए जानते हैं कैसे बनाते हैं इसको। तो दूध चाहिए हमको 2 कप। हम बनाने जा रहे हैं रॉयल फालूदा रेसिपी। इसके लिए 2 कप दूध चाहिए उबला हुआ, और उसको बाद में ठंडा कर दीजिए। इसके बाद में हम रोज़ सिरप लेंगे 4-5 बड़े चम्मच, सब्ज़ा के बीज 1-2 बड़े चम्मच जो कि 15 मिनट पानी में भिगोए हुए हों। फिर हमें लेना है फालूदा सेवई 1/2 कप उबली हुई। आइसक्रीम चाहिए 2-3 स्कूप। आप चाहे तो वनीला ले सकते हैं, आप चाहे तो स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं। कटे हुए मेवे चाहिए, बादाम, पिस्ता, काजू, और अगर आप चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं टूटी फ्रूटी। और 1 या 2 चम्मच जैसा भी आपको स्वाद चाहिए चीनी ले सकते हैं। इसके बाद में जानते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले दूध को उबालना है, उसमें चीनी मिलानी है। जब ये गाढ़ा हो जाए तो इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देना है। और जो फालूदा सेवई ली है उसको उबाला था हमने, तो उसको अलग रख लेना है। उसमें सब्ज़ा के बीजों को 15 मिनट के लिए पानी में भिगो देना है। अब एक लंबा ग्लास लेना है जिसमें 1-2 बड़े चम्मच रोज़ सिरप डालना है, और जो भीगे हुए बीज हैं सब्ज़ा के वो डालना है।
1: उसके साथ में आप डाल सकते हैं सेवई की परत, क्योंकि हमें लेयरिंग करनी है वो, और लेयरिंग बहुत सुंदर दिखती है इसमें। इसलिए आप उबली हुई सेवई की परत डालें, फिर दूध और आइसक्रीम, जो दूध ठंडा मीठा किया है हमने, वो डालेंगे। ऊपर से 1-2 स्कूप वनीला या कुल्फी आइसक्रीम डाल सकते हैं। और सबसे ऊपर जो हम डालेंगे वो डालेंगे बारीक कटे हुए बादाम, पिस्ता, टूटी फ्रूटी, थोड़ा सा रोज़ सिरप, और फिर इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। ये तो बात हुई फालूदा की, लेकिन आप इसकी रेसिपी में जो ये सेवई है वो आप घर में भी बना सकते हैं। गर्मी के मौसम में उत्तर भारत में फालूदा बड़े चाव से खाया जाता है, और इस बाजार से आप इसे ले सकते हैं, लेकिन घर पर भी आराम से आसानी से बना सकते हैं। घर पर आप इसे बनाने के लिए आपको चाहिए सिर्फ कॉर्न फ्लोर, और 35 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। 1 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर में बर्फ पानी के छलने के साथ आप इस्तेमाल कीजिए। 1 कप पानी में पानी के साथ कॉर्न फ्लोर को मिलाइए, उबाल कर आँच को धीमी कर दें और लगातार चलाते रहें। धीरे धीरे जब ये ट्रांसपेरेंट होने लगेगा तो इसे आँच से उतार लेंगे। अब कॉर्न फ्लोर पेस्ट को छलनी में डालना है, चम्मच की मदद से दबाना है और ठंडे पानी में इसके टुकड़े गिरने देना है। 30 मिनट के लिए ठंडे पानी में छोड़ देंगे और इसे छान लेंगे, तो ये आपका फालूदा घर में तैयार हो जाएगा। और इस तरह से आप घर में ही फालूदा बना सकते हैं और रॉयल फालूदा की जो ये रेसिपी है उसका आनंद ले सकते हैं।

0: दोस्तों अब बात उनकी जिन्होंने अपने जीवन से एक रोशनी सी फैला दी थी, यानी आज के दिन जिनका जन्म हुआ। स्नेहमयी चौधरी, 1935 उन्नाव उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात कर ली जाए, पूरा पाठ गलत, चौतरफा लड़ाई और हड़कंप इनकी प्रसिद्ध रचना रही। वहीं आज ही के दिन बिजनौर उत्तर प्रदेश में 1930 में जन्मे रविंद्रनाथ त्यागी, जो कि लेखक, व्यंग्यकार और कवि हैं, और उनकी प्रमुख रचनाओं में खुली धूप के में नाव पर पहली संग्रह थी, वहीं बसंत से पतझड़ तक उनकी आखिरी संग्रह थी, जो उनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। और आज ही के दिन 1866 में कोल्हापुर महाराष्ट्र में जन्मे महान स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, विचारक और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की, शिक्षा और सामाजिक सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, हिंसा के बजाय बातचीत और संवैधानिक तरीकों से विश्वास रखने वाले नरम दिल के अहिंसावादी नेता वे रहे। और उनका मानना था कि भावी भारत दरिद्रता असंतोष का नहीं, बल्कि उद्योगों, जागृत शक्तियों और संपन्नता का भारत होगा। वहीं आज ही के दिन उदयपुर के महाराणा प्रताप का भी जन्म हुआ 1540 में कुंभलगढ़ में, और सिसोदिया वंश के राजवंश के राजा थे। उनकी वीरता, दृढ़ प्रतिज्ञा और उनके कारण उन्हें आज भी सम्मान याद किया जाता है। शौर्य भूमि का मेवाड़ मुकुटमणि उन्हें कहा जाता है, और इतिहास का सुप्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध मुगलों और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, और उनकी वीरता की कथाएं आज भी लोगों में जोश भर देती है।
1: और आज पुण्यतिथि के अवसर पर हम याद कर रहे हैं श्रोताओं, हिंदी के जाने माने निबंधकार जिन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन से संबंध रखने वाले कई निबंध लिखे। उनके निबंधों की अगर हम बात करें तो उनमें हैं दीप जले शंख बजे, कारवा आगे बढ़े माटी हो गई सोना, और आज हम याद कर रहे हैं शेरपा तेंजिंग के नाम से मशहूर तेंजिंग नॉर्गे को, जिन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतेह पाने वाले वो पहले भारतीय बने थे।
2: प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा।
1: और आज हम याद कर रहे हैं श्रोताओं जाने माने पार्श्व गायक और फिल्म अभिनेता तलत महबूद, जिनकी आज पुण्यतिथि है। वो एक गजल गायक के रूप में भी उन्होंने बहुत ख्याति अर्जित की थी। श्रोताओं, शुरू में उन्होंने तपन कुमार के

नाम से गाने गाए और गायक और अभिनेता बनने की चाहत के लिए 1944 में भी वो कोलकाता आ गए। और श्रोताओं, मशहूर संगीतकार नौशाद ने भी तलत महमूद को अपनी फिल्म बाबुल के लिए गाने का मौका दिया था और उन्हीं की आवाज़ में सुनते हैं हम ये गीत।

0: श्रोताओं, इसी के साथ नमस्कार कार्यक्रम का अंक बस यहीं तक। आज इस अंक में मैं थी आपके साथ अर्चना
1: और मैं सोफिया। इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार। यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक फनकार।

0: 101.1 FM Sun City पर आप सभी प्रिय श्रोताओं का स्वागत है और कार्यक्रम है एक फनकार। मैं हूँ सूफिया खान, कंसोल पर है सतेंद्र चारण
1: और मैं हूँ अर्चना चौहान। जी हाँ दोस्तों, आज एक फनकार में हम आपके लिए बहुत सारी जानकारी लेकर आए हैं एक ऐसे फनकार के बारे में जो कि अपने गीतों के कारण प्रसिद्ध हैं। बहुत सारी बातें रहेगी, बहुत सारे गीत आपको सुनाए जाएंगे, लेकिन शुरुआत इस गीत से।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
3: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
4: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
5: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
6: FM सन सिटी पर आप सुन रहे हैं इस वक्त एक कार्यक्रम जिसका नाम है एक फनकार, और एक फनकार में आज कहानी उस फनकार की जो स्वयं कहानियां सुनाता है और जिसकी कहानी सुनाने का अंदाज इतना खूबसूरत है कि सुनने वाले उसकी कहानी में अपने आप को महसूस करने लगते हैं और जो वो किरदार होते हैं उनमें खुद को करने लगते हैं।
7: बिल्कुल, पेशे से वो एक कवि हैं श्रोताओं और गीतकार भी हैं, लेकिन अंदाज बिल्कुल सामान्य वाला, एकदम देसी, एकदम जो उनकी सोच है और उनका रहन सहन है वो केवल एक सामान्य जीवन जैसा बिताते हैं, लेकिन शब्दों को अपनी कलम से जब कागज पर उतारते हैं तो एक समा सा बन जाता है।
6: जी हाँ, आज एक फनकार में गीतकार नीलेश मिश्रा और उनके प्यारे से गीतों का सफर।

श्रोताओं, एक फनकार कार्यक्रम है, बात हो रही है नीलेश मिश्रा की, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी जादुई आवाज और शब्दों से रेडियो की दुनिया में कहानी सुनाने की कला को आबाद किया। एक ऐसी शख्सियत जिसने रेडियो को सिर्फ गानों का डब्बा नहीं बल्कि हमारी यादों का संदूक बना दिया। और इसी के साथ उन्हीं की लिखे गीत हम सुनवा रहे हैं आपको, और उसी कड़ी में सुनिए ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, फिल्मी दुनिया से बिल्कुल अनजान थे नीलेश मिश्रा। उनका जन्म तो वैसे नैनीताल की पहाड़ियों में हुआ और पढ़ाई लिखाई भी उन खूबसूरत पहाड़ों के बीच ही हुई, और इसलिए उनके मन में पहाड़ पूरी तरह से गंभीर, शांत और प्रकृति से जुड़े हुए होने की वजह से जो ये उनकी कलम है वो बताती है, और साथ ही साथ जो उनके गीत है उसमें भी झलकता है ये प्रकृति का सौंदर्य। नीलेश पहाड़ों से निकलकर अदब की नगरी लखनऊ पहुंचे। कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में पत्रकारिता उन्होंने की, देश विदेश की यात्राएं की, और इन यात्राओं के दौरान उन्हें अपने देश, गांव और धरती का

इसलिए उनके मन में पहाड़ पूरी तरह से गंभीर, शांत और प्रकृति से जुड़े हुए होने की वजह से जो ये उनकी कलम है वो बताती है, और साथ ही साथ जो उनके गीत है उसमें भी झलकता है ये प्रकृति का सौंदर्य। नीलेश पहाड़ों से निकलकर अदब की नगरी लखनऊ पहुंचे। कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में पत्रकारिता उन्होंने की, देश विदेश की यात्राएं की, और इन यात्राओं के दौरान उन्हें अपने देश, गांव और धरती का महत्व समझ में आया। जब हम किसी चीज से दूर जाते हैं तभी उसके महत्व का पता चलता है। जब वे देश से दूर रहे तो खुद की मिट्टी उन्हें याद आती रही, अपना खेत, परिवार, गलियां, नदियां, पहाड़, और यही जो कशिश है वो उनकी लेखनी में उतरती है। और इसी तरह से उनका सफर शुरू हुआ माया नगरी, जिसे कहा जाता है सपनों का शहर, यानी मुंबई।

0: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: श्रोताओं, नीलीस मिश्रा के बारे में हम बात कर रहे थे कि वो पत्रकारिता में भी उन्होंने काफ़ी ख्याति अर्जित की, और पत्रकारिता से फिल्मों का उनका सफ़र जो है वो अचानक नहीं था, क्योंकि उनकी लिखी कहानियाँ, उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो भावनात्मक अभिव्यक्ति है, वो फिल्म निर्माताओं का ध्यान आकर्षित करने में बेहद ही कामयाब रही। कई फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे, लेकिन जिस गीत ने उन्हें पहचान दिलवाई वो था जादू है नशा है। सरल शब्दों में गहरी अभिव्यक्ति जो सीधा सुरों को रूह से जोड़ती है।

0: आकाशवाणी के खजाने में खूबसूरत हर जमाने के गीत, आकाशवाणी के प्रोग्राम पेश करने वालों की बेमिसाल आवाजें।
1: नमस्कार।
2: दिल ये चाहे हवाओं से खेलो,
1: अपना शहर अपनी शान,
3: मेरा फेवरेट रेडियो सन सिटी,
4: जो बातें सुनता है जो बातें करता है।
3: एफएम सन सिटी,
5: जोधपुर एफएम, हार्टबीट ऑफ जोधपुर,
6: नए अंदाज में।
7: जो दिन भर घर घर में गूंजती है,
1: ट्यून कीजिए एफएम सन सिटी।

दोस्तों, एफएम सन सिटी से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक फनकार, और एक फनकार में आज के फनकार है नीलेश मिश्रा। नीलेश मिश्रा को पहला गाना मिला फिल्म जिस्म का जादू है नशा है। यह गाना नहीं है, वाकई इनकी जो कलम है एक जादू सा बिखेरती है, एक नशा सा छा जाता है। यह गाना बहुत हिट हुआ, लेकिन उसके साथ हिट हुई जोड़ी एमएम क्रीम और केके के साथ उनकी जुगलबंदी। यह जुगलबंदी एक रोग की तरह बढ़ गई। नहीं, हम किसी बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केके के गाए एक बहुत ही खूबसूरत गीत की, जिसका संगीत दिया था एमएम क्रीम ने और लिखा था नीलेश मिश्रा ने।

0: कंप्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहां कहां इलाज ना करवाया।
3: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
4: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
5: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
4: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
5: दोस्तों, कभी ऐसा होता है कि आईने के सामने देखकर खुद ही हम मुस्कुराने लगते हैं। जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती वो भी अच्छी लगने लगती है। बिल्कुल ऐसे में आपको अपने दिल पे शक होगा कि इसे प्यार तो नहीं हो गया। बिल्कुल ऐसे ही कुछ एहसासों को शब्दों में पिरोया निलेश मिश्रा ने। आवाज मोहित चौहान की फिल्म है दिल तो बच्चा है। जी

दोस्तों के एमएम क्रीम के बाद में प्रीतम के साथ में नीलेश मिश्रा की जोड़ी बनी और साथ ही साथ उनके हर गीत को अपनी मखमली आवाज से नवाजा था के ने। और के और जो नीलेश मिश्रा का वक्त था वो था सन 2000 का दशक, जिसमें बहुत सारे प्यारे प्यारे गीत आए और इन दोनों ने कई ब्यूटीफुल गीत तो हिंदी सिनेमा को दिए, जिसमें सॉफ्ट रोमांटिक मेलोडी थी और साथ ही साथ सरल शब्दों को के ने अपने सोलफुल वॉइस से युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाया था। उसमें रोमांस तो था साथ ही साथ दर्द भी था, लेकिन अब हम आपके लिए जो गाना लेकर आए हैं वो के की आवाज में है और बहुत ही खूबसूरत सा रोमांटिक सॉन्ग है।

श्रोताओं, अब नीलेश मिश्रा के जीवन के उस पहलू पर बात करते हैं जो चमक दमक से दूर सादगी भरा और साधारण जीवन पसंद तो करते ही हैं वो, बस कहानियां सुनाते हैं एक रेडियो कार्यक्रम के जरिए। कई हताश अकेले रहने वाले लोगों के दोस्त बनते हैं उनकी कहानियां, जो सामान्य जीवन है उससे जुड़ी आम लोगों की जिंदगी का आईना होती है, जिसमें छोटे शहरों के सपने, प्यार, याद, आपसी रिश्तों की उलझने होती है, जिसे वो बड़े ही भावपूर्ण अंदाज से सुनाते हैं और जो श्रोता होते हैं खुद को उस कहानी का हिस्सा बना लेते हैं।

0: श्रोताओं, नीलेश मिश्रा नए कलाकारों को रंगमंच प्रदान कर रहे हैं। नए लेखक, कहानीकार, कलाकार रेडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाइव स्टोरी टेलिंग कर सके, इसके लिए नई प्रतिभाएं भारतीय भाषाओं में कहानियां लेखन और कहानी कहने की स्किल्स को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए कई वर्कशॉप के जरिए वे लेखक बनाने का जिम्मा उन्होंने ले रखा है और इसी कड़ी में उनका नया प्रोजेक्ट है
1: गांव कनेक्शन। उसके जरिए वो ग्रामीण भारत की आवाज़ को मुख्यधारा में लाते हैं और अब द स्लो मोमेंट के जरिए हमें अपनी जड़ों से जुड़ने का भी संदेश दे रहे हैं।

0: आज के एक फनकार कार्यक्रम में हमने सुना है आपको नीलेश मिश्रा के एक से बढ़कर एक गीत और इस प्रोग्राम से अब दीजिए इजाजत मुझे यानी सूफिया को
1: और अर्चना को और स्वीकार कीजिए नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फनकार। यह आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 11 बजे हैं। आज आकाशवाणी जोधपुर के स्थापना दिवस पर आइए आपको सुनवाते हैं एक विशेष रूपक। इसके लेखक हैं अनिल कुमार गोयल और वाचन स्वर भानु पुरोहित का।
1: आकाशवाणी जोधपुर के स्थापना दिवस पर प्रस्तुत है एक विशेष रूपक आवाजों के दस्तखत। इसके लेखक हैं अनिल कुमार गोयल और प्रस्तुतकर्ता भानु पुरोहित।

0: आकाशवाणी का ये जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 566.04 मीटर अर्थात 530 किलोहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1893 की 19 वैशाख, तदनुसार 9 मई सन 1971। आकाशवाणी जोधपुर के नए शक्तिशाली प्रसारण केंद्र द्वारा अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, इस आशा के साथ कि हम अपने श्रोताओं का विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा स्वस्थ मनोरंजन कर सकें। अपने श्रोताओं से भी हम उनके सहयोग और सद्भावना की अपेक्षा रखते हैं। इसी मंगल कामना के साथ हम आरंभ करते हैं अपनी पहली सभा।
1: मई 1971 का दिन, यही आवाज, यही उद्घोषणाएं और यही तिथि। बदले तो सिर्फ सालों के कैलेंडर, लेकिन इन तमाम बदलावों के बावजूद यह दिन इतिहास बन गया। इतिहास इस रूप में कि पश्चिमी राजस्थान का यह पहला केंद्र था जिसकी साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामरिक दृष्टि से इस बहुत बड़े भूभाग में जरूरत थी।
2: पश्चिमी राजस्थान के विशाल भूभाग की जनता के लिए 9 मई 1971 के दिन भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आकाशवाणी जोधपुर से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की शुरुआत की। बागडोर थामी क्रिकेट कमेंट्री के पर्याय के रूप में मशहूर वरिष्ठ प्रसारण कर्मी और तत्कालीन कार्यक्रम प्रमुख मुरली मनोहर मंजुल ने
1: 9 मई 1971 उद्घाटन के दिन को लेकर कितने उत्साहित, कितने चिंतित थे मंजुल साहब, ये पूछने पर श्री मंजुल ने

0: टेलीफोन पर बताया।
1: सबसे पहले तो इस स्थापना वर्ष है उसके लिए आकाशवाणी जोधपुर के पूरे परिवार को मेरी तरफ से बधाइयां, हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं। दरअसल जब आकाशवाणी जोधपुर पर मुझे और स्वर्गीय हनुमंत सिंह जी देवड़ा को दोनों को ट्रांसफर करके भेजा गया था तो ये स्पष्ट था हमारे दिमाग में कि वहाँ बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और ये हुआ भी, क्योंकि HPT लग जाने से तकनीकी रूप से शक्तिशाली तो हो गया आकाशवाणी जोधपुर, लेकिन जहाँ तक कार्यक्रमों के प्रसारण का सवाल था वहाँ साधनहीन था। यहाँ तक कि हमारे बैठने के लिए न कुर्सी थी न काम करने के लिए टेबल था, जो वुडन केसेस जो आते थे मशीनों के उनको टेबल में कन्वर्ट करके हमने काम किया। बरामदे में बैठे हमारे बैठने की जगह भी वहाँ नहीं थी। 1971 की खास बात मेरे जीवन में जो मुझे मेरी पूंजी के तौर पर मेरे दिमाग में हमेशा स्थायी रहेगी वो था लॉन्ग लिव लोंगेवाला नाम का एक नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर मैंने किया था। एक हफ्ता भर युद्ध चल चुका था, उसके बाद दिल्ली से मुझे आदेश मिला कि आप पत्रकार दल के साथ मिलिट्री के ट्रक में बैठ करके रिकॉर्डिंग में जाइए मोर्चे पर, और अथॉरिटी लेटर भी उन्होंने भेजा। बहरहाल हम ट्रक में बैठ के रवाना हुए। वो अनुभव एक पाकिस्तान के अंदर 50 किलोमीटर भी हम गए, वो अनुभव एक पूंजी की तरह है कि आकाशवाणी जोधपुर के इतिहास में वो पहला परचम फहराया कि कोई नेशनल प्रोग्राम डायरेक्टरेट ने दिया और उसे युद्ध के दौरान बखूबी हमने पूरा किया।
2: 9 मई का दिन तो ऐतिहासिक बन ही गया, लेकिन इतिहास में एक और नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया। वो नाम था श्री मुकुट माथुर का, जिन्होंने पहली उद्घोषणा की। उद्घोषणाओं से पहले उनकी मनस्थिति क्या थी, कितना आत्मविश्वास था, कितनी घबराहट थी?
3: अब देखिए, जिस दिन 9 मई का दिन था तो जैसे जैसे दिन नजदीक आने लगे तो बड़ी ऐसी इच्छा हो रही थी कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। हालांकि पिछले कई सालों से अनाउंसमेंट तो कर ही रहे थे, प्रोग्राम बना ही रहे थे, कर ही रहे थे, लेकिन जिस दिन 9 मई का दिन आया तो सवेरे इसका उद्घाटन होने वाला था। इसकी आरंभिक उद्घोषणा पहली सभा सुबह 6:15 पर होने वाली थी। हम लोग तो वैसे आध घंटे पहले आते हैं स्टूडियो में, लेकिन उस दिन हम 1 घंटे पहले आ गए थे, या करीब 5:30 हम स्टूडियो में आ गए थे। और उस दिन ये भी था कि काफ़ी लोग स्टाफ के आए हुए थे कंट्रोल रूम के, और जो हमारे इंजन हेड थे वो इधर प्रोग्राम हेड थे, वो सब लोग इकट्ठे हुए थे स्टूडियो में। हम आके बैठ गए और तैयारी करने लगे कि भाई कौन सा प्रोग्राम पहले देना है, कौन सा बाद में, क्यों सीट तो बनती है पहले, इस तरह के प्रोग्राम चलेंगे। और ओपनिंग अनाउंसमेंट जो हमने 3-4 जो है हमने डिस्कस किया, अभी इसमें ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो सब तैयारी होगी। अब जैसे ही 6:15 के टाइम आने लगा 6:00, तो 6:00 मेरा भी यू दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ने लगी। अब देखिए, पता नहीं क्या बात है, इतने सालों से अनाउंसमेंट कर रहे थे लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हो रहा था कि कुछ धड़कन बढ़ गई। तो जैसे ही 6:15 से पहले सिग्नेचर ट्यून चली और मेरे पीछे है, मैं आपको बता रहा हूँ, करीब 30-35 जो हैं स्टाफ के लोग खड़े थे, दूसरे लोग भी खड़े थे, और सबकी कान सबकी निगाहें मेरे ऊपर थी। जैसे 6:15 और हमने वंदे मातरम बोला, उसके बाद में ओपनिंग अनाउंसमेंट की, वंदे मातरम का हमने रिकॉर्ड चलाया और फिर ओपनिंग अनाउंसमेंट की। ओपनिंग अनाउंसमेंट करने के बाद में हमने शनाई वादन मंगल ध्वनि बजाई, जो कि होता है। अब आप ये देखिए कि जब ये टाइम पूरा हो गया, ओपनिंग अनाउंसमेंट आरंभिक उद्घोषणा हो गई, मंगल ध्वनि बजी, तो हम लोग इतने खुश हुए अंदर कि बस हमने तालियां बजाई। हालांकि वो एयर पर नहीं गई थी लेकिन हम लोगों ने खुशी जाहिर की। एक भाई हमारे मिठाई भी लेके आए थे तो हमने आपस में मिठाई खाई और सबको बांटी।
2: मजबूत नींव पर ही भव्य इमारत का निर्माण होता है। प्रसारण में मील के पत्थर साबित होने वाले कई वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों ने इस केंद्र पर अपनी रचना धर्मिता की छाप छोड़ी। हम बहुत आदर और सम्मान के साथ उनके नाम ले रहे हैं। नंद भारद्वाज, कुमार चटर्जी, काजी अनीस उल हक, विजय वर्धन दीक्षित, रतिराम, हरिचरण वर्मा, सुश्री आशा शुक्ला, गोविंद वर्मा, अनिल कुमार राम।
4: आकाशवाणी जोधपुर के बरसों के सफर में अभियांत्रिकी विभाग ने दूसरी बाह की तरह साथ दिया है। इसकी गौरवशाली यात्रा में तकनीकी संबल प्रदान करने वालों की सूची भी उतनी ही लंबी।

0: काल जहां आरंभिक नामों में से एक है, वहीं कृष्णामूर्ति, नारायण राव, वी के अग्रवाल, एनएन अग्रवाल, राकेश अंबा, आर के बुधराजा, इन जैसे अधीक्षण अभियंता ये सुनिश्चित करने का जिम्मा संभाले रहे कि आकाशवाणी जोधपुर के प्रसारण तकनीकी दृष्टि से सर्वोच्च मानदंड पर खड़े, उत्कृष्ट और सुस्पष्ट हो। और इसी के चलते आकाशवाणी जोधपुर कई बार तकनीकी श्रेष्ठता के सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त कर चुका है।
1: इन सब के अलावा श्रोताओं का जिनकी आवाजों से सीधा संबंध रहा वो थे अरविंद माथुर, विष्णुदत्त जोशी, डॉक्टर जगमोहन सिंह परिहार, डॉक्टर सुबोध निगम, वेद बजाज, सुरेश राही और ब्रजेश कोठारी। और अब वो आवाजें जिन्हें श्रोता शायद कभी भी भुला नहीं पाएंगे, अगर ये कहा जाए कि वे आवाजें आकाशवाणी जोधपुर का पर्याय बन गई थी तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

0: চো ভাঙে ভুমজি রাঘাঞ ঘাঁ রাম রাম রাম রাম রাম রাম
1: রাম রাম হতু কাকা রাম রাম
2: রাম রাম
1: রাম রাম হতু কাকা আজ তো মেলো জোরদার মন্ডি বাটে
3: জিন্দগি
4: প্রকৃতি জীবে আনন্দ করে মেবা খাওয়া
1: নি বিজ্ঞান তো আগে বড় আপনার হেরান মোটা মোটা জগা মধ্যে বেঠা এটা ভাগরা মাইনে আর আওয়াজ আবার সাধন হ্যাঁ
4: પરિયોજના અધિકારી જી હે જોશી જી સોપાળ અપલાવો પરી
1: રામ રામ
5: રામ રામ શાહ બહાદુરજી રામ રામ આજ આપણે મળ્યા બહુ ખુશી હોય
6: आपने सही पहचाना स्वर्गीय श्री हनुमंत सिंह देवड़ा स्वर्गीय श्री नारायण सिंह भाटी और स्वर्गीय श्री कान सिंह राठौड़ उस दौर के लोकप्रिय कार्यक्रम सीमाड़ेरी गूंज की लोकप्रियता को रेखांकित करते हुए तब के केंद्र निदेशक काजी अनीस उल हक
7: आकाशवाणी जोधपुर के श्रोताओं को कमागणी बात यह है कि जब रिपोर्टिंग वहां हुई थी तो उस वक्त पे मैं जब जोधपुर आया तो मुझे ऐसा लगा कि उस मरुधर में डेजर्ट में एक कमल खुला हुआ है और मुझे हर तरफ जो है ऐसा लग रहा था कि मैं धरती पे नहीं हूँ बल्कि चांद पर हूँ इस तरीके से मुझे नजर आया था। तो फिर जो है मैं जब वहाँ आया तो मुझे वहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोग्राम जो है नजर आया जो वहाँ पे प्रोड्यूस होता था और उसको ब्रॉडकास्ट करते थे वो थी सीमा डेरी गूंज। हमारे हनुमंत सिंह देवड़ा जी थे जो उसको प्रोड्यूस करते थे, उनके साथ जो भाटी साहब थे तो ये दोनों वो प्रोड्यूस करते थे। इसकी बड़ी वाकई गूंज थी, पूरे मरुधर में उसको लोग सुनते थे और सुनने के बाद उसके अंदर जो कैरेक्टर थे उनकी जो बातचीत होती थी मारवाड़ी में उसको लोग बहुत पसंद करते थे। तो सब में मिलकर वो एक कुटुंब बन गया, वो एक घराना बन गया, एक घर बन गया कि घर के सारे लोग मिलकर जो है काम में जुटे हुए हैं और अपने प्रोग्राम अपने कार्यक्रम दे रहे हैं। मैंने देखा कि मारवाड़ी म्यूजिक वहाँ की गली गली में जो है वो मारवाड़ी म्यूजिक बजती थी लेकिन वो मारवाड़ी संगीत आकाशवाणी से हो नहीं पा रही थी, रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने देवड़ा जी से और हमारे दयाल जी से और उन सब लोगों से कहा कि भाई इतना बड़ा चंक है, यहाँ पे इतने गाने वाले मौजूद हैं, जैसलमेर है, बाड़मेर है, पाली है, बीकानेर है, तो यहाँ और हमारा खुद जयपुर है, इतने मारवाड़ी संगीत के गाने वाले होकर हमारे पास आड़ी चिंचुनी है। तो उन्होंने कहा सब नहीं हुआ स्टेशन, हालांकि

पुराना है लेकिन इसमें प्रोग्राम नहीं हो पा रहे थे, तो तब हमने अंदाजे के मुताबिक 600 ग्रुप्स को और इंडिविजुअल्स को हमने ऑडिशन किया था, जिसकी वजह से मारवाड़ी संगीत जो है ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि वो इंटरनेशनल बन गया और बड़े बड़े कलाकार जो है आके उन्होंने ऑडिशन दिया था। ये मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है उस स्टेशन के लिए। चंद दिनों के अंदर जोधपुर रेडियो स्टेशन इतना पॉपुलर हो गया कि पूरे राजस्थान में लोग वही सुना करते थे।

0: अब तक आकाशवाणी जोधपुर का परचम समूचे भारत में लहराने लग गया था। इस केंद्र पर निर्मित नाटक, रूपक, झलकियां, लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत विविध भारती मुंबई और आकाशवाणी दिल्ली से नियमित अंतराल से प्रसारित होते थे। आकाशवाणी जोधपुर के कलाकार देश के अन्य केंद्रों द्वारा आयोजित संगीत सभाओं की शान बढ़ाने के लिए बुलाए जाने लगे। अपनी शोहरत का काफी हद तक श्रेय लोक संगीत के कलाकार श्री रामचंद्र गोयल आकाशवाणी को इन शब्दों में देते हैं।
1: जोधपुर से जो प्रोग्राम शुरू हुए उससे मुझे बहुत अधिक प्रशंसा और मिला, ग्राउंड मिला, और जोधपुर रेडियो स्टेशन को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरी आवाज को दूर दूर तक लोगों के कानों में पहुँचाया।
2: श्रेष्ठ कार्यक्रमों के निर्माण के लिए जोधपुर का नाम हो चुका था। आकाशवाणी जोधपुर जोधपुर स्कूल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के नाम से मशहूर होने लगा। प्रसारण का कखरा सीखकर जब यहां के प्रसारक अन्य केंद्रों पर स्थानांतरित होकर जाते तो उनसे अपेक्षाएं बहुत होती और वो खरे भी उतरते। हमारे श्रोता गिरधारी लाल विश्वकर्मा हमारे प्रसारण पर अपनी टिप्पणी के साथ।
3: आकाशवाणी जोधपुर की 50वीं वर्षगांठ पर सभी आकाशवाणी परिवार और श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 9 मई 1971 का दिन जोधपुर के लिए खास था, क्योंकि उस दिन आकाशवाणी जोधपुर का प्राइमरी चैनल शुरू हुआ था। मुकुट माथुर जी के प्रथम उद्घोषणा के साथ शुरू हुआ मारवाड़ की मिट्टी की सुगंध लिए हुए आकाशवाणी जोधपुर। मारवाड़ी लोक संगीत में रचते बसते मेरा रेडियो सुनने का शौक भी आकाशवाणी के साथ साथ परवान चढ़ने लगा था। भोमजी का वो किरदार आज भी मेरी स्मृतियों में जिंदा है और हमेशा रहेगा। पिछले 46 वर्षों से आकाशवाणी जोधपुर की विकास यात्रा का मैं साक्षी रहा हूँ। बहुत करीब से रेडियो प्रसारणकर्ताओं को जाना है और समझा है। मैंने आकाशवाणी जोधपुर का हर दौर देखा है। कई उतार चढ़ावों का दौरों का मैं साक्षी रहा हूँ। आकाशवाणी जोधपुर पर प्रसारित होने वाला युवाणी कार्यक्रम का 90 के दशक का एक स्वर्णिम दौर भी मैंने देखा, जब ये कार्यक्रम समस्त भारत के आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित युवाणी प्रोग्रामों में प्रथम स्थान पर था। कुछ आवाजें मेरे स्मृति पटल पर हमेशा रहेंगी, उसमें अरविंद माथुर, जफर खान, गोविंद त्रिवेदी और भानु प्रूत। इन लोगों ने आकाशवाणी जोधपुर को बुलंदियों पर पहुंचाया और श्रोताओं के बीच इन लोगों ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।

निरंसा हाजिर है राजस्थानी लोक गीता और भजनारो फरमाइशी कार्यक्रम गीतारो गजरो। सगला सुनने वाला ने भानु पुरोहित रा घने मान राम राम।

0: परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, हर रात के बाद सुबह का आगमन होता है। आज एक नई सोच के साथ आकाशवाणी जोधपुर चल रहा है। मैं आप सभी श्रोताओं और आकाशवाणी परिवार को एक बार फिर 50वीं वर्षगांठ पर बधाई देता हूं।
1: बीते दौर की धुनों को आंगन में उतारता रेडियो कई पुराने श्रोताओं की जिंदगी के हर पल से इस तरह जुड़ सा गया है कि लगता है ये साथ हमेशा हमेशा का है। भीमराज सोनी रेडियो से इस अटूट रिश्ते को इस तरह याद करते हैं।
2: 5 सेट इस समय मेरे पास है, एक मेरे लॉबी में लगा हुआ, एक मेरे ड्राइंग रूम में, एक मेरे मतलब पर्सनल रूम में, एक मेरे बाथरूम में और चौथा मेरा पर्सनल मेरे पॉकेट के अंदर। 5 सेट इस समय मेरे पास है और रेडियो मेरे मतलब दिल में ऐसा बसा हुआ है कि इसके बिना मैं रह नहीं सकता, संगीत के बिना रह नहीं सकता। एक ऐसा बड़ा नशा बन गया है कि ये नशा मेरे दिनों दिन बढ़ रहा है। रेडियो मेरी जान है आज की तारीख, इसके बिना मैं हकीकत में रह नहीं सकता।

0: काले रंग की एलपीज, इपीज और फीते वाली टेप से प्रसारण करने वाले इस केंद्र ने एक लंबा सफर तय किया है। आज सारा प्रसारण डिजिटाइज्ड है। आकाशवाणी जोधपुर से प्रसारित सभी कार्यक्रम आप तक कंप्यूटर की मदद से पहुंचते हैं। हमारे केंद्र का ध्वनि संग्रहालय तकरीबन डिजिटाइज हो चुका है, लेकिन इस डिजिटीकरण के पीछे आज भी मानवीय संवेदनाएं आपको सहलाती है, हंसाती है, गुदगुदाती है, दुख और सुख के क्षणों में आपसे बातें करती है।
1: आकाशवाणी जोधपुर की वर्षगांठ पर शुभकामना देते हुए निवर्तमान सांसद त्रिनिदाद और टोबेगो के उच्चायुक्त रहे पूर्व जोधपुर नरेश श्री गज सिंह द्वितीय,
2: आकाशवाणी जोधपुर के स्थापना दिवस पर आकाशवाणी परिवार को हार्दिक बधाई देता हूँ। मारवाड़ की प्राचीन संस्कृति को सामने लाने में आकाशवाणी जोधपुर ने बड़ा योगदान दिया है। इस क्षेत्र के कला विरासत को संजोने में भी आकाशवाणी ने महत्वपूर्ण काम किया है। ये केंद्र सही अर्थों में लोकहित के लिए काम करता आया है। मैं इस अवसर पर पुनः बधाई देता हूँ और इसी तरह आगे बढ़ते रहने हेतु मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ।
1: आकाशवाणी जोधपुर की वर्षगांठ पर ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी स्पर्धा में रजत पदक विजेता सेवानिवृत्त कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का शुभकामना संदेश।
3: आकाशवाणी जोधपुर देश की पश्चिमी सीमा के पास स्थित एक महत्वपूर्ण प्रसारण केंद्र है। यह केंद्र सीमावर्ती जनजीवन की समस्याओं के समाधान में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। संगीत और अन्य कलाओं को बढ़ावा देने के साथ साथ जोधपुर केंद्र युवाओं, महिलाओं, सैनिकों और किसानों से जुड़े मुद्दों पर कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। ऐसे कार्यक्रमों के प्रसारण से लोगों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के प्रति जागरूकता पैदा करने में मदद मिलती है और आकाशवाणी जोधपुर की आर्काइव में लोक संगीत का अमूल्य निधि संग्रहित है। आने वाली पीढ़ियां इसका उपयोग करेंगी और अपनी धरोहर पर गर्व करेंगी। मैं आकाशवाणी जोधपुर की वर्षगांठ पर अपनी हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि यह केंद्र पश्चिमी राजस्थान की संस्कृति और विरासत को संजोने में अपना योगदान देता रहेगा।
1: श्री एम एस थॉमस उदारता पूर्वक हमें अपनी बधाई और शुभकामनाएं दूरभाष से प्रेषित करते हैं।
4: आकाशवाणी जोधपुर के स्थापना दिवस के अवसर

0: स्तर पर मैं श्रोताओं, कलाकारों, क्षेत्रीय नागरिकों एवं सहकर्मियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। ये बोलने की आवश्यकता नहीं कि कला और साहित्य मनुष्य का विकास और एक दूसरे को जोड़ने और जुड़े रहने में अहम भूमिका निभाता है। खास तौर पर आकाशवाणी का कार्य देश के जवानों और किसानों का मनोरंजन, शिक्षा और सूचना के क्षेत्र में सबसे अग्रणी रहा है। वर्षों से आकाशवाणी जोधपुर पश्चिमी राजस्थान का अग्रणी लोक सेवक प्रसारक रहा है। ये केंद्र इस प्रदेश के लोक कलाओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और बढ़ावा में सदैव तत्पर रहा है। मैं आशा करता हूँ ये केंद्र बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के मूल मंत्रों को साकार करते हुए भविष्य में भी अग्रणी प्रसारण केंद्र बना रहेगा और क्षेत्र की जनता की सेवा करता रहेगा।
1: स्थापना दिवस का स्मरण हमें हमारे गर्व और अभिमान के आरंभ बिंदु तक ले जाता है। ये हमारी निरंतर यात्रा में एक घड़ी पीछे टेक लगाकर आराम कुर्सी पर बैठकर चिंतन का अवसर देता है। अब तक के सफर में आए मील के पत्थरों को गिनने का मौका देता है। हमारे अग्रजों के प्रति आभार ज्ञापन का अवकाश देता है और उन तमाम श्रोताओं को अ वेरी बिग थैंक यू कहने का स्पेस प्रदान करता है जो हमारे साथ हमेशा बने रहें, बने हुए हैं।
2: आकाशवाणी जोधपुर की समृद्ध और गौरवशाली परंपरा की ऊर्ध्वगामी यात्रा निरंतर है, चिरंतन है। आवाजों के दस्तखत। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी जोधपुर के स्थापना दिवस पर ये विशेष रूपक। वाचक स्वर थे अंशुला कोठारी और भानु पुरोहित। इस रूपक के लेखक थे अनिल कुमार गोयल और इसे प्रस्तुत किया भानु पुरोहित ने। अभी आप सुन रहे थे एक विशेष रूपक। यह आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसिटी चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम अंदाज़ बयां।

अंदाज बयां कार्यक्रम सुनने वाले सभी को सत्येंद्र चारण का प्यार भरा नमस्कार। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस अशआर के साथ कि कभी अल्फाज बनकर कभी एहसास बनकर हम दिल में उतर जाएंगे आवाज बनकर। बस सुनते रहिए इस महफिल को यूं ही, हम आते रहेंगे हर बार नया अंदाज बनकर।

0: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
2: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
3: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
4: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
0: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
5: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न सुख एक तरफ,
6: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियाँ उम्मीद। विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
7: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
8: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये PM ने ये कहा है तुम पढ़ो।
7: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
9: अंतराल के पश्चात अंदाज बयां

कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल। दोस्तों कहते हैं कि मोहब्बत की राहें जितनी हंसी होती है उतनी ही नाजुक भी होती हैं। कभी ये दिलों को सुकून देती है तो कभी वही दिल किसी अनकहे गम से भर जाते हैं। आज की अगली गजल भी कुछ ऐसे ही एहसासों को बयां करती है, जहां दो दिल तो हैं लेकिन उनके दरमियान कुछ अधूरी सी बातें हैं जो खामोशियों को बयां कर

दो जवान दिलों का गम दूरियां समझती है। दोस्तों, मोहब्बत की दुनिया भी कितनी अजीब होती है। कभी ये दो दिलों को एक साथ हंसना सिखाती है, तो कभी वही दो दिल खामोशियों में अपना दर्द छुपाते रह जाते हैं। कभी जुदाई का गम, कभी अधूरी ख्वाहिशों का बोझ, ये इश्क हर रंग दिखाता है। लेकिन इन्हीं गमों के दरमियान कभी कोई ऐसा चेहरा भी मिलता है जिसे देखते ही दिल को सुकून मिल जाए, जिसकी एक झलक सारे गम भुला दे और जिंदगी फिर से खूबसूरत लगने लगे। इसी हसीन एहसास को लफ्जों में समेटे हुए पेश है अगली गजल।

श्रोताओं, कभी कभी चेहरा ही नहीं बल्कि मुस्कान भी उसकी मौजूदगी जिंदगी को खुशनुमा बना देती है। जिंदगी का सफर हमेशा इतना आसान नहीं होता, कभी हम खुद को ही ढूंढते रह जाते हैं तो कभी अपने ही बनाए हुए दायरों में उलझ जाते हैं, और फिर कभी देर से ही सही मगर हमें अपना रास्ता अपना ठिकाना मिल ही जाता है।

चमका। तो श्रोताओं, यह था आज का अंदाज बयां कार्यक्रम का अंक और इसे लेकर मैं हाजिर हुआ था सत्येंद्र। कार्यक्रम का वक्त अब पूरा होने को है, तो दीजिए मुझे इजाजत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंदाज बयां। यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब हम हिंदी में समाचार रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब।
1: अब तक दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टूडू सहित कई मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज पोचिशे वैशाख गुरुदेन्द्र रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। लेफ्टिनेंट जनरल SN राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशक के लिए विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स

0: का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश और कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज तलत महमूद साहब की याद का दिन है, तो इस कार्यक्रम में आज हम उन्हीं को याद कर रहे हैं।

सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में अभी आपने राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत सुना। स्वर तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। फिल्म का नाम था छाया। कार्यक्रम का अगला गीत तलत महमूद और लता मंगेशकर का ही गाया हुआ। ये फिल्म है उसने कहा था। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं सलील चौधरी।

कार्यक्रम का अगला गीत तलत महमूद की आवाज में फिल्म दाग से सुनिए। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं

सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम।

नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में अभी आपने शकील बदायूनी का लिखा ये गीत सुना। स्वर थे तलत महमूद और शमशाद बेगम की। फिल्म का नाम था बाबुल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: शख्सियत।
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से,
1: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सुजाता से सुनिए, आवाज तलत महमूद की। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

कार्यक्रम में अब सुनिए फिल्म फुटपाथ का गीत। तलत महमूद ने इसे आवाज दी है, सरदार जाफरी की रचना और खयाम साहब की धुन है।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार।
1: ये हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे, कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर।
2: तलत महमूद की आवाज में फिल्म संग दिल का गीत सुनिए, राजेंद्र कृष्ण के बोल और सज्जाद हुसैन का संगीत।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा गीत सुनिए। युगल स्वर तलत महमूद और आशा भोंसले की ये फिल्म है बूट पॉलिश।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा।

0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
0: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म टैक्सी ड्राइवर से हमने लिया है। इस गीत को आवाज तलत महमूद ने दी है, रचना साहिर लुधियानवी की और धुन सचिन देव बर्मन की।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम मोहम्मद के संगीत निर्देशन में शकील बदायूं का लिखा गीत, तलत महमूद की आवाज है और ये फिल्म है दिले नादा।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सुरीला सफर बस थोड़ी देर में।

तो लीजिए सुनिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सुरीला सफर की सभी सुनने वालों को आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे और हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए यानी सुरीला सफर करने के लिए तैयार बैठे हैं। सफर में हमारे साथ है ना आप? तो इस सफर में चलने की तैयारी आपने कर ली है हमेशा की तरह। रुकिए रुकिए रुकिए, पहले आज की इबारत तो पढ़ लीजिए। पढ़ ली आपने? अच्छा, जो लोग फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने तो हमारी इबारत पढ़ ली होगी, लेकिन वो दोस्त वो श्रोता जो फेसबुक पेज से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें हम बता दें, आज की इबारत है, एक बेनाम जिंदगी जीते हुए आदमी बेशक मुख्य धारा से दूर हो सकता है पर किसी की आत्मीय पुकार उसमें मोह का बीज पैदा कर सकती है, तब वो मुसाफिर पुरानी गली छोड़ जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते हुए सफलता की चोटी छू सकता है। बहुत ही सीधी साधी इबारत है आज की, है ना? लेकिन हमारे श्रोता परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए हमने आज ये कोशिश की है कि आज इस इबारत में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिन पर आधारित है हमारे आज के गीत, उनका जिक्र भी हम कर देते हैं। हाँ, एक खुशी की बात है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने वो शब्द लिखे भी हैं जो आज की इबारत में हमने रखे हैं। उन सभी श्रोताओं को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज इस इबारत में जो शब्द हैं जिन पर हमारे गीत केंद्रित हैं वो है आदमी, मुसाफिर, बेनाम, चिड़िया, पुकार, धारा, मोह, बीज, चोरी और गली। जी तो इन शब्दों को सुनने के बाद आप टटोलिए अपनी प्लेलिस्ट की कहीं आपने कुछ गीतों को चुनने में गलती तो नहीं कर दी। हालांकि आज बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे ऐसे गीत हमारे श्रोताओं ने चुने हैं जो हमारी प्लेलिस्ट से यानी हमारी पसंद से मेल खाते हैं। हम शब्दों को एक बार फिर दोहरा देते हैं। आज के शब्द हैं आदमी, मुसाफिर, बेनाम, चिड़िया, पुकार, धारा।

मोह, बीज, चोरी और गली। हमारी पसंद के गीतों से आपकी पसंद कुछ कुछ आज मेल खा रही है और यही एक शुरुआत है इस कार्यक्रम की कि आपने हमारे कार्यक्रम को सुनना, समझना, पसंद करना शुरू कर दिया है। तो आज का सफर शुरू करते हैं। इससे पहले एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि आज इस सफर में एक प्रयोग और करने वाले हैं हम। हाँ, वो प्रयोग सीधा साधा है। वो ये कि आज जितने भी गीत हमने चुने हैं वो फिल्मी पर्दे पर किसी गायक या गायिका ने उन गीतों को नहीं गाया है, बल्कि उनके सहायक कलाकारों ने, डांसर्स ने बैकग्राउंड में फिल्माए गए हैं वो गीत, और ये गीत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी हुए हैं। आप समझ गए ना हमारा मतलब? मतलब फिल्मी पर्दे पर उन गीतों को, जो गीत आज हमने चुने हैं, किसी नायक या नायिका द्वारा उनका लिप मूवमेंट नहीं हुआ है, उन्होंने होंठ नहीं हिलाए हैं उन गानों पर, बल्कि साइड आर्टिस्ट जो होते हैं और डांसर्स जो होते हैं या बैकग्राउंड में उन गीतों को फिल्माया गया है और वो गीत बहुत बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर इस गीत के साथ। ये गीत यकीनन आपकी प्लेलिस्ट में है, हमने देख लिया है।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत सुना। नरेंद्र चंचल की आवाज थी और फिल्म का नाम था बेनाम। जी तो ये गीत सुनकर ही आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि पर्दे पर इस गीत को किसने गाया था। जी हाँ, पर्दे पर चंचल साहब ही थे। जब हम उन्हें देखते हैं तो चंचल साहब इस गीत को पर्दे पर गा रहे होते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में कई खूबसूरत और भावनात्मक शब्द छिपे हैं जिन पर गीत चुने जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये शब्द हो सकते हैं जिंदगी, आदमी, पुकार, मुंह, मुसाफिर, गली, विश्वास, श्रद्धा, सफलता, चोटी, जीवन और बेनाम। बिल्कुल, बहुत सारे शब्द आपने बिल्कुल सही चुने हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत मन के उस जटिल रूपांतरण को दर्शाती है जहां एक व्यक्ति शून्यता से पूर्णता की ओर यात्रा करता है। यहां बेनाम जिंदगी केवल गुमनाम ही नहीं बल्कि उस मानसिक अलगाव का प्रतीक है जहां व्यक्ति स्वयं की पहचान खो चुका होता है। तर्क और बुद्धि जहां हार जाते हैं वहां स्नेह की पुकार काम कर जाती है। ये पुकार व्यक्ति के भीतर सोए हुए मोह या जीने की इच्छा को फिर से जीवित कर देती है। अतीत के दुखों, असफलताओं और पुरानी सोच से मुक्त हुए बिना नए शिखर तक पहुंचना संभव नहीं। जब मन में विश्वास अंकुरित होता है तो बाधाएं मार्ग का पत्थर नहीं बल्कि सीढ़ी बन जाती हैं। तो आज के गीत भी आपने लिखे हैं, बेशक मंदिर मस्जिद में बेनाम तुझसे नाराज नहीं, मितवा मुंह मुंह के धागे करके आपने कोशिश की है कुछ गानों की जो हमारी प्लेलिस्ट से या हमारी पसंद से मेल खाते हैं। बाकी आपने जो अपनी इबारत लिखी है वो बहुत खूबसूरत तरीके से पेश की है।

एक श्रोता लिखते हैं कि अगर जीवन नाटक मालूम पड़ने लग जाए तो आदमी अक्सर शांत हो जाता है और दुनियावी धारा से दूर होकर जीने की कोशिश में सिर्फ संघर्ष करता रह जाता है। इसी समय किसी अपने की पुकार उसमें मुंह के धागे जोड़ देती है। एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए वो मुसाफिर अतीत को पीछे छोड़ सफलता के नए आयाम छू लेता है और रेडियो पर बजने लगता है दिल को छूने वाला गीत, वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहां। बहुत सुंदर तरीके से आप अपनी इबारत लिख रहे हैं और आपने जो गानों का कयास लगाया है वो बहुत हद तक सही भी लग रहा है, लेकिन आपको इसके लिए पूरा कार्यक्रम सुनना होगा और सुरीले सफर में हमारा साथ देना होगा। आइए सुनते हैं अगला गीत और उसके लिए हम सवाल भी आपसे करने वाले हैं। ये गीत है फिल्म आजाद से, आवाजी लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की, राजेंद्र कृष्ण की रचना, सी रामचंद्र का संगीत। आपको बतलाना है कि फिल्म आजाद का ये गीत जो हम आपको सुनवाने वाले हैं, अपलम चपलम, सुना है ना आपने, बहुत ही मशहूर गीत है, किस दिग्गज नृत्य जोड़ी पर फिल्माया गया है, मतलब जो नर्तकी वहाँ नृत्य कर रही हैं, उनके नाम आपको हमें बताने हैं। तो आइए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी और एफएम सन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्स पर प्रस्तुत है महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम नारी वाटिका।

0: नारीवादी का सुनने वाली सभी सखियों को उनकी प्यारी सी सखी स्वप्नीला और
1: हंसा विश्नोई का प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: सखियों, हमारे इस प्रोग्राम की परिकल्पना और संयोजन किया है सफलता चारण ने।

0: तो हंसा आज ना मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही है कि गिर कर उठ जाना साहस है, आंधी में दीप जलाना साहस है, डर के आगे जीत खड़ी है, हर मुश्किल से प्रीत बड़ी है, तू कदम बढ़ा राह बनेगी, बस रुक ना जाना ही साहस है।
1: साहस है बिल्कुल। संसार के जितने भी काम है ना स्वप्निला, वो सारे बड़े या छोटे कैसे भी हो, वो साहस के बिना तो होते ही नहीं। संसार के जितने भी महापुरुष जिनको आज हम याद करते हैं, वो उन्हें हम उनके साहस से ही याद करते हैं, क्योंकि साहस के कारण ही उन्होंने बड़े से बड़े काम किए हैं। और देखिए हमारे देश का जो इतिहास बना है वो भी साहस से ही बना है। जैसे हम किसी का भी नाम लेते हैं, जो भी हमारे वीर हैं, शिवाजी हो चाहे रणजीत सिंह हो चाहे पृथ्वीराज चौहान हो या फिर महाराणा प्रताप हो, जिनके भी हम नाम लेते हैं, वो सब कुछ उन्होंने जो भी काम किया वो सब साहस से ही किया है।
0: बिल्कुल हंसा, जब राह कठिन हो जाती है और दुनिया भी डर दिखलाती है, तब जो आगे बढ़ जाता है वही साहस है। जब हार मिले और रुके नहीं मन के दीपक जिसके बुझे नहीं, अंधेरे में जो चमक उठे साहस वही कहलाता है। इसलिए साहस को डर का अभाव तो नहीं कह सकते, बल्कि डर के बावजूद जो सही कदम उठाने की ताकत रखता है और जिसमें फिर से गिर के उठने की हिम्मत होती है वही साहस कहलाता है।
1: बिल्कुल। और ऐसे ही साहसी लोगों ने अपने देश की आन बान शान के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया और हमेशा यही भाव रखा कि हमारा देश विजयी रहे।

0: स्वप्निला, ये जब हम गीत सुनते हैं तो अपने मन में मुझे तो बड़ी गर्व की अनुभूति होती है, क्योंकि हम ऐसी भूमि में पैदा हुए हैं जिसने कई वीरों को, कई रत्नों को जन्म दिया है। उन्हीं में से एक थे महाराणा प्रताप। सिर कटे धड़ लड़ता रहेगा, जब तक एक एक सांस बाकी है मेवाड़ नहीं झुकेगा। और ये कहने वाले महाराणा प्रताप साहस की प्रतिमूर्ति थे।
1: बिल्कुल हंसा, महाराणा प्रताप एक महान वीर योद्धा थे, मातृभूमि के गौरव और स्वाभिमान के प्रतीक थे। वो केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि वे साहस, त्याग और देशभक्ति और आत्मसम्मान के जीवित मिसाल थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, अपने धर्म, संस्कृति और मातृभूमि की रक्षा के लिए कभी झुकना नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और वैसे भी देखा जाए तो महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही वीरता, आत्मसम्मान और देशभक्ति की भावना जाग उठती है। वे केवल मेवाड़ के राजा नहीं थे, और बल्कि वो स्वतंत्रता और स्वाभिमान के रक्षक थे। और उनका जीवन संघर्ष, त्याग और राष्ट्र प्रेम की अनुपम मिसाल है। वो अत्यंत ही वीर, दयालु, स्वाभिमानी और न्यायप्रिय शासक थे, जो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। महाराणा प्रताप ने हंसा कभी भी ना मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार नहीं की। वे अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करते थे, अपनी प्रजा के दुख दर्द को समझते थे, कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जनता का साथ नहीं छोड़ते थे। वो हमेशा सिंह की भांति लड़ते थे और दुश्मनों से कभी डरते नहीं थे, बल्कि अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहते थे। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, वो कभी भी समझौता नहीं करते थे। वो अपनी स्वतंत्रता के साथ ही रहते थे, और स्वतंत्रता से ही अपनी देशभक्ति की अद्भुत मिसाल उन्होंने पेश करी हम सबके सामने।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही। अकबर जहां पूरे भारत पर अधीन अब उसको देश को करना चाहता था, वहीं पे उसने सभी कई राजपूत राजाओं ने संधि कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप ही ऐसे थे जिन्होंने उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेवाड़ का सिर कभी नहीं झुकेगा। अच्छा, अकबर ने 4 बार शांति दूत भेजे, जिसमें मानसिंह और राजा भगवान दास भी थे, लेकिन प्रताप ऐसे वीर थे, ऐसे शेर थे जो बिल्कुल भी नहीं झुके। इनके राज्याभिषेक की बात करें तो महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद में इनके छोटे भाई जहां बनने चाहते थे, वहां पर मेवाड़ के सरदारों ने इन्हें योग्य माना, और वो थे ही इतने योग्य। उनके बारे में कहा जाता है कि बचपन से ही उन्होंने ये सोच रखा था, क्योंकि वो युद्ध कौशल में भी अग्रणी दिखाई देते थे और एक आदर्श संगठनकर्ता दिखाई देते थे। धर्म के लिए, देश के लिए वो अपना बलिदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, इसीलिए बाकी जितने भी सरदार थे उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये ही राजा बनेंगे। तो इस तरह से सिसोदिया वंश के 12वें राजा बने महाराणा प्रताप।
1: बिल्कुल हंसा, और जब कई राजाओं ने अकबर के सामने समर्पण कर दिया था, तब महाराणा प्रताप अकेले ही वीर थे जिन्होंने स्वतंत्रता का मार्ग चुना था, और उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए कठिन संघर्ष किया, कभी हार नहीं मानी। उनकी देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उनके जीवन के प्रत्येक संघर्ष में दिखाई देती है।

0: हम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: सखियों, आप सुन रही हैं कार्यक्रम नारी वाटिका और हम हैं आपके साथ हंसा और स्वप्नीला। तो स्वप्नीला, इतने गौरवशाली व्यक्तित्व के धनी थे महाराणा प्रताप कि उनका उनका जो कद था वो ही 7 फीट 5 इंच का था और उनका जो वजन था वो 110 केजी था। सोचिए, और इसके साथ में वो 80 केजी का तो 80 किलो का तो वो भाला लेकर चलते थे और आसपास उनके 2 तलवारें होती थी जिनका वजन भी कहते हैं कि 208 केजी था। और ऊपर से जो बख्तर बन जब वो युद्ध में जाते होंगे तब वो जो पहनते होंगे
1: भारी
0: वो सब, हाँ, वो लोहे के हैं जैसे हम अभी म्यूजियम में जाते हैं तो देखते भी

0: हैं वो सब चीजें। तो अब आप सोचिए कि वो अपने आप में एक चलते फिरते, कहना चाहिए कि एक अजूबे तो नहीं कहना, पर कितने वीर,
1: योद्धा
0: कितने
1: टाइप।
0: योद्धा, उनके उनके उनकी चाल कैसी होगी, उनकी आंखें, उनकी उनके बोलने का अंदाज, वो सब कुछ कितना अद्भुत रहा होगा।
1: बात तो सही है।
0: और अद्भुत ही है उनकी वो, उनका वो युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध।
1: बिल्कुल, हल्दी घाटी को हम कैसे भूल सकते हैं हंसा। जी हाँ, हल्दी घाटी इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ के मिट्टी का रंग तो हल्दी जैसा पीला है ही, लेकिन उस हल्दी घाटी पर एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था।
0: और ये घाटी सिर्फ 5 किलोमीटर लंबी और बहुत संकरी थी। दो तरफ ऊंचे पहाड़ थे, एक तरफ बड़ी मुगल सेना थी और एक तरफ प्रताप की सेना। और ऐसे कहते हैं कि गुरिल्ला युद्ध जो है वो वहीं से आरंभ हुआ। तो क्योंकि हल्दी घाटी पीली मिट्टी जैसी थी, और ये गोगुंदा से 17 किलोमीटर दूर है, अरावली की सकरी घाटी है जिसका चुनाव किया गया। और अकबर क्योंकि चाहता था कि हम मैं पूरे भारत पर अधीनता स्वीकार कर लूं, लेकिन प्रताप ने ऐसा नहीं होने दिया। तो उन्होंने 4 बार दूत भेजा प्रताप के पास कि आप मेरी अधीनता को स्वीकारें। और उसके बाद मानसिंह स्वयं आए मिलने के लिए उदयपुर, लेकिन इन्होंने मानसिंह के साथ भोजन भी नहीं किया। इनके अनुसार वो विदेशी के साथ मिले हुए हैं, तो मैं ऐसा काम उनके साथ
1: नहीं
0: नहीं करूंगा।
1: करूंगा। हाँ,
0: अब इस बात को उन्होंने अपमान माना और इसी उसमें मेवाड़ पर हमला बोल दिया गया। तो स्थान वो जो था वो बहुत ही ऐसा था। अच्छा, मेवाड़ की सेना ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी थी, कहते हैं कि कुल 20,000 लोग थे और उधर मुगल सेना में 80,000 के करीब थे। लेकिन ये जो महाराणा प्रताप के साथ जो भील थे वो बहुत अच्छे तीरंदाज थे, और इसके अलावा तीरंदाज होने के साथ में इनमें एक चीज और थी कि इनकी जो भाषा थी, इनकी जो बोली थी, उस बोली के जरिए ये सांकेतिक भाषा इस्तेमाल करते थे और वो इनके पक्ष में जाती थी। तो ये सारी भाषा जो ये जो लोग थे, मुगल जो सेना थी, वो समझ नहीं पाती थी, और इसीलिए ये युद्ध अनिर्णय की स्थिति में रहा।

0: तो स्वप्नीला, जब ये युद्ध चल रहा था, ये युद्ध शुरू हुआ था 18 जून 1576 में हुआ था उस दिन, और ऐसा कहते हैं कि 3 घंटे तक भीषण लड़ाई हुई थी। और अकबर की तरफ से मानसिंह ने इसमें प्रतिनिधित्व किया था, और महाराणा प्रताप खुद चेतक पर सवार थे। और ये माना जाता है ना कि राजपूत परंपरा में माना जाता है कि सेनापति यदि मर जाए ना तो सेना बिखर जाती है, इसीलिए मानसिंह जो हाथी पर बैठा हुआ था उस पर चेतक ने अपने पैर रखे और प्रताप ने जोर से भाला फेंका, लेकिन भाला जो था वो बदकिस्मती से मानसिंह को नहीं लगा बल्कि महावत को जा लगा। महावत मरा लेकिन मानसिंह बच गया। इतने में ही एक मुगल ने चेतक के पैर को काट दिया। अब ये मौका था जब झालामान जो थे वो इनके पक्ष में थे, किसके पक्ष में? प्रताप के पक्ष में थे, और उन्होंने कहा, उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, मैं प्रताप हूं। तो पहले क्या होता था कि आजकल की तरह सोशल मीडिया तो था नहीं, तो कौन प्रताप है जानते नहीं थे। तो जब उसने, झाला जी ने चिल्लाकर कहा मैं प्रताप हूं, तो सभी लोगों, सभी मुगल सेना का ध्यान उनकी तरफ गया और इस तरह से उनको मार दिया गया। जब वो वीरगति को प्राप्त हुए तो इतना ही समय था कि प्रताप को वहां से निकाल लिया गया। और उसके बाद में सिर्फ मदद झाला ने ही नहीं की बल्कि भीलों ने भी की।
1: बिल्कुल, और महाराणा प्रताप और भील समुदाय का रिश्ता जो था ना हंसा, वो राजा और प्रजा का तो था ही नहीं, वो ऐसा था जैसे दो साथी लड़ाकू का रिश्ता होता है ना, वैसा था। तो मुगलों से लड़ाई में भीलों ने भी बहुत साथ दिया, जो इतिहास में मिसाल बन गया।
0: हाँ, और ये रिश्ते की शुरुआत पता है यहाँ से नहीं हुई, उससे पहले भी बप्पा रावल जो 8वीं सदी में राजा बने थे, उन्होंने ही, उनने परंपरा निकाली थी कि मेवाड़ के हर महाराणा के राज तिलक पर भील सरदार आएगा और अपने अंगूठे का खून निकाल कर उनका तिलक करेगा। यानी भील के बिना मेवाड़ का राजा अधूरा था, और परम प्रताप जी ने भी इस परंपरा को निभाया था।
1: बिल्कुल, और प्रताप को तो भीलों का वन पुत्र कहते थे, भील उन्हें कीका यानी बेटा कहकर बुलाते थे।
0: अच्छा, अकबरनामा में अब्दुल फजल ने लिखा है, ये अकबर ने जो अपना परिचय लिखवाया है, अपनी जीवनी लिखाई है, उसमें अबुल फजल ने लिखा है कि पहाड़ों पर जो जंगली लोग थे वो तीर इस तरह चलाते थे कि मौत बरस रही हो, और इसी बरसी हुई मौत से ही ये जो युद्ध था वो युद्ध निर्णायक स्थिति में नहीं रहा। अच्छा, एक और बहुत भावुक किस्सा आता है इसमें कि एक बार प्रताप जो थे वो जंगल में भूख से बेहाल थे, क्योंकि उन्होंने इस युद्ध के बाद में अपने आप को वहां नहीं रखा था। कहाँ? अपनी जो ये जो होता है उनका राजमहल, उस राजमहल में नहीं रखकर, और इन्होंने रखा था अपने आप को जंगलों में कि मैं अब राजा नहीं रहा, यूं सोच के। तो उसकी बात करेंगे, पर उससे पहले सुनते हैं गीत।

0: तो हंसा, हम बात कर रहे हैं हल्दी घाटी युद्ध की, और हम कैसे भूल सकते हैं उस युद्ध के अंदर उस महान घोड़े को जिसके बारे में कहा गया है कि नीला घोड़ा शान मेवाड़ की वीरों का अभिमान था, राणा के हर संकट में चेतन ढाल समान था।
1: राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, रणबीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था।
0: बिल्कुल हंसा, इतिहास में चेतक को केवल अश्व नहीं बल्कि साहस, स्वामी भक्ति और अद्भुत वीरता का प्रतीक माना गया है। और हल्दी घाटी में चेतक ने जो पराक्रम दिखाया वो आज भी लोगों के हृदय में अमर है।
1: बिल्कुल अमर है। अब देखिए ना, जब युद्ध के समय उसका एक पैर घायल हो गया, कट गया, और उसी तीन टांगों पर वो 5 किलोमीटर दौड़ कर गया और 26 फीट नाला कूदा उसने अपने स्वामी को लेकर, प्रताप को लेकर। और इसीलिए आज चेतक स्मारक बनाया, और कहते हैं कि प्रताप ने चेतक का दाह संस्कार भी अपने हाथों से किया था। और ये जिसे पार करते समय उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, ये एक विश्व में अनूठा उदाहरण है ना स्वप्निला?
0: बिल्कुल। और आपको पता है हंसा कि चेतक एक मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा घोड़ा था। मतलब वो मारवाड़ी घोड़े जो राजस्थान की शान माने जाते हैं, उनकी पहचान उनके अंदर के मुड़े हुए जो कान है उनसे होती है। ये नस्ल अपनी तेज गति, सहन शक्ति, युद्ध क्षमता और मालिक के प्रति निष्ठा के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो मारवाड़ी घोड़े जो होते हैं वो कठिन रेगिस्तानी परिस्थितियों में भी बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं और युद्ध में बहुत उपयोगी माने जाते हैं। और कहा जाता है कि जो चेतक का रंग था वो नीला या हल्का आसमान जैसा मिश्रित एकदम धूसर सा था, और इसी कारण लोक गीतों और कविताओं में भी उसे नीला घोड़ा भी कहा जाता है।
1: एक अनूठा विश्व में उदाहरण कि एक मूक प्राणी ने किसी इंसान की तरह ही साहस, निष्ठा और वफादारी दिखाई। और आज भी चेतक का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है, उसके अद्भुत पराक्रम को, उसकी असाधारण स्वामी भक्ति को याद किया जाता है।

0: तो हंसा जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उसके बाद प्रताप का जो पूरा परिवार महाराणा प्रताप जी का परिवार वो सब जंगलों में आ गया और 25 साल जंगल में रहे, भील ही उनके कुटुंब बने। और आप ये देखो कि जब उनको भूख लगती थी तब भील की माँ जो होती थी वो अपने बच्चे का अनिवाला निकाल कर प्रताप जी के बेटे अमर को दे देती थी। रात होती तो वो भील युवक पहाड़ों पर मशाल लेकर के पहरा देते थे ताकि अगर मुगल आए तो सीटी बजाकर उनको खबर दे दें। और भीलों ने अपनी तीर कमान और भाले भी महाराणा प्रताप को दे दिए, बोले आप लड़ो हम आपके तीर बनेंगे।
1: और एक बहुत ही ऐसी घटना आती है कि जंगलों में रहते वक्त एक दिन उनकी बेटी के हाथ से जो घास की रोटी वो खाते थे वो बिलाव झपट कर ले गया और बिल्ली रो पड़ी। तो ये सब प्रताप देख रहे थे तो उनका जो कठोर हृदय है वो भी टूट गया और उन्होंने उस समय अकबर को संधि पत्र लिखना शुरू किया। लेकिन इस दौरान ही उनके पास पृथ्वीराज राठौर का एक पत्र आया और वो पत्र था, पटकू मूछा पातशाह के पटकू निज तन कर तार थे राको हिंदवाण महाराणा सिर कटिया। यानी अकबर अपनी मूछ नीची करे या मैं अपना सिर काट दूं, आप हिंदुस्तान की लाज रखिए। ये पत्र पढ़कर प्रताप फिर से खड़े हो गए और उसके बाद उन्होंने धैर्य बना लिया कि मैं मेवाड़ का ध्वज कभी भी झुकने नहीं दूंगा, क्योंकि जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की वो भला उस ध्वज को कैसे झुकने देगा। प्रताप ने कहा, तुरक कहासी मुख पतो इन तनसु इकलिंग, मतलब तुर्क मुझसे मुझे मुखिया कहें, इससे अच्छा मेरा शरीर एकलिंग जी को समर्पित हो जाए। तो इस तरह से प्रताप ने अपनी ये बात मानी और अपने जीवन में सदैव विजयी रहे।
0: बिल्कुल हंसा, और इसलिए तो कहा भी गया है कि मेवाड़ केसरी देखो चलता अरिदल में भूचाल उठा, राणा प्रताप के रणगर्जन से दुश्मन का हर जाल टूटा, घास की रोटी खा ली लेकिन माथा कभी झुकाया ना, मातृभूमि की रक्षा खातिर जीवन पूरा बिताया था।

0: तो स्वप्नीला, ये जो संघर्ष था महाराणा प्रताप का, वो 25 वर्ष तक चलता रहा और उन्होंने मेवाड़ का एक हिस्सा ले भी लिया। हल्दीघाटी का जो युद्ध था उसको हार नहीं माना गया, वह तो प्रताप के स्वाभिमान का प्रतीक बन गई। और अकबर ने जब कभी प्रताप को सीधे नहीं हराया था, फिर जब प्रताप की मृत्यु की खबर अकबर को मिली तो वो कहते हैं कि वो रो पड़ा। उनके एक दरबारी थे कवि दुरसा आड़ा, उन्हें लिखा है कि अस लेगो अण दान पाग, अस लेगो अण नामी, गो आड़ा गवड़ाए जी को बहतो घुरवामी। मतलब हे प्रताप, तू अपनी पगड़ी को बेदाग ले गया, तू बिना झुके बिना अधीनता स्वीकार किए चला गया। तो हम ऐसे प्रताप को नमन करते हैं। और ये जो वीर रस की कविताएं हम सुनते हैं ना, ये वीर रस की कविताएं युद्ध के समय सैनिकों का मनोबल बढ़ाती थी।
1: बिल्कुल हंसा, और इतिहास के गौरवशाली पलों को जीवंत करती है, हमें रूढ़ियों को चुनौती देने की प्रेरणा देती है। हमारे मन में यही कविताएं वीरता, राष्ट्रभक्ति और साहस का संचार करती है।
0: और कहा गया है ना कि मन के हारे हारे मन के जीते जीत, तो यदि योद्धा सुस्त है तो वो कैसे विजयी बनेगा। उस योद्धा का मनोबल बढ़ाने के लिए वीर रस के गीत गाए जाते हैं, और सिपाहियों का, ताकि सिपाहियों में पराक्रम रहे, उनका धैर्य बना रहे, उनकी निष्ठा का भाव बना रहे और ये बढ़ता भी रहे,
1: ताकि वो माटी के लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार हो जाए।
0: तो
1: सिर्फ कविता ही नहीं है बल्कि शौर्य गाथाएं भी हैं जो वीरों में जोश भरने का काम करती हैं।
0: और ये वीर रस का भाव निडरता से शत्रुओं का सामना करने को प्रेरित करता है, या हम कहें कि ये वीर रस के जो काव्य हैं वो पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है।

0: ये जो वीर रस से भरी हुई कविताएं हैं, इनको हम अपने पाठ्य पुस्तकों में भी पढ़ते हैं और ऐसा लगता है ये हमेशा कालजयी रहेंगी। जब ये लिखी गई थी, जितनी शिद्दत से उनको लिखा गया था, वैसे ही ये आज भी लगती हैं, है ना सुप्रीला?
1: बिल्कुल, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो झांसी की रानी लिखी, वो तो अभी तक सबके मुंह पे, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक के।
0: चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदे लोहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आज भी बच्चे इसे स्टेज पर दोहराते हैं, बोलते हैं और हमारी पाठ्यपुस्तक में आज भी आती है। तो ये हमारा जो साहित्य है वो बहुत ही व्यापक है, बहुत समृद्ध है, और कहते हैं ना कि जो साहित्य होता है स्वप्निला, वो तो समाज का दर्पण होता है, तो सरलता से सबको आकर्षित भी कर लेता है अपनी तरफ।
1: बिल्कुल।
0: और जब ये वीरों की बात हम करते हैं तो एक मानव मन को एक संबल मिलता है, हमको बांधे रखता है साहित्य, और जब क्योंकि वो हमको सम्मोहित करता है, हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, इसीलिए उसमें जो भी लिखा है, तो वीर रस की यदि बात आएगी तो वो हमारे अंदर अपने आप ही उसको पढ़ के ऊर्जा भर जाएगी। और इसी तरह से देखा जाए तो सबसे पुराने कवि जो थे चंद्र बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान रासो लिखा है, वो तो थे ही थे, उसके बाद रीतिकाल में कवि भूषण थे। उस समय कहा जाता है कि श्रृंगार रस से भरी हुई कविताएं लिखी जाती थी, लेकिन भूषण ने वीर रस की से कविताएं लिखी, और बहुत सुंदर उनकी कविताएं थी। और ये जो लिखने वाले लोग थे, ये क्या करते थे कि राजाओं के अंदर जोश भरने का काम करते थे। इनकी जो कविताएं होती थी वो उस समय युद्ध के समय जाते समय इनके बहुत काम आती थी, जैसे अभी हमने बात की।
1: सुभद्रा कुमारी चौहान की ऐसी रामधारी दिनकर भी थी।
0: हाँ, और उसके
1: उनको
0: बाद
1: कैसे
0: में
1: भूल सकते हैं।
0: बिल्कुल, आजादी के समय के कवि और राष्ट्र कवि जिन्हें हम कहते हैं, तो इनकी कविताओं में भी हमको ओज दिखाई देता है, एक विद्रोह, एक आक्रोश दिखाई देता है, और क्रांति की बात तो उस समय थी, अंग्रेजों को भगाना था, साथ में हमारे देश को भी

0: सुधारना था। तो इनके जो कविताएं हैं, उनके जो अंश हैं, वो आज सबसे ज्यादा भाषण में उपयोग लिए जाते हैं। आज भले ही हम कहते हैं सोशल मीडिया में इतनी सारी चीजें आ गई हैं, बहुत सारे नए कवि आ गए हैं, सब कुछ है, लेकिन इनकी जो कविताएं हैं, वो चाहे रश्मि रथी इनकी काव्य था, संग्रह था वो हो, या परशुराम की प्रतीक्षा हो, कुरुक्षेत्र हो, उसकी उसकी जो उसके काव्यांश आज बहुत सारी जगह इस्तेमाल
1: हाँ,
0: होते
1: वो
0: हैं।
1: रश्मि रथी की दो लाइन तो मुझे भी याद आ रही है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में।
0: खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़,
1: और मानव जब जोर लगाता है।
0: पत्थर पानी बन जाता है।
2: देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।

है मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। है मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए।

0: तो सखियो आज हम बात कर रहे थे महाराणा प्रताप की, जिनकी त्याग तपस्या और वीरता का वो एक अद्भुत अवतार थे। महाराणा प्रताप हमारी भारत माँ के श्रृंगार थे। मातृभूमि की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष ही सच्ची वीरता है। महाराणा प्रताप ने हमें सिखाया है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, अपने धर्म, देश और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमेशा अडिग रहना चाहिए। वे भारत के गौरव, साहस और स्वतंत्रता के अमर प्रतीक है और आज भी उनका नाम सुनते ही हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है।
1: बिल्कुल, महाराणा प्रताप केवल इतिहास के पन्नों में सीमित नाम नहीं है, बल्कि वे भारत की आन बान और शान है। अब वक्त हो चला है तो बता दूं कि HPT पर आज हमारे साथ थे चंद्रराम पटेल, PK सेन, और कंट्रोल रूम से हमारे साथ थे सुनील जयपाल, और FM से थे प्रवीण कुमार। अच्छा, ये महाराणा प्रताप की हम जहाँ बात कर रहे हैं वहाँ पर ये कहना चाहिए कि चेतक ने प्रण निभाया था, अपने प्राणों की आहुति देकर राणा को बचाया था, ऐसी स्वामी भक्ति जगत में दुर्लभ हो जाती है। चेतक की अमर कहानी हर भारतवासी गाता है और महाराणा प्रताप से मिलने वाली प्रेरणा हम सबको अनेक प्रेरणाएं देती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो कि जिसकी नस नस में वीरता थी, जिसका हर सांस तूफान था, मातृभूमि की रक्षा करना राणा का केवल ध्यान था, सोने का महल छोड़ दिया पर झुकना कभी स्वीकार नहीं, ऐसे वीर प्रताप समान भारत में कोई और नहीं।
1: तो आइए आज उनकी जयंती पर हम सब संकल्प लें कि अपने देश, अपने संस्कृति, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। और सखियों, आज कंसोल पर वीर रस से भीगे गीतों को सुनवा रही थी मोनिका, और हम दो सखी आपके साथ थे, मैं हंसा बिश्नोई और
0: मैं स्वप्नीला।
1: तो स्वीकार कीजिए हमारा
0: नमस्कार।
1: हमारे इस प्रोग्राम की परिकल्पना की थी सफलता चारण ने। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी वाटिका। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि

0: सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व ओ अखंडता रक्षा करिब।
1: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 वैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचना

युवाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा

0: एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
1: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खान पान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक

0: शिक्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन, किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। दो दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
2: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। ये स्वर है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है ताजमहल। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रोशन।

कार्यक्रम में आप सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गाइड का गीत। गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत रचना सचिन देव बर्मन की है।

0: करता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक उलड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

किशोर कुमार की आवाज थी, फिल्म का नाम था मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। गीत आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो, या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसका आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

फांस लगे है तो करजवामा खटक होई बेकरी, फांस लगे है तो करजवामा खटक होई बेकरी। नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवामा कसक होई बेकरी। थई थई थई थई थई झाक दिनक दिन थाक, तिनक तिन झाक दिनक दिन थाक, तिनक तिन झाक। आँख मिल जाई है सजनिया।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों को। फिल्म का नाम था दिल अपना और प्रीत पराई। शब्दकार शैलेंद्र थे और संगीतकार शंकर जयकिशन थे। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम अब खत्म होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
2: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
3: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। चलिए शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। ये पहला गीत सुनना चाहा है, ये है हमारे सुनने वाले श्रोता ककराला उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज खान, प्रवीण खान, अनिल नागर और इनके परिवार के दोस्त। और ये हैं विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारुल, पायल, श्वेता, उर्वी बेन अड़िया। इन्होंने ये खत लिखा है अकोला महाराष्ट्र से। आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया थोड़ा सा अपने जो शब्द हैं, जो राइटिंग है, उन्हें साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। फिर हम जब नामों को पढ़ते हैं और कोई गलत नाम हमसे पढ़े जाते हैं तो हमारे शिकायत श्रोता जो हैं भर भर के हमारी शिकायत करते हैं। तो कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ सुथरी लिखें, साफ तरीके से, ताकि हम आपके नाम को अच्छे से पढ़ सकें। आपने अपने नामों को घुमा घुमा के लिखा है, कृपया इसी तरह से नामों को न लिखें, साफ सुथरे तरीके से लिखें ताकि हम सही नाम आप तक पहुंचा सकें। चलिए, आप सभी सुनना चाहते हैं लैला मजनू फिल्म का ये गीत।

स्वर लता मंगेशकर का था और फिल्म का नाम था लैला मजनू।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं गांव दलपतपुरा से दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और इनके परिवार वाले। इसी गाने को जो अब हम आपको सुनवाने वाले हैं उसे सुनना चाहते हैं गांव सांकरा सोमनी जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, दिवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, रजनी देवी साहू और मास्टर प्रणय कुमार साहू ने। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले को फिल्म राम बलराम में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के लिए आप सभी हैं ख्वाहिशमंद। गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज इसी गीत को सुनना चाहते हैं। सिकंदर अली खान और बदरुद्दीन, ये खत है शमसुद्दीन की बाड़ी के पास अमर सिंहपुरा बीकानेर से। आप सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, जिसे आवाज किशोर कुमार ने दी है और फिल्म का नाम है दाग।

0: हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं ने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत। इसे सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ से सीमा, शिखा, सपना, प्रीति, संध्या, मोनस और शालू ठाकुर ने। मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है धर्मवीर, गीतकार आनंद बख्शी हैं। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: ओ मेरी महबूबा।

मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश नदीम श्रवण का संगीत, समीर के बोल, अलका याग्निक, कुमार सानू और अजय देवगन की आवाजें। फिल्म का नाम है दिलवाले। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप हैं छत्तीसगढ़ से संध्या सिंह, नीलेश सिंह, शैलेश सिंह, शैलू ठाकुर और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेग बिरक और मीका बिरक का।

0: ये था फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।
1: मन चाहे गीत।
2: चाहेगी।

0: चिट्ठी ले लीजिए।
1: आता हूँ पोस्टमैन भैया।
2: लगता है गांव के तुम नए पोस्टमैन हो।
3: जी हाँ, मैं नया पोस्टमैन कंदस्वामी हूँ। लीजिए, ये आपकी चिट्ठी है।
2: लाओ। अरे हाँ, याद आया, अब पुराना पोस्टमैन रिटायर होने वाला था ना।
3: जी हाँ, वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह मैं आया हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ श्रीमान।
2: अरे भाई, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? पुराना पोस्टमैन तो इस तरह कभी जल्दी नहीं मचाता था। हर घर में कम से कम आधा घंटा बैठता था, बातचीत करता था और फिर आगे जाता था।
3: जी हाँ, सब ऐसा ही कहते हैं। मेरे लिए तो एक एक मिनट सोने के बराबर है। सयानू।

0: उन्होंने कहा है ना कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। अच्छा अब आज्ञा दीजिए।
1: वाह वाह, तुम देखने में तो कम उम्र के मालूम होते हो लेकिन बातें बड़ी समझदारी की करते हो। मुझे तो वक्त काटने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए, कुछ ना कुछ बोले बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैं तो बोलता ही रहूंगा। अच्छा तुम जाओ भैया, अपना काम देखो।
2: पोस्टमैन, मेरी कोई चिट्ठी है?
0: घर का क्या नंबर पता है श्रीमान?
2: नंबर 11 पश्चिमी गली।
0: इस पते का एक लिफाफा है श्रीमान, लीजिए।
2: मुझे पढ़ना नहीं आता है भैया, जरा तुम ही पढ़कर सुना दो।
0: लिखा है, पूज्य पिताजी प्रणाम, मैं सकुशल हूँ, आपकी कुशलता भगवान से चाहता हूँ।
2: मेरे बेटे मणि की चिट्ठी है। अच्छा आगे पढ़ो।
0: मैं यहाँ अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ, परीक्षा की फीस देनी है, कृपया 50 रुपए भेज दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, आपका प्रिय पुत्र मणि। बस इतना ही लिखा है, ये लीजिए चिट्ठी।
2: अगर कष्ट न हो तो डाक बांटकर मेरे घर आ जाना, मनियाडे लिखकर मेरे बेटे के नाम भेज देना, बड़ा उपकार होगा भैया।
0: मैं जरूर आऊंगा बाबा, अपना काम खत्म करके मैं सीधा आपके घर आऊंगा, तभी मनी ऑर्डर फॉर्म भर दूंगा।

0: नित्यानंद स्वामी, आज मेल लेट थी क्या?
1: हाँ, आज जरा लेट ही आई है पोस्ट मास्टर साहब। अब तो सारी की सारी डाक गांव में बंट जाने चाहिए थी।
0: तो क्या हुआ, यहाँ तो सबके सब खेती बाड़ी करने वाले किसान ही रहते हैं। शहर की तरह व्यापार करने वाले लखपति थोड़ी रहते हैं जो डाक का इंतजार करते रहे।
1: आप ठीक कहते हैं, आप तो यहाँ बरसों से पोस्ट मास्टर हैं।
0: इस गांव से बहुत सी लड़कियाँ अपने अपने ससुराल चली गई है, बहुत से लड़के पढ़ने के लिए शहर गए हुए हैं। बस यहाँ के माँ बाप अपने अपने बेटे बेटियों के कुशल मंगल की चिट्ठियों की राह देखते रहते हैं। उन्हें ये चिट्ठियाँ मिल जानी चाहिए, बस देर सवेर की कोई बात नहीं। इसलिए जब चाहो आराम चैन से डाक बांट आए।
1: नहीं पोस्ट मास्टर साहब, मैं तो समझता हूँ कि गांव के लोग भले ही धनी व्यापारी न हो, इनके लिए सगे संबंधियों के प्रेम का कहीं ज्यादा मूल्य है। आप इनके उस आनंद की जरा कल्पना कीजिए जो उन्हें दूर बसे अपने सगे संबंधियों के कुशल क्षेम का समाचार पाकर मिलता है, उनकी चिट्ठियां पढ़कर मिलता है। उस आनंद का क्या शब्दों में वर्णन हो सकता है।
0: अरे वाह कंद स्वामी, इस छोटी सी उम्र में भी गुड़ बात करना खूब जानते हो।
1: मैं बचपन से ही मुसीबत में पला हूं ना, मैं अभी बच्चा ही था कि मेरे माँ बाप परलोक सिधार गए। मेरे भाई बहन कोई नहीं रहे, मैं अपने मामा की सहायता से पढ़ लिख कर बड़ा हुआ और इस पोस्टमैन की नौकरी पर लगा। बातों बातों में देर हो ही गई, यहाँ का काम मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। देखिए कोई मनी ऑर्डर या रजिस्ट्री है क्या, तब तक मैं बाकी चिट्ठियों पर मोहर लगाता हूँ।
0: मनी ऑर्डर हाँ एक है। सैनिक ने रुपया भेजा है, शाबाश जवान।
1: कौन है वो सैनिक?
0: अरे वही तुम्हारा डुप्लीकेट।
1: मेरा डुप्लीकेट?
0: हाँ तुम्हारा हम शक्ल। तुम जब पहले दिन ड्यूटी पर आए थे तो तुम्हें देखते ही मुझे यही बात महसूस हुई थी। कंद स्वामी तुम्हारी शक्ल सूरत उस सैनिक से इतनी मिलती जुलती है कि तुम दोनों को अलग अलग खड़ा कर देखें तो ये कहना मुश्किल होगा कि कौन कंद स्वामी है और कौन कुमार स्वामी। एक ही सांचे में ढली दो मूर्तियाँ, एक सा चेहरा एक सा कद। अगर तुम्हारे चेहरे पर मूछें और गाल पर एक मस्सा हो तो तुम्हारी माँ भी तुम दोनों में फर्क नहीं कर सकती, वो हूबहू तुम जैसा है।
1: कौन है वो?
0: अरे शिवकामी नाम की बुढ़िया का बेटा कुमार स्वामी।
1: कौन शिवकामी? वो तो नहीं जो उस उत्तरी गली में 14 नंबर के मकान में रहती है, उसी की बात कर रहे हैं ना आप?
0: हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसका बेटा कुमार स्वामी बचपन से ही बड़ा उद्दंड और शरारती था, जब देखो कोई न कोई उपद्रव खड़ा किए हुए है। लोगों ने चैन की सांस ली जब किसी तरह सेना में भर्ती होकर गांव से चला गया। वहां वो बड़ा ही अच्छा और जिम्मेदार जवान बना, काफी तरक्की की है। साल में एक बार छुट्टी पर यहाँ आता है। दुश्मन ने जब से देश पर हमला किया था तब से वह छुट्टी पर नहीं आया, सीमा रक्षा के किसी मोर्चे पर लगा है। वो 3 महीने में एक बार 3,000 या 4,000 रुपए अपनी माँ को भेजता है। अब भी उसने 3,000 रुपए भेजे हैं।
1: अच्छा, तभी वो बेचारी बुढ़िया माँ दरवाजे पर खड़ी होकर रोज मुझे घूर घूर कर देखती है। आज जब मैं उसे मनी ऑर्डर दूंगा तो वह कितनी खुश होगी।
0: आज क्या जल्दी है, कल जाकर दे आना।
1: क्या कह रहे हैं आप पोस्टमास्टर साहब, ये गलत बात है। डाक खाने का नियम तो ये है

0: कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्थान पर मौजूद है तो उसके डाक उसे फौरन मिलने चाहिए।
1: मैं तो यूं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बस।
0: सभी पत्रों पर मोहर लगा दी है, तो मैं चलूं? और हाँ, उस मनी ऑर्डर का रुपया दे दीजिए।
1: ये लो, ठीक तरह से गिन लो, डाक जल्दी बांटकर मेरे घर आ जाना। पास तुम मेरे साथ ही खाना खाओगे।

0: क्यों भाई सिंगारम, क्या हाल चाल है? बड़े नाराज मालूम होते हो आज, क्या बात है? क्या एक कप चाय लाऊं? क्या सोच रहे हो? अरे भाई मैं अपने पैसे से चाय खरीद कर लाऊंगा।
1: अरे क्या बकता है मारी, आजकल मेरा हाथ जरा तंग है इसलिए तुझे मजाक की सूझ रही है। अरे तू क्या मुझे चाय पिलाएगा, मैं चाहूँ तो अब भी हजारों को चाय पिला सकता हूँ, समझे?
0: सो तो है, लेकिन जरा समय का फेर देखो, हनुमान जी तो एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका में पहुँच गए थे और यहाँ तुम हो कि गाँव के नाले को भी नहीं लांग सकते। है ना?
1: लगता है मारी आज तेरी चांद कुछ खुजला रही है साले, लगाओ।
0: अरे रे रे रे, जबान का काम हाथ से क्यों ले रहे हो भाई सिंगारम? कहो कुछ काम बना?
1: बड़ा आया है काम बनाने वाला, जब खुद मैं किसी की अंटी ढीली करूंगा तभी कुछ काम बनेगा। हाँ।
0: अरे भाई अपने राम का भी तो यही धंधा है, मेहनत मजदूरी तो हमसे होती नहीं, ये हाथ पांव काम करने के काबिल कहां रहे? अगर कोई भूला भटका सामने पड़ जाए तो उसे छीना झपटी करके ही अपनी रोटी चलती है।
1: और चारा ही क्या है, अगर मेरी वो बुढ़िया बहन कृपा करके कुछ न कुछ देती रहे तो रोटी की कोई फिक्र ही नहीं रहेगी। लेकिन वो एक पैसे की दीवार नहीं, मोर्चे से बेटा रुपया भेजता है तो उन्हें संदूक में रखकर ताला लगा देती है और कहती है मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है।
0: सिंगारम सिंगारम उधर देखो, नया डाकिया कंद स्वामी आ रहा है।
1: अरे यही है वो? अरे ये तो हूबहू मेरी बहन के बेटे कुमार स्वामी जैसा दिखता है।
0: अरे कुछ मत पूछो दोस्त, क्यों? फौजी आदमी भी इसके सामने कोई चीज नहीं है, अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा और ईमानदार समझता है।
1: क्यों, कोई झगड़ा तकरार?
0: मेरे साथ तो अभी कुछ नहीं हुआ,
1: तो?
0: सुनी सुनाई कह रहा हूँ, तुम जरा बात करके देखो पता चल जाएगा।
1: अच्छा ऐसी बात है।
2: अजी पोस्टमैन साहब जरा इधर तशरीफ तो लाइए।
3: कहिए क्या बात है। कैसे बुलाया आपने?
1: अजी बैठिए भी।
2: अरे मारी भाग कर एक कप चाय तो लाना।
3: क्षमा कीजिए श्रीमान, इस समय बैठने की फुर्सत नहीं, डाक बहुत है हाथ में।
1: वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अच्छा कोई मनी ऑर्डर है?
3: है क्यों नहीं,
1: तू लाइए दे दीजिए ना, मेरा नाम सिंगारम है।
3: आपके नाम का तो कोई मनी ऑर्डर नहीं है।
1: अजी किसी के भी नाम का हो क्या फर्क पड़ता है, जिसके नाम मनी ऑर्डर है उसी के नाम के यहाँ मैं दस्तखत कर देता हूँ। आपको तो मनी ऑर्डर पाने वाले के सिर्फ दस्तखत ही चाहिए ना, और कुछ तो नहीं। लाइए लाइए मनी ऑर्डर।
3: वाह ऐसे कैसे दे सकता हूँ मैं, ये तो जालसाजी हुई जो कानूनन जुर्म है।
1: अरे आप भी कानून का क्या पचड़ा ले बैठे। मनी ऑर्डर दरअसल है किसके नाम?
3: शिवकामी अम्माल के नाम। उन्हीं को देना है मुझे, मैं चलता हूँ।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है।
1: पोस्टमैन, इस गांव में नए आए मालूम होते हो, उस पर ये छोटी उम्र और जवानी का उबाल, इसीलिए अक्खड़ बने फिरते हो। लेकिन शायद तुम सिंगारम को नहीं जानते, जिस शिव कामी के नाम ये मनी ऑर्डर है वो मेरी बड़ी बहन है, समझे? उसका मनी ऑर्डर फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना
3: वरना क्या होगा।
0: अरे भाई क्यों उलझते हो इनसे, ये चाहे तो इस गांव से तुम्हारा नामो निशान मिटा दें, इसलिए भाई बेकार झगड़ा मोल ना लो इनसे, अपनी बहन के नाम के दस्तखत ये खुद किए देते हैं, तुम चुपचाप मनी ऑर्डर के रुपए इन्हें दे दो।
1: लाओ रुपए, लाओ लाओ लाओ।
3: सिंगारम ये ना भूलो कि बलि से भी बड़ा बलि वो है जिसे भगवान कहते हैं। तुम्हारी धमकियों से मैं तो डरने वाला नहीं, तुम मेरी इज्जत रखोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत रखूंगा, अगर तुम मेरी इज्जत उतारना चाहोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा।
0: अरे बाप रे, ये पोस्टमैन छोकरा तो तूफान की तरह गरजता हुआ चला गया।
1: अरे जाने दे।

0: जी मैं पोस्टमैन। क्या शिवकामी अम्मा आप ही हैं? क्या बात है माई, आप इस तरह चकित क्यों रह गई? आप मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हैं?
1: क्या कहा तुमने? तुम सचमुच पोस्टमैन ही हो ना? तुम जरा इधर मेरे पास आकर बैठो। क्षण भर में ही मेरी क्या हालत हो गई। एकाएक मुझे ऐसा लगा मानो मेरा बेटा कुमार स्वामी ही मेरे सामने आ गया हो।
0: कुमार स्वामी नहीं, आपके नाम ये मनी ऑर्डर भेजा है माई।
1: अच्छा,
0: 3000 रुपए भेजे हैं। यहाँ इस जगह दस्तखत कर दीजिए, और यहाँ भी। ठीक, ये लीजिए रुपए, 100-100 रुपए के 30 नोट हैं, अच्छी तरह गिन लीजिए। और ये रहा कूपन।
1: बेटा मुझे सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, पढ़ना नहीं आता। जरा पढ़कर सुना दो कूपन पर मेरे बेटे ने क्या लिखा है। तुम शायद जानते नहीं मेरा बेटा फौज में है। हाँ तो पढ़ो।
0: हाँ, लिखा है, प्रिय माता जी प्रणाम।
1: अरे तुम्हारी आवाज भी कुमार स्वामी जैसी ही है। तुम्हारे अगर मुझे हो और गाल पर मस्सा हो तो तुम में और मेरे कुमार स्वामी में कोई फर्क नहीं होगा। ओह भगवान की कैसी लीला है। अच्छा आगे पढ़ो बेटा।
0: मैं यहाँ सकुशल हूँ, मेरा विश्वास है कि आप और नीला भी सकुशल होंगी। मुझे घर का खाना बार बार याद आता है, आपके हाथ से बना खाना खाने की बहुत इच्छा होती है। जब छुट्टी मिलेगी तब जरूर आऊंगा। आपका बेटा कुमार स्वामी।
1: बेचारा अब फौज में जाकर मेरे बनाए खाने के लिए तरस रहा है। किसने कहा था फौज में भर्ती होने को?
0: ऐसा ना कहिए माँ जी, निकम्मों की तरह गांव में आवारागर्दी करने की अपेक्षा सीमा रक्षा के मोर्चे पर जाकर देश सेवा करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो कहूँगा आपका बेटा धन्य है।
1: क्यों बेटा, मेरे कुमार स्वामी के लिए वहाँ कोई खतरा तो नहीं?
0: देखिए माँ जी, खतरा कहाँ नहीं है। अगर हर कोई आदमी अपनी जान की चिंता करने लगे तो देश की चिंता कौन करेगा, सीमा रक्षा की चिंता कौन करेगा? आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो देश के शुभ काम में लगा हुआ है।
1: बेटा ये कहकर तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। मुझे इस तरह धीरज बंधाने वाले, तसल्ली देने वाले तुम इस गांव में पहले आदमी हो। इस गांव में मेरा अपना कोई नहीं, दूर के रिश्ते का एक भाई है जो आवारा और बदमाश है।
0: सिंगारम, अभी आते आते उसे देखा था
1: वो हम।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: पैसे रहने दीजिए माँ जी, मेरे लिए तो आपका प्यार ही बहुत है। आपकी कृपा से सरकार जो वेतन देती है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। और फिर मनी ऑर्डर देकर बदले में किसी से कुछ पैसा लेना डाक आने के कानून के खिलाफ है।
3: क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? शादी हो गई है?
2: मैं तो एक तरह से अनाथ हूँ माँ जी, और शादी की क्या जल्दी है अभी। अच्छा तो चलता हूँ माँ जी, बहुत सी डाक बांटनी है अभी।
3: जब कभी समय मिले तो इधर आ जाया करो, और नहीं तो मेरे मन को कुछ तसल्ली ही मिलती रहेगी। हाँ आओगे ना बेटा?
2: आऊंगा माँ जी।

0: जरा देखकर चलना चाहिए। अच्छा हुआ कि आपका घड़ा नीचे नहीं गिरा।
1: माफ कीजिए, मैं अपने ध्यान में चली जा रही थी कि कोई चिट्ठी है।
0: आपके लिए तो नहीं है।
1: मेरा मतलब है शिवकामी अम्मा के नाम।

0: आपको चिट्ठी है?
1: तो क्या आपको उस बुढ़िया की चिंता है?
0: वो मेरी नानी लगती है ना?
1: आपकी नानी? ओह समझा, आपका नाम।
0: मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे?
1: जी जी, वो जब कभी आपकी चिट्ठी आएगी तो।
0: मेरा नाम नीला है।
1: इस गांव में इतनी सुंदर लड़की, इसका नाम नीला नहीं चांदनी होना चाहिए था। अरे ये मैं क्या सोचने लगा, नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं इस गांव का डाकिया हूँ, डाकिया।

0: कहो जी जी, कैसा हाल चाल है?
1: कौन? शिंगारम? अरे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे घर आकर बीड़ी न पिया कर। ओह, मेरा तो दम घुट रहा है।
0: मेरी हैसियत तो बीड़ी ही पीने की है जी जी। तुम्हारा बेटा सेना में खूब कमाता है। वो नीला कहाँ गई है?
1: उसकी चिंता तू क्यों करता है? तुझे अपने काम
0: से। अरे अरे अरे, नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है। इतनी लापरवाही ठीक नहीं है जी जी। जवान लड़की है और अच्छा, कल तुम्हें कोई मनी ऑर्डर मिला था क्या?
1: क्या तुझे भी मालूम हो गया?
0: कैसी बातें कर रही हो जी जी? भले ही प्राण यमराज की जानकारी के बिना निकल जाए, लेकिन इस गांव में कोई भी काम मेरी जानकारी के बिना नहीं हो सकता है। नहीं जानती क्या?
1: मेरे लिए तो तू यमराज ही है। अच्छा तब चलता फिरता नजर आ।
0: इस तरह क्यों दुत्कारती हो जी जी? बड़े जोर की प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो ना।
1: अच्छा अच्छा, ये ले पानी। और अब
0: जी जी, इस उम्र में तुम खुद क्यों काम करती हो? नीला कहाँ गई? मैंने पानी ये सोचकर मांगा था कि तुम नीला को ही पानी लाने के लिए कहोगे।
1: मुझे भी मालूम था कि तूने पानी क्यों मांगा। मैंने नीला से कह रखा है कि वो तेरे सामने कभी ना आए।
0: तुम तो नीला को इस तरह से सहेज संभाल कर रखती हो मानो तुम्हारा बेटा कल परसों आकर उससे शादी कर लेगा और वो तुम्हारी बहू बन जाएगी। अरे वो कुमार स्वामी नीला से शादी करेगा या मोर्चे पर दुश्मन की गोली से मरेगा? कौन जाने।
1: शिंगारम, सवेरे सवेरे आकर तू क्यों इस तरह मेरा दिल दुखाता है? तुम्हारी ये ऊल जलूल बातें मुझे अच्छी नहीं लगती।
0: मैं क्या करूं जी जी, मेरी जबान जरा लंबी है, वो हमेशा कुछ न कुछ बोलती ही रहती है। मैं तो यही कहना चाहता था कि तुम अगर नीला की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं उसे रानी की तरह रखूंगा।
1: अरे मैं अंधी नहीं जो तोता पालकर बंदर के हाथ में दे दूं।
0: अच्छा, खैर कोई बात नहीं, ये बात तो फिर कभी होती रहेगी। पहले ये बताओ, लड़के ने कितने रुपए भेजे हैं?
1: कितने भी भेजे हो, तुझे क्या मतलब?
0: मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ। सब रुपए अभी तो खर्च करोगी नहीं, अगर मुझे भी कुछ रुपए दे दो तो मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा। यकीन मानो, मुझे रुपए देना बैंक में जमा करने के बराबर है।
1: नहीं, अंधे कुएं में डालने के बराबर है। अब कान खोल के सुन ले, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी। चला जाए यहाँ से।
0: मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझकर आदर दे रहा हूँ।
1: तू मेरा कुछ नहीं लगता, अब जाता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मैं तो

बदमाश शिंकारम खड़ा है, अब मैं क्या करूं? नानी ने इसके सामने ना पढ़ने को कहा था। अरे मुझे देखकर ये इधर ही आ रहा है, यहाँ तो एकदम सुनसान है, अब क्या करो? सिर पर पानी का घड़ा और अच्छा पेड़ों की झुरमुट की आड़ लेकर

0: अरे नीला, क्यों तुम हिरनी की तरह भाग रही हो? रुको, मैं कहता हूं रुको।
1: क्या नल से पानी लाई हो? अरे घबराती क्यों हो? मैं भाग थोड़े ही हूं जो तुम्हें खा जाऊंगा। चलो हंसकर दो बातें करो। और
2: मुझे घर जाना है, नानी अकेली है।
1: मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ तुम्हारे साथ।
2: मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे रास्ता मालूम है।
1: मैंने कब कहा कि तुम्हें रास्ता मालूम नहीं है? देखो नीला, जमाना बहुत बुरा है। तुम जवान लड़की हो, गांव में बदमाशों की कमी नहीं है। रास्ते में कहीं भी किसी ने छेड़छाड़ की तो
2: और कोई क्या करेगा?
1: ये बात है, बहुत ही बढ़ चढ़ कर बातें करने लगी हो। कल ही तुम्हारी नानी के पास पहुंचूंगा और डरा धमका कर जैसे भी हो शादी की बात पक्की करके रहूंगा। देखना, तुम मुझसे ही शादी करोगी।
2: जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये कभी नहीं होने का।
1: अच्छा?
2: मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ज्यादा किया तो मेरी लाश को ही शायद मंगलसूत्र बांध सकोगे।
1: अच्छा, ये बात है।
3: जहाँ कोई नहीं बताएगा तुझे, तीन भाकड़ एक अपने लड़की से छेड़छाड़ करता है, तेरी ये हिम्मत? बदमाश कमीना कहीं का, तू जैसे लफंगों की वजह से सारी पुरुष जाति की बदनामी होती है।
1: अरे बकवास बंद करो डाके, गांव में नया नया आया है और मुझ पर तो हाथ उठाता है। अच्छा देख लूंगा तुझे।
3: अरे अभी देख लेना अच्छी तरह से, अभी जो तेरी धुनाई की है अगर वो काफी नहीं तो लगाऊ तो चलो कर रख दूंगा। क्या समझ रखा है तुमने?
1: अगर मैं अपने दल बल के साथ होता तो जरूर समझा देता तुझे। तुम जैसे कल के छोकरे से क्या भिड़ो, तुझसे उलझना मेरे लिए बेइज्जती की बात है। अच्छा अभी तो जाता हूँ, लेकिन एक दिन तुझसे बदला जरूर लेकर आऊंगा।
2: मैं किस मुंह से आपको धन्यवाद दूं? आपने ठीक समय पर आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो ना जाने वो बदमाश क्या कर बैठता।
4: भगवान सबका रक्षक है। आओ नीला, तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में किसी बदमाश की इतनी जरूरत हो सकती है।
2: जी, इस गांव के सब लोग अच्छे हैं, ना कोई किसी से झगड़ा करता है ना लड़ाई। सिर्फ यही एक शिंगारम ही ऐसा आदमी है जो सबको डराता धमकाता फिरता है। इसका अपना कोई आगे पीछे है नहीं, सो
4: तुम्हारी नानी इसकी बहन जो लगती है।
2: अरे नहीं, मेरी नानी का ये बहुत दूर के रिश्ते का भाई लगता है, इसी नाते ही हमारे घर आता जाता है। पहले ये मेरी माँ से शादी करना चाहता था।
4: हाँ, हमारे यहाँ मामा भांजी की शादी जायज मानी जाती है।
2: लेकिन मामा धम का तो हो, मेरी नानी ने शिंगारम की बात नहीं मानी और अपनी बेटी यानी कि मेरी माँ की शादी दूसरी जगह कर दी। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी।
4: ओह, तो तुम्हारी माँ नहीं है?
2: आप तो बाप भी नहीं है, लेकिन नानी ने मुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वो मुझसे माँ की तरह प्यार करती हैं। अब वो बदमाश शिंगारम मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है।
4: तुम्हारा अपना इरादा क्या है?
2: मैं किसी भी हालत में इससे शादी नहीं करूंगी।
4: हाँ हाँ, रिवाज के मुताबिक तुम तो अपने फौजी मामा कुमार स्वामी से ही शादी करोगी।
2: अरे अरे, बातों बातों में घर तक पहुँच गए, अब कोई डर नहीं। मैं जाती हूँ, समय पर आकर आपने मुझे इस बदमाश से बचा लिया, इसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी।
4: अरे रहने भी दो, ऐसा कौन सा बड़ा उपकार किया है मैंने? चली गई, कितने सुंदर है ये, और सुशील भी, बोली ऐसी मानो कानों में मिश्री घोल दी हो। अगर कहीं ये

0: चाची, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? ऐसा सोचना पागलपन है, पाप है। ये कैसे संभव हो सकता है? जब उसका मंगेतर है तब पता नहीं मुझे क्या हो गया है। जब से मैंने नीला को देखा है तब से मेरा मन उसी की ओर खींचता जा रहा है। लेकिन मैं तो एक डाकिया ठहरा, घर घर डाक बांटने वाला। मेरे मन में किसी लड़के के बारे में ऐसा ख्याल आना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। घर के अंदर जाऊं या कोई अर्ज नहीं। नीला को मैंने अभी अभी कहीं बाहर जाते देखा है। मैं तो शिवकामी अम्माल से मिलना चाहता हूँ, अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। उससे बातें करता हूँ तो लगता है जैसे अपनी माँ के पास बैठा हूँ। मैं अनाथ कब से अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रहा था। माँ जी।
1: कौन? कंद स्वामी, आओ बेटा, बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनाई दी है।
2: माँ जी, आज आपके लिए कोई चिट्ठी नहीं है।
1: अरे अगर चिट्ठी नहीं है तो तुम अपनी माँ से मिलने ही नहीं आओगे? बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना।
0: अरे ये खांसी, आप लेटी हुई क्यों है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
1: कल रात से सिर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, साथ ही कुछ खांसी बुखार भी है।
0: मैं आपका सिर दबाता हूँ। नहीं नहीं, पहले मैं जाकर डॉक्टर को बुलाता हूँ।
1: डॉक्टर सवेरे आया था, कुछ गोलियाँ दे गया था, बाकी दवाई
0: मैं लाता हूँ। दवाई?
1: नहीं नहीं, नीला नुस्खा लेकर डॉक्टर की दुकान पर गई है। तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए? मरने से पहले मैं तुम्हें।
0: ये आप क्या कह रही हैं माँ जी, मामूली खांसी बुखार है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी।
1: बेटा तुम्हारी भावना को मैं समझती हूँ, तुम्हें मैंने अपना दूसरा बेटा मान लिया है।
0: माँ, आप जैसी माँ को पाने के लिए कई जन्म तक पुण्य कर्म करने चाहिए। आज मैं कितना खुश हूँ, अब मैं अनाथ नहीं हूँ।
1: अरे खुश तो मैं हूँ जिसके एक नहीं दो बेटे हैं। जरा जरा मेरे पास आओ।
0: लो माँ।
3: के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे, पोस्टमैन। इस नाटक का पहला भाग हमने आपको सुनवाया। हिंदी अनुवादक थे पीएस कृष्णस्वामी और निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। आकाशवाणी उदयपुर की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साइंस लाइट साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: और ये मराठी लावणी
1: पाडाला पिकलाय आंबा आला बाय पाडाला पिकलाय आम हो नीट बघ पाडाला पिकलाय आंबा
0: और ये हिंदी गाना
1: हो पंख होते तोड़ आती रे।
0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम

0: होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हाँ, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा। हमारी मेहमान कौन है तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार मेरे सब विविध भारती के दर्शकों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और आज यहाँ पे आने का मुझे मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमारे सुनने वालों से जुड़ जाऊंगी।
0: जी,
1: हालांकि 25 साल प्रोग्राम करने के बाद बहुत सारे लोग, मतलब जो आके बोलते हैं आपका शो देखा, मुक्त इतने साल पहले आपका शो देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ।
1: और उससे ज्यादा खुशी आज यहाँ आने से मुझे मिली है कि और दर्शकों तक मैं पहुंच जाऊंगी और गाने भी पेश कर पाऊंगी।
0: क्या बात है,
1: बहुत बहुत शुक्रिया
0: प्रमिला जी। सुनहरी यादें की शुरुआत जब हुई थी, असल में आपके करियर की शुरुआत उससे भी पहले हुई थी।
1: जी,
0: तो हम तब से बात शुरू करें
1: जी
0: कि वो पहला कौन सा मौका था कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने का मौका मिला।
1: फिल्म इंडस्ट्री के गाने का, तब के बहुत ही मशहूर संगीतकार वसंत देसाई जी थे, सी रामचंद्र थे
0: जी,
1: उनके पास मैंने मराठी फिल्मों में गाने गाए।
0: हाँ।
1: और फिर थोड़ा सा मेरा नेचर ऐसा था कि किसी के पास जाए और मुझे आप काम दे दे या कोई मुझे गाना दे दे, ये मेरा नेचर नहीं था।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: तो मेरे हस्बैंड को भी वो मालूम था कि ये ऐसी नहीं बनने वाली। तो एक बहुत अच्छी यादगार है कि मराठी ड्रामा जो हमारे हैं उसमें मुझे काम करने के लिए पूछा गया था। वो प्रभाकर पणशीकर जी हैं, राजा राम शिंदे जी थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं करूं क्या, तो बोले तेरा मन है तो कर, लेकिन तुम अपना कुछ शुरू करो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वो हिसाब से फिर सोचते सोचते भी सुनहरी यादें, फिर नाम क्या रखे।
0: हाँ।
1: तो एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, अभी वो दिल्ली में, उनका नाम नहीं मुझे याद, अशोक जैन करके।
0: जी, जी, जी।
1: तो उन्होंने ये नाम का सुझाव दिया कि आप ज्यादातर पुराने गाने लोग पसंद करते हैं, तो आप सुनहरी यादें नाम रखिए।
0: हाँ।
1: बहुत यूनिक और थोड़ा अलग सा है, प्रमिला नारायण ऑर्केस्ट्रा, और इससे सबसे पहले ही वो थोड़ा सा अच्छा लगता है नाम, क्योंकि पुराने गाने ज्यादा पेश करने का इरादा था उसमें।
0: वाह वाह
1: जी।
0: तो पहला शो कब हुआ था सुनहरी यादें?
1: पहला शो 1975 14 अप्रैल
0: जी,
1: जो दिन गुड़ी पाड़वा था, हमारे साल शुरू होता है गुड़ी पाड़वा के दिन।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: तो उस दिन 14 अप्रैल को मैंने पूना के बाल गंधर्व थिएटर में पहला शो किया।
0: क्या बात है
1: जी,
0: हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है।
1: मुहूर्त माना,
0: तो क्या बात,
1: हमारे 3.5 मुहूर्त बोलते हैं अच्छे जिस दिन, उनमें पाड़वा बहुत अहमियत रखता है, गुड़ी पाड़वा।
0: क्या बात है
1: जी।
0: ये सिलसिला शुरू हुआ मगर उससे पहले आप मराठी फिल्मों के लिए गा चुकी।
1: हाँ, फिल्मों के लिए गा चुकी हूँ। जैसे मैं कहना अन्ना जी के साथ घरकुल करके पिक्चर था अन्ना जी का, वो हाउस ऑफ बैम्बू मन्नादा के साथ गाना था।
0: हाँ, हाँ,
1: तो मेरे लिए तो इतना अच्छा मौका था, वो सुवर्ण संधि बोलते हैं कि मन्नादा के साथ मैं गाना गा रही हूँ। वो गाना अभी भी लोग याद करते हैं, पप्पा संगा कुणा से, वो जो गाना है मुझे देखते ही पप्पा संगा, छोटे बच्चे भी पप्पा संगा कुणा से। मुझे याद है छोटी सी किस्सा है, मैं अमेरिका गई थी
0: जी।
1: मेरी एक पोती वहां रहती है, मैं छोटी सी थी 4-5 साल की। तो मुझे देख के ऐसे हो गई, तो क्या हुआ उसको, तो बोले हमने उनको बोल दिया है कि पप्पा संगा कुणा से ये आजी ने गाना गाया है। तो वो इतनी खुश हो गई।
0: अच्छा,
1: मुझे बोली
0: अच्छा।
1: तू मेरे लिए गाओगी? तो बोले हाँ जरूर गाऊंगी। बहुत मजा आया उससे बच्चों से लेकर।
0: तो 14 अप्रैल को जो पहला शो सुनहरी यादें का हुआ
1: जी,
0: तो पहले शो के लिए आपने गीतों की जो फहरिस्त बनाई होगी, लिस्ट बनाई होगी, आपको याद है?
1: इतना सा तो नहीं, लेकिन एकदम मराठी लावणी और पुराने गीतों में वो जो तुम न जाने किस जहां में खो गए, अजीब दास्तां है ये, इस तरह के सब पुराने गाने हुआ करते थे उस वक्त।
0: बिल्कुल, तो आपने जितने शो किए हैं उसकी बातें होंगी, बहुत से कलाकारों के साथ आपने टूर्स किए हैं उनकी भी बातें होंगी, मगर साथ में आपके पसंदीदा गीतों की भी बात होगी। आप किसी गायिका से ये पूछना कि आपके पसंद का गाना कौन सा है जरा मुश्किल है, तो फिर भी पहला गाना इस कार्यक्रम के लिए आप कौन सा चुनना चाहेंगे?
1: मैं ऐसे एक नॉन फिल्मी गीत है मुझे। हाँ। वो बहुत पसंद है, वो आज जाने की जिद ना करो।
0: क्या बात,
1: आई लव दैट सॉन्ग, बहुत अच्छा।
0: अलग अलग गायिकाओं ने अलग अलग मौके पे
1: ऐसे मैं
0: है।
1: मेरे शो में एक मेडली करके एक आइटम पेश कर दी थी, अलग अलग गायिकाओं के गाने हुए उसकी झलक।
0: हाँ।
1: उसमें मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, रेशमा जी और ऐसे सब गायिकाओं के, सलमा आगा गाने, एक एक अंतरा, वो लोग बहुत पसंद करते थे उस आइटम
0: जी। तो आप एक लाइन इसकी गुनगुनाइए।

0: प्रमिला जी, अब आपके बचपन की ओर चलते हैं। बचपन कहाँ बीता?
1: बचपन बहुत मतलब जैसे मध्यम वर्ग बोलते हैं।
0: जी जी।
1: मेरे पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे, उसी स्कूल में मैं पढ़ी।
0: ये किस शहर की बात हो रही है?
1: बम्बई।
0: अच्छा, मुंबई में?
1: गिरगांव में।
0: गिरगांव
1: में हमारा रहना भी वहाँ था।
0: मुंबई
1: सब चाल थे, सब ऐसे
0: जी, जी, जी।
1: और वैसे चाल थे, लेकिन पूरा चाल एक कुटुंब जैसा था। किसी घर में कोई कुछ कार्य हो जाए, पापड़ बेलना, सब
0: मिलकर
1: आती थी, सब मिलकर काम करते थे। बहुत मजा आता था, लेकिन पूरा एक चाल कुटुंब जैसा था। और सब सब गणपति, दिवाली, सब त्योहार इतने अच्छी तरह से मनाए जाते थे कि जैसे कि लगता था हम सबका एक ही त्योहार है और सब लोग मजे कर रहे हैं। बहुत ही मजा आता था। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, मेरे पिताजी ने बाहर होटल में चार आने की चाय कभी नहीं पी जाके।
0: अच्छा।
1: लेकिन घर में दूध सब सब इतना खाना का माहौल, इतना अच्छा सकस खाना मिलता था घर में। बाहर खाने का उस वक्त इतना सा बहुत शौक नहीं था लोगों को।
0: जी जी।
1: जो घर में बनता था वो ही अच्छा बनता था।
0: हाँ।
1: तो बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं होती थी, इसलिए कि स्कूल के दिन से मुझे गाने का जो शौक था, मुझे
0: जी जी।
1: गाने तो पसंद थी मेरी। तो हमारे स्कूल में नाश्ता नवरंग करके बहुत ही

0: बड़े अच्छे गुरु के हिसाब से बहुत अच्छे थे।
1: अच्छा,
0: तो उनके क्लासेस चलते थे मेरे स्कूल में।
1: अच्छा,
0: तो इसीलिए जाना हुआ।
1: हाँ,
0: कहने का मतलब यह है कि हम गिरगांव में रहते थे और गिरगांव से दादर भी नहीं भेजते थे अगर दादर में क्लास होता तो।
1: अच्छा, अच्छा।
0: तो बहुत ही स्कूल में था और स्कूल खत्म करके अपना क्लास खत्म करके घर आ जाए, और घर का स्कूल 5 मिनट का रास्ता था चलने का।
1: अच्छा।
0: तो इसलिए वो सब इतना सुविधाएं थी, तो उसकी वजह से वो हो गया। पहली बार मैं मुंबई से बाहर गई, मैंने SNDT कॉलेज में गई, क्योंकि वहां म्यूजिक एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स था।
1: जी, जी।
0: तो SNDT कॉलेज में गई तो यूथ फेस्टिवल हुआ करता था दिल्ली में। तो यूथ फेस्टिवल में हमारा एक नाटक करके
1: संगीत शारदा।
0: जी, जी। तो स्कूल के दिनों में मैंने उसमें कोदंड की भूमिका निभाई थी।
1: अच्छा।
0: मेरी आवाज जरा भारी थी, जाड़ी थी, तो पुरुष के गायक के लायक थी।
1: अच्छा।
0: और हाइट भी अच्छी थी।
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: मैं कोदंड और दूसरी शारदा, फिर मैं कोदंड का रोल किया है, कृष्ण का रोल किया है,
1: जी, जी।
0: नारद का रोल किया है स्कूल में। तो स्कूल
1: के ये महिला विश्वविद्यालय,
0: स्कूल की बात कर रही हूँ, महिला विश्वविद्यालय में हमने वो शारदा नाटक, शारदा का भी एक हल्दी कुंकू जो होता है उसका सीन था।
1: अच्छा।
0: तो वो हमने उधर किया यूथ फेस्टिवल में। तो पहले बार मैं बम्बई छोड़ के अकेली दिल्ली गई यूथ फेस्टिवल के।
1: अच्छा,
0: बाकी फ्रेंड्स वगैरह थे साथ, बहुत मजा आया दिल्ली में। और पहली बार गए थे तो ऐसा क्या देखो और क्या ले, ऐसा हुआ था।
1: क्या बात है,
0: बहुत मजा आया।
1: उस संगीत शारदा से कोई नाट्य पद जिसकी एक लाइन आप सुना
0: जरूर सके? जरूर।

0: वाह वाह क्या बात है। बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि संगीत नाटक जो हुआ करता था मराठी में महाराष्ट्र के मंचों पर, उसका एक स्वर्णिम युग था और तब स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, भूमिका नहीं करती थी, पुरुष किया करते थे, जिसके लिए नारायण राजहंस यानी बाल गंधर्व जाने जाते हैं और बहुत से केशवराव भोसले हुए, बहुत से ऐसे कलाकार प्रसिद्ध हुए अपनी उन स्त्री भूमिकाओं के लिए।
1: यहाँ उल्टे मामला हुआ,
0: और मामला उल्टा हुआ, आपने पुरुष की भूमिका इस नाटक में निभाई थी। जीवन में वो कौन सा अवसर था, वो कौन सा समय था जब पहली बार संगीत उद्योग से या फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ एक अवसर आपकी झोली में ऊपर वाले ने डाल दिया?
1: एक तो एक यूथ फेस्टिवल का ये था, हमारे जब मैंने जो पेश किया उसको बख्शीश भी मिला, प्राइज भी मिला। और बाद में मैं एक फिल्म डिवीजन की छोटी सी वुमेन्स एजुकेशन करके फिल्म बनाई थी उन्होंने, तो उसमें भी मैंने रोल किया था।
0: अच्छा।
1: क्योंकि एक वहां के लोग, दो तीन लोग हमारे स्कूल में आए थे शाला में कि किसको मतलब चुना जाए इस रोल के लिए, तो हम 10-12 लड़कियां खड़ी थी तो उन्होंने मुझे चुना और वुमेन्स एजुकेशन करके एक शॉर्ट फिल्म थी। पहले जमाने में पिक्चर से पहले ये सब फिल्म डिवीजन वाली छोटी छोटी फिल्में दिखाते थे, अभी तो वो मामला बंद हो गया, शायद फिल्म डिवीजन भी चालू है कहीं पता नहीं। तो वो पहला मौका मिलना चाहिए ऐसा कहना चाहिए। फिर बाद में कॉलेज में गई मैं, तो कॉलेज में बीए किया मैंने म्यूजिक लेके, तो म्यूजिक एक सब्जेक्ट था, बाकी और भी सब्जेक्ट थे उसमें बीए तक। और बीए का वो एग्जाम हुआ और इंटर में जब थी मैंने 16 साल की, तब शादी हो गए।
0: अच्छा।
1: 42 साल का मेरा जन्म है और 58 को शादी हो गई, 16 साल की। तो 58 को शादी हो गई, फिर मैं ऐसे घर में, तो बीए हो गया, मैं बैठ गई घर में, मतलब अभी 20 साल की मैं हो गई तो पहली बेटी हो गई, तो 1962 में
0: जी
1: उसका बेटी का जन्म हुआ। फिर बाद में इन्होंने ही मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने, कि अभी तुम्हारा गाना इतना अच्छा है, तुम कर रही हो तो क्यों रोकती हो, एमए करो। एमए में इंटर म्यूजिक था एसएनडीटी में, तो उनकी बदौलत मैं एमए करने के लिए गई। और घर में भी ऐसा सुविधा थी कि मेरी सासू जी थी और बहुत अच्छी तरह से वो, मतलब बेटी घर में हो तो थोड़ा सा मतलब झिझक होती है कि जाओ कि नहीं, तो उस तरफ से कोई मुझे चिंता नहीं थी, कि वो बहुत अच्छी तरह मुझसे भी ज्यादा अच्छा संभालती थी।

0: बच्चों को।
1: हाँ, हाँ,
0: तो 62 में मैंने एमए किया फिर।
1: वाह।
0: और फिर एमए किया और फिर 68 में पहला मौका आया तलत साहब के साथ।
1: अच्छा।
0: हाँ, तलत साहब के साथ एक नंदी रुगल करके प्रमोटर थे, तो मेरे हस्बैंड लायंस क्लब के मेंबर थे। तो वहां पे मैं इधर उधर एक दो गाने चली, प्रमिला जाप गाने गाइए, कुछ फंक्शन हाँ, हुआ लायंस क्लब का। तो नंदी दुगल जी ने सुना मुझे और मुझे आए, उन्होंने पूछे कि आप चलेगी क्या? हमने चलेगी
1: दौड़ेगी
0: जाऊंगी, कूदते जाऊंगी। तो तलत साहब के साथ ये ऐसा अच्छा मौका मिला। 3 महीने का वो टूर था हमारा।
1: क्या बात।
0: और 2 बेटियां, एक 4 साल की, एक 6 साल की, लेकिन सासू जी थी तो वो कोई चिंता नहीं थी घर की। मैं बिंदास चली गई और बहुत कुछ सीखने को मिला तलत साहब से। और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे जो प्लेबैक बड़े बड़े लीजेंड्स है,
1: जी जी,
0: उनका वहां इतना नाम था वेस्ट इंडीज में, हमको मतलब देखा हुआ जाके कि कोई गाने ऐसे थे तो तलत साहब हमको ये गाना मेरा है ऐसा पूछते, इतना उनको भी याद नहीं थे उनके अच्छा। गाने ऐसे ऐसे गाने को लोग फरमाइश देते थे। बहुत मजा आया टूर में, उनसे वो सीखने को मिला।
1: तलत साहब को आपने याद किया तो कोई गाना उनका इस वक्त हम सुनाए अपने श्रोताओं को। तलत साहब ने मराठी में भी गाने गाए हैं।
0: मराठी में गाने थे
1: जी। हाँ। जी,

0: बहुत ही सुंदर सा ये गीत सुजाता फिल्म से अपने श्रोताओं को हमने सुनाया। प्रमिला जी, फिर एक बार सुनहरी यादें के बारे में हम बात करते हैं कि इस शो को लेकर के आप अलग अलग देशों में घूमी हैं।
1: घूमी
0: जी, तो पहला टूर जो था वो किस देश का था?
1: नहीं, सबसे
0: पहले वेस्ट इंडीज के बारे में बताया।
1: ज्यादा तो
0: वेस्ट इंडीज आप तलत साहब के साथ
1: गए। फिर

0: के साथ
1: कुछ इस तरह साहब के साथ गए
0: हाँ।
1: फिर उसी उसी को नंदी दुगल जी थे
0: जी।
1: प्रमोटर अगली बार
0: हाँ हाँ।
1: तो उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ
0: हाँ हाँ।
1: जाने के लिए मैंने कहा बाबा भाई मेरे जीवन में इतना अच्छा मौका और किसको नहीं मिलेगा
0: जी जी।
1: तो किशोर दादा के साथ ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया हमने टूर किया
0: अच्छा
1: ईस्ट अफ्रीका का
0: हाँ हाँ।
1: उनके तो क्या है किस्से में सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी नाम भी नहीं था ना तो प्लेबैक गाया हुआ था फिल्मों के लिए तो उन्होंने पहले शर्त डाल के मैं दो गाना डुएट नहीं गाऊंगा
0: हाँ।
1: मैंने कहा बाबा दादा आप बड़े हैं
0: हाँ।
1: और आपको कोई बोलेगा नहीं मेरे साथ डुएट गाए तो मैं अपने गाने गा के मतलब शो की शुरुआत में पहली एंट्री मेरी होती थी
0: जी।
1: तो उस वक्त ये गाना बहुत मशहूर था दम मारो दम तो दम मारो दम गाना उषा उत्तम जी की रेंज और आशा भाई की रेंज
0: हाँ।
1: वो दोनों में मैं संभालती थी कैसे भी करके
0: अच्छा।
1: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो गाना तो इनवेरिएबली हर प्रोग्राम में वो गाना वंस मोर होता था
0: अच्छा
1: दम मारो दम
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तो किशोर कुमार जी मेरे बाद उनकी एंट्री थी
0: जी जी
1: तो स्टेज पे आए थे दम मारो दम ऐसा करते थे
0: अच्छा
1: तो वो कहा मैं कहा फिर भी मुझे मतलब और बहुत बहुत अस्वस्थ रहते थे उनको जो मैंने नोटिस
0: हाँ
1: किया
0: हाँ
1: उनको
0: जी जी
1: इतने बड़े बहुत बहुत ही बड़े सर सब गायक कलाकार लेजेंड्स है लेकिन शो शुरू होने से पहले जो स्टेज के बाजू में जगह रहती वहां शेर कैसा है इधर उधर इधर ऐसा घूमता है बहुत अस्वस्थ रहते थे
0: जी जी
1: और उनका अब्दुल था मैन फ्राइडे वो अब्दुल मेरा टॉवल का है अब्दुल मेरा ये का है अब्दुल मेरा और एक बार स्टेज पे गए
0: हाँ
1: छुट गए फिर मेरी ये नसीब में इतना अच्छा है थे कहा कि आपने तीन चार गाने गा के ये
0: हाँ
1: लोगों को सामने से सुनते बैठू
0: हाँ
1: बहुत ही भाग्य था
0: क्या
1: मेरा
0: बात
1: इस बारे
0: है।
1: रफी साहब को
0: किशोरदा ने फिर मंच पर कोई ड्यूएट आपके साथ
1: डुएट नहीं गाया
0: नहीं गाया। अगर किशोरदा को याद करने के लिए कोई गीत हम
1: जरूर
0: सुने तो कौन सा होगा वो?

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: वो दूसरे के गाए हुए जो पॉपुलर गीत है वही गाती है।
3: अच्छा।
2: हाँ, मतलब अपना कुछ नहीं है उनका, शायद रोक होगा मुझे पता नहीं। लेकिन फिर उसमें मैं किसी की नकल नहीं कभी करती थी। हाँ। लता जी, आशा जी, गीता दत्त, मैं अपने ढंग में। फिर अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं एक पिछले 4 साल से
3: जी।
2: लोगों ने कहा कि अब तुम खाली बैठे बैठे क्या कर रही हो, इतने सालों से शोध बंद के, इतने साल हुए कि कुछ करो, कुछ लिखो, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस अच्छा। कितने होंगे जो 25 साल के टूर किए या प्रोग्राम किए। तो मुझे उससे ये मिल गया कि सूचना कि कुछ तो करना चाहिए अभी बैठ के नहीं काम। तो मैंने अपना ये लिखना शुरू किया, एक छोटा छोटा एक्सपीरियंस
3: अच्छा।
2: जो मुझे बहुत सारे दरमियान आए थे।
3: हा, हा, हा।
2: तो वो शुरू किए, बाद में वो किसी ने बोला वो दिख रही हो तो एक गाना भी गाओ ना साथ में।
3: अच्छा।
2: मेरी सब सहेलियां, मेरे सब, तो सिर्फ हारमोनियम के साथ मैं गाने गा के भेजती हूँ। रोज सुबह मेरा ये काम होता
3: क्या
2: है,
3: बात है।
2: कुछ लिखा, कभी कभी नए लोग भी जुड़ जाते हैं
3: सोशल मीडिया,
2: तो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे मैं सबको शेयर करती
3: हूँ। क्या बात है।
2: हाँ, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है इसके जरिए कि कोई भी गाना हो
3: हाँ।
2: वो तुम तुम्हारा करके गाती हो।
3: हाँ।
2: वो प्रमिला दादा का गाना लगता है।
3: अच्छा।
2: क्योंकि लता बाई जो रेंज में गाती है मेरी आवाज नहीं जाती, आशा बाई जो रेंज में, मतलब उनके सबके रेंज में, अभी उम्र के हिसाब से भी, पहले मैं उनके रिकॉर्ड के स्केल में गाती थी पहले गाने, अभी नई आवाज जाती है, काली एक, काली पांच, काली एक तक जाती है। तो मैं अपने हिसाब से वो गाना गाती हूँ ना, थोड़ा सा मैं अपनी वैरायटी करती हूँ जो मुझे ज्ञान मिला है क्लासिकल म्यूजिक का। तो इसलिए लोगों ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि तुम जो गाना गाती हो वो तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि मेरे स्टाइल में वो मैं गाती हूँ। ये मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है और वो उसका मेरा उत्साह और बड़ा। करीब करीब अद्भुत मैंने 700 गाने रिकॉर्ड करके हारमोनियम पे से
3: क्या बात है
2: भेजे। अच्छा। कभी कभी अगर फास्ट गाना हो तो तबला मशीन साथ में लेके उसके जी, साथ गाए, लेकिन बहुत सारे गाने मैंने ऐसे ही गाए, बजाता है मुझे भी अच्छा लगता है।
3: तो इसमें आपने किसी नए सिंगर का गाना गाया हो ऐसा भी हुआ?
2: नए में मुझे नहीं याद आता है। अच्छा, अलका याग्निक का एक गाना गाया शायद, अलका हाँ, याग्निक का।
3: अच्छा।
2: मोह मोह के धागे,
3: मोह मोह के धागे दम लगा कर हैशा, इस
2: दम लगा के हैशा उसका
3: ये, लेकिन आपने ट्राई किया है, आप पे गाया है
2: हाँ, मोह मोह के
3: तो और इसकी एक झलक हमारे श्रोताओं को।

0: आप जब सुनहरी यादें में गीतों का चयन करती थी कि आज मंच पर ये गीत हमें प्रस्तुत करना है, तो अलग अलग गायिकाओं के गीत
1: जी,
0: उस हर गीत को अपने ढंग से अपनी तरह से गाना है, ये आपका हमेशा से रवैया रहा है
1: क्या? नकल नहीं, किसी
0: नकल किसी की नहीं, यानी मिमिक्री नहीं,
1: मिमिक्री नहीं।
0: अच्छा,
1: अपनी गीता दत्त के गाने बहुत मुझे पसंद।
0: लेकिन आशा जी का गाना है तो उसको आशा जी के अंदाज, आपको अपने अंदाज में भी गाना
1: है? तो अंदाज लहजा थोड़ा आता ही था क्योंकि ओरिजिनल उन्होंने गाया हुआ है, मतलब शब्दोच्चार या कोई हरकत या कोई मुर्की या उनकी तरह से, तो वो आता ही था अपने आप से,
0: अपने आप
1: नॉट नकल करने का हिसाब से नहीं आता था।
0: जी जी,
1: क्योंकि इसीलिए मैंने बोला कि अपनी आवाज नहीं जा रही है तो क्यों ये हट, क्यों की लता जी के रेंज में ही मैं
0: गाऊं,
1: ऊपर जाके फिर वो आवाज डबल हो जाएगी। उसके बदले अपने जिसमें तुम कंफर्टेबल हो
0: उसी रेंज में
1: गाओ ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, ये नए गाने सीखने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है।
1: ऐसा लगता है कि मैं अनुभव से ये कह रही हूँ।
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अनुभव,
1: क्योंकि आजकल वो जो कैरियों के जो प्रकार आया है ना,
0: जी जी,
1: आई हेट दैट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी गाता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ सीखो, अच्छी तरह से तालीम पाओ, और इतना आसान नहीं है। नहीं तो एक ही लता मंगेशकर, एक ही आशा भोसले नहीं होती थी, बहुत सारे निकलते थे गली चौगड़े में।
0: क्या बात है, तालीम बहुत जरूरी है, क्लासिकल बहुत ही सीखना कितना जरूरी है आपको लगता है?
1: बहुत, पहले 3-4-5 साल तो, फिर साइड बाय साइड तुम गाते रहो लाइट म्यूजिक, लेकिन आवाज की तैयारी, जो हरकतें मुरकतें, फिर अपने गले से नहीं, तो कोई अपने हिसाब से लेता है, दैट इज नॉट, मैं अलग गाती हूँ वो बात अलग है, लेकिन ओरिजिनल उनका गा के फिर मैं जो मेरा मेरे हिसाब से करना होता है, कुछ जो वैरायटीज वो करती हूँ, बहुत सारे गाने ऐसे उसमें मैं करती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले उनके जैसा गाओ, मतलब वो जो हरकत है वो ऐसी ही आनी चाहिए,
0: जो ओरिजिनल है पहले
1: वो तो गाओ, नकल नहीं आती उसमें, लेकिन उसमें आवाज की तैयारी भी हो जाती है, और वो हिसाब से बहुत जरूरी है। आवाज अच्छी है मैं भी गाती हूँ वो गाना नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं अभी।
0: बिल्कुल सही।
1: तो ये जो बड़ों बड़े जो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गवाई तपस्या में,
0: जी जी,
1: वो क्यों करते थे इतना?
0: बिल्कुल
1: ऐसे गाते थे ना।
0: सही बात, बिल्कुल सही। मन्नदा की बात करते हैं
1: जी।
0: आपने पहला गाना मराठी में उनके साथ रिकॉर्ड किया, संगीतकार थे सीरा।

0: रामचंद्र,
1: सी रामचंद्र।
0: तो मन्ना दा को किस तरह से आप याद करना चाहेंगी? आपने उनके साथ शो भी किया?
1: एक शो किया बड़ौदा में।
0: अच्छा,
1: बड़ौदा में मन्ना दा ने मुझे एक मतलब एक उनको मैंने पूछा था कि मेरी प्रॉब्लम थी कि हम लोग बड़ौदा में बाय ट्रेन जा रहे थे, तो मेरी आवाज में वो जो मॉड्यूलेशन होता है जो लाइट म्यूजिक के लिए बहुत ही जरूरी है।
0: जी, जी।
1: क्लासिकल में आप प्लेन सुर लगाओ और वही सुर अगर आप लाइट में गाते हो तो उसमें मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो फ्लैट लगेगा और भाव नहीं आएंगे उसमें। तो मेरी आवाज में नहीं था, किसी के आवाज में जाता होता है, किसी के आवाज में। तो मैंने मन्ना दा को पूछा कि मन्ना दा ये कैसा लाने का अपने आवाज में, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे बताया कि एक सुर लगाओ और उसमें अच्छा ऐसे आघात करते जाओ। अच्छा। और मेरे आवाज में अपने आप आ गया वो सब रियाज करके।
0: क्या बात,
1: बहुत ही अच्छा। फिर भी उन्होंने ये भी बोला कि ज्यादा नहीं करना, लेकिन कंप होगा तेरे आवाज में बहुत ही। अच्छा। उनका और मेरा जो डुएट है हाउस ऑफ बैम्बू,
0: जी जी,
1: तो ये नॉन मराठी लोग जो उनके च छ ज मराठी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक लाइन थी ऐसी वो गाने में, बाम्बू चा वना च ज ज बहुत से बाम्बू चा वना झऱ्या चा काठी ये शील सजणे सजणी माझ्याच पाठी।
0: बिल्कुल, उनके लिए टंग ट्विस्टिंग
1: बहुत बहुत। तीन बार हुआ ठीक, चार बार हुआ इतने या अन्ना तेरी मराठी भाषा मेरे को नहीं होगा। अन्ना बोले डरो डरो डरो मैं कुछ करता हूँ। तो उन्होंने वो नीचे डांट वगैरह देते है बराबर करके लाइन में।
0: क्यों ना इस गीत की एक झलक आप सुनवा दे हमें,
1: हाउस ऑफ बैम्बू।
0: जी जी।
1: नंबर 54

0: At the house of the bamboo door, number 54, the house of the bamboo door.
1: क्या बात है, बहुत सुंदर.
0: उनका तो क्या.
1: वाह वाह. मन्ना दा अपने क्लासिकल सिंगिंग के लिए ज्यादा जाने जाते हैं.
0: जी जी जी.
1: हालांकि हर गाना क्लासिकल बेस ही होता है.
0: हाँ.
1: मगर प्योर क्लासिकल गाने प्योर जिनको कहा जाए, जो लाइट कमर क्लासिकल ज्यादा लगते हैं, ऐसे उनके कई गाने.
0: लेकिन दूसरे सिंगरों में भी लक्ष्मी साहब थे, क्लासिकल गाने हैं, ऐसी बात नहीं.
1: बहुत सही.
0: लेकिन उनका जो आवाज में जो ये था दर्द या भारीपन था आवाज में, वो उसमें बहुत असर करता था गाने पे, ऐसा मुझे लगता है. मुझे उनका एक गाना बहुत पसंद है, मेरे प्यारे वतन.
1: वाह,
0: बहुत अच्छे. थोड़ा सुना था.

0: क्या बात है,
1: बहुत अच्छा। ये गाना गाते वक्त रोना आता है, जो एक अंतरा है, माँ का दिल बन के कभी तू सीने से लग जाएगा, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता।
0: वाह वाह,
1: बहुत अच्छा लिखावट,
0: संजीदा गाना।
1: गाने लिखे जाते थे, गाए जाते, संगीतकार।
0: जी जी जी, प्रमिला जी, इतने शोज आपने किए हैं और बहुत नामचीन कलाकारों के साथ भी आपको मंच पर गाने का मौका मिला है। हम रफी साहब को अभी याद करते हैं, रफी साहब के साथ।
1: रफी साहब तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर है उनके। उनके साथ बहुत सारे टूर किए, साउथ अफ्रीका, फिजी, मिडल ईस्ट, फिर जाम्बिया, मलावी, बहुत टूर किए रफी साहब के साथ। और जो उनसे सीखा है ना, मतलब सिर्फ गाना नहीं, स्वभाव के हिसाब से भी। इतने नम्र, और जितना आदमी उतना नम्र स्वभाव। और उनको किसी ने सवाल पूछा, एक पत्रकार परिषद थी, कि आप गायक तो मतलब चोटी के है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप साथ साथ थोड़ा कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन में क्यों नहीं आप हाथ अपना आजमाते।

0: तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो कर रहा हूँ मतलब मेरा गाना उसमें ही मुझे नहीं लगता कि मैं परिपूर्ण हूँ, तो मैं और क्या करूँ और किसमें हाथ क्यों डालूँ।
1: विनम्रता की हद है,
0: हद है, हद है। और इतने नम्र दूसरे अपने साथ में कलाकार, मैं तो उनके सामने बहुत ही छोटी थी, लेकिन जो तारीफ करनी होती है। तो एक दिन मैंने नए नए गाने हम लोग चुनते थे, वो मैंने वो कव्वाली गाई निगाहें मिलाने को जी चाहता है, तो उसमें एक तो बड़ी लंबी चौड़ी उसमें सरगम भी थी, उसमें तान भी थे, तो वो गाया तो लोगों को भी बहुत, साउथ अफ्रीका की याद है
1: जी जी,
0: बहुत पसंद आया लोगों को, वो गाना ही ऐसा है। तो रफी साहब सब लोग बैठे थे, हम प्रोग्राम खत्म हुआ, तो प्रमिला जी आजकल बहुत कठिन कठिन गाने चुन रही है। अपनी तरफ से उन्होंने जो दाद दी है
1: जी, क्या बात, वाह वाह,
0: बहुत अच्छा लगा।
1: रफी साहब के इतने सारे गाने हैं
0: जी,
1: मगर उनका कौन सा गाना आपको ज्यादा पसंद है?
0: ज्यादा पसंद नहीं बोलूंगी, सबसे सब पसंद कि ये जो गाना है उनका, तुम जो मिल गए हो,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: जो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो गाने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी है, और तुम जो मिल गए हो
1: जी जी,
0: हाँ
1: हंसते
0: जख्म
1: जी जी,
0: तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है,
1: हंसते जख्म फिल्म का। जी बिल्कुल वही सुनते हैं।

0: तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है, ऐसा कब किसी ने आपके लिए कहा?
1: जो मैंने कहा 16 साल की थी जब भी उनके मिलने के बाद जहां ही मिल गया,
0: क्या बात है
1: क्योंकि माय हस्बैंड उनके लिए बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा. मैं जो कर रही थी उनमें मैं 5% कर रही थी, 95% उनका सहयोग.
0: क्या बात,
1: बहुत. एक छोटा इंसिडेंट बताती हूँ. उनके पूरे आयुष्य में उन्होंने बहुत बहुत सर्जरीज हुए, उनके 5 मेजर सर्जरीज. उसमें 2 हार्ट बाईपास, 2 एक मैन्यूरिज्म करके है, और 2 किडनी स्टोन की. उस वक्त के रेजर वेजर कुछ नहीं था, स्टेट फाड़ो जाओ किडनी तक और करो जो. तो ऐसा होके भी एक दिन उनकी अचानक से अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ी किडनी स्टोन की. डॉक्टर एस डी बापट करके दादर में है, उन्होंने किया. और दूसरे दिन मुझे टूर पे जाना था. 8 दिन का टूर था.
0: अच्छा.
1: घर में सासू जी थी. लेकिन मैंने बोला नहीं अभी मैं टूर कैंसिल, क्योंकि यह सब अचानक आया. प्रीप्लान तो हमारा टूर था. तो बोला नहीं मैं कैंसिल करती हूँ, कोई बात नहीं, जो नुकसान होगा वो भर देंगे उनका.
0: अच्छा.
1: और बहुत जल्दी इत्तला कर रहे हैं तो उनको भी सुविधा हो जाएगी कैंसिल करने की. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं.
0: अच्छा.
1: तुम कैंसिल नहीं करोगी, तुम जाओ वही नहीं. मतलब हम सासू जी को वही नहीं बोलते थे.
0: अच्छा.
1: वही नहीं मेरे पास है, वो देखेगी. तुम बिंदास जाओ.
0: ओहो.
1: उस वक्त फोन भी ये भी कुछ नहीं था. तो बीच में प्रोग्राम के बाद ट्रंक कॉल बुक करो, फिर वो आधे पौने घंटे के बाद लगे. तो ऐसे सब होके भी उन्होंने ऐसे एक इंसिडेंस है. ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए जिसमें उन्होंने जो मेरा साथ दिया है वो
0: मेरे
1: का दुनिया में किसी हस्बैंड अपनी वाइफ को देगा.
0: बिल्कुल बिल्कुल. कितनी भाग्यशाली आप हैं.
1: बहुत बहुत. मैं तो बोलूं आपको हर स्तर में मैं भाग्यशाली हूँ.
0: जी जी, जी.
1: बचपन से गाना सीखने को उत्तेजन मिला, फिर मौके मिलते गए, कंपटीशन में भाग लिए, फिर प्रोग्राम शुरू किए, फिर रसिकों के आग्रह से और रसिकों के मिला मुझे उनका साथ मिला. उससे वो चले, बहुत चले, 25 साल तक किए. बीच में ये सब रफी साहब जैसे उनके साथ ये टूर हुए. तो मेरा जो एक आयुष्य का आलेख बोलते हैं जिंदगी का, वो चढ़ उतार रहता है, ऐसा बोलते हैं कभी कभी चढ़कर. तो मेरा शुरू से लेकर चढ़ता ही जा रहा है.
0: वाह वाह.
1: इसलिए मैं ईश्वर के भी आभार और बाकी मेरे आसपास जो लोग हैं बाकी के उनके भी आभार मानने चाहिए कि उनकी सबकी बदौलत ये सब हुआ.
0: क्या बात. परिवार की बात चली है
1: जी.
0: तो आपकी अगली पीढ़ी में
1: मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ गाती थी.
0: अच्छा.
1: शो में शुरू से मतलब उन्होंने तब कुछ कि मेरा ही वक्त हुआ मैं कंट्रोल्स कर रही हूँ.
0: अच्छा.
1: क्योंकि उन्होंने तब कोई सिखा नहीं था गाना. अच्छा. वो छोटी थी दोनों. तो उनका जाते हैं उनके पास मतलब वो हुनर था. तो दोनों मेरे शो में गाती थी.
0: अच्छा.
1: हाँ मतलब बाद में बड़ी बेटी की शादी हो गई तो छोटी पे बाहर आ गए.
0: बचपन से ही उन्होंने आपको गाते
1: उन्होंने
0: हुए
1: गाते देखा
0: है.
1: तो उन्होंने
0: तो वो
1: भी गाती
0: वो आप...
1: और लोग पसंद भी करते थे. ऐसे नहीं कि कैसे क्यों आए ऐसे ऐसे नहीं. और हम तब तो जब वो बड़ी हो गई तो मैं थोड़ी सी मतलब उनकी जैसी हम तीनों जैसे. तो किसी ने एक बार स्टेज पे बोला, किसी ने आदमी आके बाद में, तुम तीनों बहने कितनी अच्छी दिखती हो स्टेज पे.
0: क्या बात.
1: बड़ी बेटी एकदम ए हमारी माँ है, वो हमारी बेटी नहीं, हमारी बहन नहीं, बहन नहीं है.
0: क्या बात है, क्या बात. कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट.
1: बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट.
0: जी जी जी. अगर आपसे कहा जाए कि अपने परिवार के लिए एक गाना चुनिए तो कौन सा गीत होगा? आप तीनों ने मिलके जो स्टेज पर गाना गाया होगा.
1: हाँ, हम लोग डुएट भी गाते थे.
0: जी,
1: वो
0: जी.
1: मन क्यों बहका रे बहका वो है. फिर कजरा मोहब्बत वाला वो है. फिर अन्ना जी का अपलम चपलम उस पे डाल भी होता था मेरे शो में. ऐसे सब डुएट दो गाने हम लोग ने. तो वो उसका पैटर्न गाना मेरी बड़ी बेटी का पंख होती तो उड़ाती रे. फिर उसकी शादी हो गई तो दूसरे ने लिया वो पंख होती तो. लेकिन वो गाना जरूरी था हमारे शो में, बहुत लोगों को पसंद.
0: क्यों नहीं यही गीत सुनवा दिया जाए श्रोताओं.
1: अरे बापरे.
0: रामलाल जी का कंपोजिशन.

ये थी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। आज इस बातचीत का पहला भाग आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग अगले हफ्ते।

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: ये है विविध भारती,
2: विविध भारती देश का रेडियो।
3: ओ मेरे पिया दे रंगून किया है महासटैली।
4: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके और रास्ते पर,
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
6: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
4: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
7: आज के फनकार।
4: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
7: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
8: सुनिए,
7: सुनिए एक खुशखबरी।
9: कहिए ना।
7: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
9: शुक्रिया, शुक्रिया।
7: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

हम एफएम सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी हमारे प्राइमरी चैनल से।

0: वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उनसे मिलाने की साजिश में लग जाती है, और वैसी ही चीज़ें हमेशा मेरे साथ होती है। जब जब आपसे बात करने की इच्छा होती है, तब तब मुझे वो मौका मिल जाता है कि मैं अपनी आवाज़ लेकर के आप सभी के सामने हूँ। बिल्कुल जी, शाम हो चली है। नमस्कार, सत श्री अकाल और जी, क्या है आपके हाल चाल? आई होप कि बहुत बढ़िया ही होंगे। और अभी आपने ट्यून इन किया 531 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 102.1 पर युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी, और इसी के साथ फिर से थोड़ी सांस ले लेता हूँ और मैं आ गया हूँ आपके साथ। आपका रेडियो आगे रोहित, और आज मेरे साथ है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपके आज के रेडियो दोस्त और होस्ट विनीता। वैसे रोहित ने बताई दिया है कि किसी चीज़ को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। तो हम दोनों ने जो है सुबह से ही सोच रहे हैं कि आपसे मिले, आपसे ढेर सारी बातें करें, और काफ़ी शिद्दत से जो है हमने चाहा था। तो देखिए, आपसे मिलेंगे और बातें भी करेंगे। आज जो है इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक के साथ, और करेंगे ढेर सारी बातें।

0: रोहित, हम ना बहुत सारे, या मैं यूं कहूं कि हम सभी के मन में, हम सभी के दिमाग में, जहन में बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं. हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, या मुझे ये चाहिए, ये हासिल करना है, ये पाना है. लेकिन उन चीज़ों को पाने में हमें जिस तरीके से जुटना चाहिए, जिस तरीके से हमें उन्हें चाहना चाहिए, जिसमें हमें काम करना चाहिए उन पर, वो हम नहीं करते. ऐसा तुमने देखा है कहीं पर?
1: बिल्कुल, ऐसा बहुत देखने को मिला है कि कई लोग जो है सपने बड़े ऊंचे देखते हैं, लेकिन रियलिटीज में जो है वो इतना काम नहीं कर पाते हैं। एक बोलते भी हैं, सपने और वास्तविकता में बहुत अंतर होता है। जो हम बैठ करके सोचते हैं कि अगर कल हम उठ करके ये सब कर लेंगे और वो सब कर लेंगे और ऐसा ऐसा सब कुछ हमारा रूटीन सेट कर लेंगे, लेकिन जब हम करने लगते हैं वो चीज़, जब करने का समय आता है, उस वक्त तो वो हर एक चीज़ बहुत डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि वो सारी चीज़ हमारे लिए बहुत नई होती है, बहुत अलग होती है। और जब हम एक्चुअल में वो करने जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि जो सपने हम लोग देख रहे हैं, जो चीज़ हम लोग सोच रहे हैं ये कर सकते हैं, एक्चुअल में वो इतनी ईजी नहीं है। मतलब आप किसी भी सक्सेस स्टोरीज़ को अगर सुनेंगे तो उन्होंने फेलियर्स बहुत ज़्यादा फेस किए होंगे। अगर एक सक्सेस स्टोरी उनको मिली होगी तो उसके पीछे कई सारे फेलियर्स की स्टोरी भी उन्हें मिली होगी। और एक्चुअल में और रियलिटी में होता यही है।
0: बिल्कुल. और कई बार ना हम सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, उस पर काम करते ही नहीं है. कि वही जो तुमने बोला कि कल करेंगे, परसों करेंगे, उस पर टाल देते हैं और वो काम फिर वहीं पड़ा रहता है. और देन जब मौका आता है तो हम सोचते हैं अब तो कर ही लेंगे, लेकिन जब आपने उस पर काम ही नहीं किया, उस पर मेहनत ही नहीं की, तो आपको कहाँ से मिलेगा?
1: बिल्कुल, एक बहुत फेमस कोट भी है कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो मेहनत में कमी नहीं रखते। और जब अगर आप पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से, जैसे कि मैंने बोला आपसे, जब हमको बात करने की इच्छा होती है ना, हम उतनी ही शिद्दत से प्रे करते हैं और सोचते हैं कि भैया एक दिन और मिल जाए कि आप लोगों से बात करते, उतनी ही शिद्दत से अगर आप मेहनत भी करें अपने सपनों के लिए, तो एक ना एक दिन जो सक्सेस है, जो आपके सपने आपने सोचा, जो आपका गोल है, वो आराम से पूरा हो जाएगा।

0: अच्छा रोहित, अभी हम जो है ड्रीम्स की बातें कर रहे थे, तो
1: यस
0: जहां तक कि मैं देख रही हूँ ना, हमारे आसपास जो आज की जनरेशन है वो ना, मतलब एक बार जैसे उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई तो वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा, ऐसा सोचते हैं।
1: बिल्कुल। देखो आज की जनरेशन जल्दी हार मान लेती है, ये बहुत ज़रूरी इसलिए हो गया क्योंकि आजकल जो है सोशल मीडिया पर जो टाइम स्पेंड करते हैं ना वो बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई। और अगर कंपैरिजन करें पुरानी जनरेशन से लेकर के नई जनरेशन में, तो पुरानी जनरेशन के पास इतने सारे सोर्स

0: नहीं होते थे और भी कुछ करने के लिए, तो अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो एक जगह पर ही कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करते थे, अगर कुछ और चीज कर रहे हैं तो उसी जगह पर वो पूरा अपना ध्यान जो है केंद्रित करके रखते थे। लेकिन आजकल की जनरेशन है, उनके पास भटकने के ऑप्शंस बहुत सारे हो गए हैं क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे गेम्स आ गए हैं जो कि एडिक्टिव है। तो और जो बोलते हैं ना कि स्पेंड करने का जो टाइम होता है वो बहुत कम हो गया है, लोगों के पास पेशेंस बहुत कम हो गया है। आज की जनरेशन के पास जो पेशेंस है वो बहुत कम हो गया, क्योंकि रील्स आने के बाद ना जो सटल डेटा देखने और कंज्यूम करने का जो कैपेसिटी है लोगों में वो बहुत कम हो चुका है,
1: रील्स
0: और
1: की तो
0: उस
1: तुमने
0: कारण
1: बिल्कुल रील्स की तो तुमने क्या बात कही, मतलब कब 1 घंटे से 4 घंटे जो है सोशल मीडिया पर बिता देते हैं आज की जनरेशन, पता ही नहीं चलता उन्हें।
0: बिल्कुल इसी कारण उनको बुक्स बोर लगने लग जाती है, इसी कारण में उनको जो लेक्चर्स होते हैं वो बोरिंग लगने लग जाते हैं, इसी कारण वो जो सीखने वाली मूवीज होती है वो देखने में भी काफी लोगों को बोरियत महसूस होने लग गई, क्योंकि आजकल जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज्यादा हो गया, और इसी वजह से डिप्रेशन होता है, इसी वजह से जो है करियर स्विच करने के ऑप्शंस आ जाते हैं काफी सारे बच्चों के पास, और इसी वजह से लोग हार भी जल्दी मान लेते हैं कि भैया हम तो कर रहे हैं अब नहीं कर रहे, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो कॉम्पिटिशन है फेक कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है।
1: तो फिर कुल मिलाकर यूं कहें कि दोस्तों हमारी लाइफ में जो है स्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक जगह स्थिर रहिए, एक चीज़ को चुनिए और उस पर ही आप जो है पूरा वक्त दीजिए।
0: बिल्कुल पूरे कंसंट्रेशन के साथ अगर आप मेहनत करेंगे तो सपने पहले ही बताया था बहुत जल्दी और बहुत आराम से पूरे होंगे।
2: शुक्र।

0: बिल्कुल जी, इस म्यूजिकल ट्रैक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। और बहुत इंटेंस बात हो रही थी तो इसी के बीच में ना विनीता, एक और चीज़ है कि पैशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर पैसा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो यूथ है वो इन दोनों के बीच में ना कहीं फंस से गए कि पैशन फॉलो करें या फिर पैसा कमा लें, है ना। तो बहुत एक अलग सी चीज़ हो गई। और इस बीच में ना मेरे को तो एक ही थॉट आता है कि भैया ऐसी चीज़ करो कि पहले तो अपनी इनकम आप स्टेबल कर लो। अगर आपको लगता है कि आपको पैसे की नीड है या फिर फैमिली में पैसों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो पहले आप थोड़ा सा पैसा अर्न कर लीजिए ऐसा, जिससे आपके घर की जो बेसिक नीड है वो पूरी हो सके। और उसके साथ साथ आप अपना पैशन भी फॉलो कीजिए, और जब आपको लगे कि पैशन से आपकी इनकम उतनी हो रही है फिर आप फुल टाइम पैशन फॉलो कर सकते हैं।
1: मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि वैसे तो दोनों ही चीज़ें जो हैं ज़रूरी है, पैशन भी ज़रूरी है और पैसा होना भी ज़रूरी है। पैशन को फॉलो करने से पहले अगर आप स्टेबल नहीं हैं तो आप जो है पहले पैसों पैसे कमाने पे ध्यान दीजिए, या फिर कोई जॉब या कुछ भी ऐसी चीज़ कीजिए जिससे आप स्टेबल हो सकें और अपने पैशन को फॉलो कर सकें, राइट?
0: बिल्कुल ऐसा होता है कि पैशन तो हम में बहुत है करने के लिए, लेकिन अगर हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और एक ऐसी 9 to 6 जॉब कर रहे हैं जिसमें हमको मज़ा नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पैसा तो मिल रहा है लेकिन वो मेंटल सेटिस्फिकेशन जो है वो हमें नहीं
1: होता
0: मिलेगा।
1: है ऐसा, कई बार होता है, और काफी लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं अलग अलग फील्ड्स में कर रहे हैं, लेकिन वो जो उनका आर्ट है, जो उनका पैशन है, उस पर ध्यान नहीं दे पाते, तो वो कहीं ना कहीं जो है गुम होते हैं अपनी लाइफ में।
0: बिल्कुल आज की दुनिया में क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से यूज़ हो रही है, तो आप किसी भी पैशन को फॉलो करते हैं, हर एक पैशन से अच्छी इनकम हो सकती है। बस आपको थोड़ा सा समय उसमें देना है, लेकिन उससे पहले स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चाहें तो कहीं भी जॉब करके अपने पैशन को भी साथ साथ फॉलो कर सकते हैं। और

कहीं जो लड़के, कहीं जो लड़कियां बाहर दूर जहाँ पर काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, ऐसी लाइफस्टाइल में फंसे हुए हैं जहाँ पर उनको घर की बहुत याद आती है, तो आई थिंक उनको भी जो है इस गाने से डेडिकेट कर सकते हैं, वो भी इस गाने से ना रिलेट कर सकते हैं कि भैया सही में उनके बिना वाकई में मन नहीं लगता, क्योंकि कई बार ब्रेकआउट्स होते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि किसी से बात करने की इच्छा होती है, या कई बार है ना हम घर को मिस करते हैं, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कई लोग जो होते हैं वो किसी पर्सन में अपना घर ढूंढते हैं, है ना, किसी इंसान, किसी व्यक्ति में अपना घर मानते हैं और बोलते हैं कि तुम ही मेरा घर हो, जहाँ पे आपसे मिलकर, आपसे बात करके हमें वो सुकून मिलता है। अगर आपकी लाइफ में भी, जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपका घर हो, जो जिसे लगता है कि भैया वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उनसे बात करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और किसी भी रीज़न से अगर आप उनसे कनेक्टेड नहीं हो, या झगड़ा हो गया हो, या बात बात नहीं हो रही हो, या हो रही हो, कुछ भी हो, आप फटाफट से ये जो अगला गाना है उन्हें सुनाइए, क्योंकि ये डेडिकेट हम उनके लिए कर रहे हैं आपकी तरफ से। तो भैया आप फटाफट से उन्हें भी 102.1 पर ट्यून इन करवा लीजिए, क्योंकि युवाणी चल रहा है, युवा पसंद कार्यक्रम है, और आप लोगों के लिए ये अगला ट्रैक हमारी तरफ से।

0: रोहित, कई बार ना, मतलब इस गाने को ही मैं सुनकर कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है कि कई बार ना ऐसा होता है कि हमारे दिल के जो बहुत करीब इंसान होता है ना, वो हमसे थोड़ा दूर होता है, तो उसके बिन कहीं पर भी मन नहीं लगता. कुछ भी काम कर रहे हैं हम, एकदम स्विच करता है उसी की, उसी का जो ख्याल आता है, वो क्या कर रहा होगा, कैसा होगा, क्या कहाँ पर होगा, इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो मुझे याद कर रहा होगा कि नहीं कर रहा. ऐसा तुम्हारे साथ होता है?
1: बिल्कुल ऐसा आई थिंक हर एक के लाइफ में होता है, हर एक के साथ होता है। किसी को जिनसे वो प्यार करते हैं उनकी याद आती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने घर से दूर होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर जॉब कर रहे होते हैं, उनको अपने घर वालों की याद आ रही होती है, अपनी मम्मी को मिस कर रहे होते हैं क्योंकि कल मदर्स डे भी है। तो

0: प्यार है वो भी बता दिया उस गाने से कि तुम ये गाना जो है उनको डेडिकेट करते हैं ना. तो मैं जो मतलब सोचती हूँ कि कई बार ऐसा होता, मतलब ऐसा क्या होता है, ऐसा ही है कि लड़के जो है ना अपनी मम्मी से ज्यादा कनेक्ट होता है, पापा से नहीं.
1: बिल्कुल. शायद ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये मतलब हर एक
0: हाँ
1: लड़के
0: हर
1: के
0: एक
1: साथ
0: लड़के
1: होता है.
0: के
1: और
0: साथ
1: बहुत
0: है.
1: कम ऐसे निकलते जो कि अपने पिता से जो है वो थोड़े फ्रैंक होते हैं और मम्मी से डरते हैं. लेकिन पता नहीं क्यों ये ऐसा ही एक सेट हो गया. इसका मैं मतलब एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही होता है. मैं अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, हालांकि पापा से भी हूँ, लेकिन ज़्यादा क्लोज जो है वो मैं अपनी मम्मी से. कुछ भी मन में होता है ना, आप जा कर के.
0: लड़के जो है मम्मी से शेयर
1: हाँ
0: करते हैं, पापा
1: बिल्कुल.
0: से
1: और
0: उन्हें डर
1: लड़कियां जो होती
0: लगता
1: है
0: है
1: ना
0: बताने में.
1: वो अपने पिता से शेयर करते हैं कि हमें पापा ये चाहिए, वो चाहिए. और लड़के जो होते हैं ना वो मम्मी को बताते हैं, क्योंकि पापा जो है बहुत स्ट्रिक्ट होता है हमको लेकर के. पता नहीं ये एक ऑरा बन चुका है, ये एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है, क्या इसका रीजन है? बिल्कुल किसी के पास इसका सही जवाब नहीं होगा
0: अच्छा
1: आई
0: तुम्हारे
1: गेस.
0: साथ कभी ऐसा, वैसे तुम्हारी भी बहन थी, बहन होगी तो जो है तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ कि बहन ने जो है 60% लाए और तुमने 70 लाए, लेकिन फिर भी तुम्हें जो है डांट पड़ी कि 70 कैसे है.
1: नहीं बेसिकली मेरे में ऐसा केस हुआ है कि मेरे घर में जितनी भी लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है. तो घर की जो लड़कियां हैं वो स्कॉलरशिप ली जाती है, 80% 90% से नीचे उनके आते नहीं हैं. और जो लड़के होते हैं उनको 60% या 70% से ज़्यादा आते नहीं है. मतलब पढ़ाई बहुत ज़्यादा करते हैं लड़के, लेकिन 70% से ज़्यादा आते ही नहीं है. तो ये एक स्टैंडर्ड हमेशा सेट रहा है कि लड़कों को ही मेरे घर में सबसे ज़्यादा डांट पड़ी है, चाहे कोई भी रीज़न हो. तो भैया डांट तो हमने भर भर के खाई है.
0: कोई बात नहीं, अगला गाना जब तुम सुनोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा और डांट जो है तुम भूल जाओगे.
1: शायद
0: वैसे कल मदर्स डे है तो हमारी सभी माओं को हैप्पी मदर्स डे हम दोनों की तरफ से, और सुनते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: निखार इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: पर मल्टीपल अकाउंट्स बने हुए हैं, दो या दो उससे ज्यादा कोई पेज बना हुआ है आपके, तो सिंपल सी चीज है, इंस्टाग्राम में आप जाइए, वहां पर आप अकाउंट सेटिंग में जब जाएंगे तो वहां पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटीज के ऑप्शन के अंदर आपको वेरिफिकेशन विथ सेल्फी का एक ऑप्शन दिया जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया होगा या फिर जो भी मेल एड्रेस आपने रजिस्टर किया होगा उस पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसके बाद आपको एक सेल्फी खिंचवानी होगी अपने फ़ोन के कैमरा से। वो सेल्फी जब वेरीफाई हो जाएगी तो आपका जो अकाउंट है वो भी वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं, अगर आप दो या दो से अधिक या जितने भी आप अलग अलग आईडी यूज़ करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो सारी आईडीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वो सस्पेंड नहीं हो, तो ये वाला जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। और अगर एक ईमेल एड्रेस से ज़्यादा बनी हुई है तो ये कर सकते हैं कि आप उनका ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं या फिर नंबर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम की जो पॉलिसी है वो एक आईडी पर जो है दो से ज़्यादा अकाउंट बनाने के लिए आपको अलाउ नहीं करती है। तो आप ये कर सकते हैं और फिर अपनी सेल्फी वेरीफाई करके भी आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में भी अगर ऐसा कोई डिसीजन होता है तो आपका जो अकाउंट है वो सेफ रहेगा।

0: बिल्कुल जी, इस कार्यक्रम में फिर से आप सभी का स्वागत है। और जो भी युवा हमें सुन रहे हैं ना अविनीता, उन सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अभी अभी ना रेलवे ने एक वैकेंसी निकाली है जिसमें कुल 1644 पद है।
1: अच्छा
0: अप्रेंटिस की जो है ये वैकेंसी है, इसके जो आवेदन है वो 5 मई 2026 को शुरू हो चुके थे और लास्ट डेट जो है 4 जून 2026 तक रहेगी। फीस की अगर हम बात करें तो एकदम फ्री है, निशुल्क है।
1: क्या बात
0: इसमें
1: है।
0: अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी फीस या किसी भी फीस का भुगतान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 10th पास आपका होना ज़रूरी है, इसके साथ साथ ITI की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो अधिकतम 24 साल की होनी चाहिए, जिसमें SC ST और उनको 5 साल की छूट अलग से मिलेगी, OBC वालों को 3 साल की अलग से छूट मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो मेरिट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होगा। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट है www.apprenticeship.gov.in, इस पर आप जा सकते हैं और सारा इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो चेक कर सकते हैं, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए सारी इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। तो आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल जॉब आपके लिए रहने वाली है, रेलवे के अंदर कुल 1644 पोस्ट।

0: रोहित, कई बार ना हमें जो मतलब जल्दबाजी इतनी होती है कि कोई भी स्ट्रीम चूज करना है, कोई भी एक चीज चूज करनी है, तो हम इतनी ज्यादा जल्दबाजी करते हैं कि जो चीज हमारे लिए सही होती है हम वो चूज नहीं कर पाते. और जैसे जैसे हमारे लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक रिग्रेट सा फील होता है कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता है ना.
1: बिल्कुल, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, क्योंकि जब बड़े होते रहते हैं ना, तब तब हमें रियलिटी पता चलती है, एक्सपीरियंस हमारे पास बहुत आता है, मैच्योरिटी बहुत आती है, और सही गलत में पहचान जो है हमारी और अच्छी होने लग जाती है। तो उस वक्त हमें ये लगता है कि काश ये करियर मैंने चूज़ कर लिया होता तो इसमें मेरी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती, या फिर इस जगह पर यहाँ चला जाता, या अच्छे से पढ़ लेता, या फिर कुछ भी काम कर लेता तो आज मैं अलग
0: कुछ
1: जगह पर
0: और
1: होता।
0: होता,
1: हाँ
0: कुछ और होता.
1: बिल्कुल, लेकिन बोलते हैं ना कि जब आपके दिमाग में ये ख्याल आता है, आप तब से ही अगर काम शुरू करने लग जाएं और जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आपको लगता है कि इसमें मैं अच्छे से ग्रोथ कर सकता हूँ,
0: हाँ
1: अगर आप उस फील्ड में स्विच करने लग जाएं तो शायद आने वाले समय में भी फिर आपको यही सेम चीज़ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

0: क्योंकि आप वापस उस पर काम करने लग जाएंगे। सही होगा या गलत होगा, आपके मन में एक रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने ट्राई नहीं किया।
1: और वो चीज जो होती है ना, काश बन के नहीं रहेगी कि
0: हाँ
1: काश मैंने ये किया
0: बिल्कुल,
1: होता।
0: एक हमेशा मन में खुशी रहेगी कि मैंने एटलीस्ट ट्राई किया। अगर मेरे से हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, रिजल्ट बाद के होते हैं, लेकिन ट्राई करना बहुत ज़रूरी होता
1: और
0: है।
1: जो भी मेरी पसंद की चीज थी मैंने वो चूज की।
0: बिल्कुल, तो वो अगर आपके मन में ऐसा लगता है कि एक चीज़ है जो आज भी मिसिंग है और अगर काश मैं ये कर लेता तो आज सब कुछ बहुत अच्छा होता, कोई बात नहीं, अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी देर नहीं हुई है, आप एक बार उसको ट्राई करके देख लीजिए, क्या पता आपका अगला करियर ग्रोथ जो है और आपका जो हाइज है वो
1: हाँ
0: उसमें ही हो।
1: सही कहा।

0: ये गाना कितना प्यारा था।
1: बिल्कुल बहुत अच्छा गाना और बहुत ज्यादा बातें हो गई ना विनीता, ऐसा लग रहा था कि लाइफ आज पूरी डिस्कस हमने यहीं पर कर ली है।
0: बिल्कुल, एक के बाद एक, एक के बाद एक, अलग अलग से टॉपिक्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि एलडीबी हमें अब इजाजत देने के लिए बोल रही है कि थोड़ा समय हमारे पास होने वाला है, एक गाना हम और सुनेंगे और उसके बाद आपसे विदा लेंगे। फिलहाल आइए हम और आप मिलकर सुनते हैं ये वाला म्यूजिकल ट्रैक, उसके बाद लेते हैं ना विदा आपसे।

0: तो दोस्तों फाइनली आपसे जो है विदा लेने का टाइम आ चुका है। हम दो रेडियो बडीज आपके साथ जुड़े हुए थे, मैं विनीता और मेरे साथ
1: मैं था आपके साथ आपका रेडियो रागी रोहित।
0: आज के प्रोग्राम की प्रस्तुति थी राजेश लामरोड की, कंसोल पर हमारे साथ थे पलाश। दीजिए हम दो रेडियो बडीज को इजाजत, फिर मिलेंगे ऐसी ही प्यारी सी शाम में और ऐसी ही खूबसूरत सी प्लेलिस्ट के साथ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम। हम FM सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल RN रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीत प्रमाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोबि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव MA Baby ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही है। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF

0: की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान पीएमजीवाई के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवाई ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम एफएम सेंसिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं प्रोग्राम गुड इवनिंग जोधपुर।

9 मई 2026 की सुनहरी शाम में आप सभी को गुड इवनिंग कहते हुए शुरू करते हैं आज का गुड इवनिंग जोधपुर प्रोग्राम। आज के इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ यूसुफ खान।

कई लोगों को अपनी किस्मत से अच्छा जीवन मिलता है, लेकिन जब कई लोगों को अच्छा जीवन नहीं मिल पाता तो क्या आप खुद अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। उसके लिए आपको करनी होगी मेहनत और सही तरीके से करनी होगी लाइफ की प्लानिंग। टाइगर जिंदा है फिल्म का ये गाना है, आतिफ असलम की आवाज में।

जी हाँ, वीकेंड की ये शाम है और वीकेंड वो टाइम होता है जब पूरे वीक की थकावट को दूर कर हम थोड़ा सुस्ताना चाहते हैं, थोड़ा टाइम अपने साथ बिताना चाहते हैं और थोड़ा मरम्मत करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की। जी हाँ, ज़िंदगी की मरम्मत एक ऐसी बात है जो आपको अटपटी ज़रूर लगती हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी यानी हम खुद जब दौड़ते भागते रहते हैं, हम खुद को खर्च करते रहते हैं, तो थोड़ा रुक कर खुद को मरम्मत करने की, खुद को दुरुस्त करने की बहुत ज़रूरत होती है। और यही मरम्मत और यही जब आप इस ज़िंदगी को दुरुस्त करते हैं तो वो ज़िंदगी लंबी चलती है, खुश नुमा होती है और आपको आनंद देती है। और ज़िंदगी इस तरह बन जाती है कि उसे पार कर लेना, उसको जी लेना बहुत आसान हो जाता है।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: जो बातें सुनता है, जो बातें करता है, जो अपनी कहता है, जो अपनी सुनाता है, जो गाता है, गुनगुनाता है, आपका अपना FM Sun City।

दोस्तों यूथ होते हैं एनर्जी से भरपूर, यूथ चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं, और जब यूथ सही डायरेक्शन में काम करते हैं तो वो काम बहुत अच्छा होता है और उस काम के फायदे बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसा ही कर रहे हैं हमारे जोधपुर के यूथ, जो जोधपुर शहर की कई सड़कों पर जो बैरिकेड लगे हुए हैं और जो डिवाइडर हैं उन पे जो पेड़ हैं बड़े हो जाते हैं और जो रास्ते में आते हैं उनकी कटाई और छंटाई करके उनको सही करते हैं ताकि रास्ते में चलने वालों को वो पेड़ों से, उन पेड़ों से कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह के जो हमारे यूथ काम कर रहे हैं उनकी तारीफ भी की जानी चाहिए और उनको अप्रिशिएट किया जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है।

0: निखार इफको नैनो उर्वरकों का कमाल हर खेत किसान बने खुशहाल
1: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ
2: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशहारी उम्मीद विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर गीता भवन रोड जोधपुर

0: सौम्यता है इसकी पहचान।
1: ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली।
0: FM Sun City, Sun City, Sun City.
2: Radio.
3: छह बजकर 35 मिनट हो चुके हैं। FM सन सिटी पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड इवनिंग जोधपुर।

गुड इवनिंग जोधपुर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सन सिटी चैनल से और मैं हूं आपके साथ यूसुफ खान। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि वो किसी से मिलने भी चले जाएं तो वहां अगर उनके फोन पे कॉल आ जाता है तो वो कॉल पे इतने बिजी हो जाते हैं कि जहां जिस बात को लेकर वो गए हैं उस बात को ही भूल जाते हैं। और ये जब होता है तो जो आपका मेज़बान है जहां आप गए हैं उसको बहुत इरिटेशन होता है, वो सोचता रहता है कि कब ये कॉल ख़त्म होगी और कब बात शुरू हो पाएगी। और इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं वो बहुत ही ख़राब लगने वाले होते हैं। दोस्तों, तो कोशिश कीजिए कि अगर आप में ये आदत है तो इसको जल्दी से जल्दी आप सुधार लीजिए, अदरवाइज़ आपको बहुत परेशानी होने वाली है। आपकी जो बिहेवियर को लेकर है कोई ना कोई जल्द ही आपकी शिकायत भी करने वाला हो सकता है। इसलिए छोटी छोटी चीजों से को आप ठीक करके अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बना सकते हैं। और गुड इवनिंग जोधपुर में ये बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग आयुष्मान खुराना की आवाज में।

0: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
1: एनसीपीसीआर आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कैसे क्लिक में, अरे वाह।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जी हाँ, जानकारी और सतर्कता पूरी जिंदगी में बहुत जरूरी है। आपको हर जगह हर पल विजिलेंट रहना पड़ता है, क्योंकि कब ना जाने क्या हो जाए। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी जिंदगी में आप कोई नई चीज शुरू कर रहे हैं, नया डिसीजन ले रहे हैं, तो पूरी विजिलेंट रहकर, पूरी तरह से सतर्क रहकर आप वो काम शुरू करें।

जो बातें सुनता है, जो बातें करता है, जो अपनी कहता है, जो अपनी सुनाता है, जो गाता है, गुनगुनाता है, आपका अपना FM Sun City।

जी हाँ, जो टी लवर है उनको चाय अपनी ओर खींच ही लेती है। गर्मी का मौसम बहुत तेज है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, लेकिन जो टी लवर हैं, चाय के जो शौकीन हैं, वो जब शाम के वक्त चाय पीने जाते हैं, उस वक्त गर्मी भी 4 बजे के आसपास बहुत तेज होती है, चाय पीना से बच नहीं पाते हैं, और जब पी लेते हैं तो लगता है कि ना पीते तो ज़्यादा अच्छा होता। गर्मी के इस मौसम में टी लवर को हम यही सजेस्ट करेंगे कि चाय की जो क्वांटिटी है, मात्रा कम कर दें, और चाय के जो दूसरे उपाय हैं, जो दूसरी ऑप्शंस हैं, ग्रीन टी आप लें या दूसरे जो ऑप्शंस हैं उनको ट्राई करें, ताकि आप अपनी शौक को भी पूरा कर पाएं और इस बढ़ती गर्मी में अपनी हेल्थ पर भी इसका कोई बुरा असर ना हो पाए। फहीम अब्दुल्ला की आवाज में सैयारा फिल्म का ये गाना। गुड इवनिंग जोधपुर, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं 102.1 FM पर।

अभी आप सुन रहे थे हमारा स्थानीय कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर। हम एफएम सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, शाम के 7 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विशेष जयमाला विविध भारती से।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी। प्रस्तुत है विशेष जयमाला।

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हिंदी फिल्म जगत के जाने माने पार्श्व गायक मनहर उदास द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग।

फौजी भाइयों को मनहर उदास का प्रणाम। प्रणाम मैंने इसलिए बोला कि जब हम अपने घरों में रात को आराम से सो जाते हैं, तब आप ठंड में या कड़ी बारिश में, कड़ी धूप में हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। आप सबको सिर्फ प्रणाम नहीं मगर मनहर उदास का सलाम। फौजी भाइयों, कुछ मेरी पसंद के गीत मैं आपके सामने लाया हूं आज इस कार्यक्रम में, जो आपका बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं करना चाहता हूं मेरे ही गाए हुए एक गीत से, जो मैंने गाया था फिल्म राम लखन के लिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत, और इस गीत को मैंने गाया था अनुराधा पौडवाल जी के साथ। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, और वो इसलिए बजा रहा हूं कि आप सबका नाम लिया और आप सबको याद किया।

इस मधुर गीत के बाद एक और बहुत सुंदर गीत फौजी भाइयों आपकी सेवा में। एक फिल्म आई थी कागज की नाव, शायद आपकी याद में हो। बहुत सुंदर गीत मैंने उसमें गाया सपन जगमोहन जी के संगीत में, और इस गीत में मेरा साथ दिया आशा भोसले जी ने। फौजी भाइयों, मुझे पसंद बहुत है ये गीत और आशा करता हूं कि आप भी इसे जरूर पसंद करेंगे। हर जन्म में हमारा मिलन दो दिलों का उजाला रहे। इस गाने के बारे में मैं आपको खास बात ये बताना चाहूंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बीमार था, और सपन जगमोहन जी के वहां से फोन आया इस गाने के लिए। जब मैं स्टूडियो में पहुंचा तो वहां पे पता लगा कि ये गाना मेरे साथ आशा जी गा रही हैं, और पता लगा कि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। फौजी भाइयों, देखिए ये तकदीर होती है, अगर मैं मना कर देता या आशा जी मना कर देती तो शायद ये गाना नहीं होता, मगर ईश्वर की कृपा से ये गाना हुआ और आप लोगों ने बहुत पसंद किया। सुनिए।

हमारे जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी भाई और आनंद जी भाई के साथ मेरा बहुत ही रिश्ता रहा, बहुत ही उनके साथ करीबी रिश्ता रहा। उन्होंने एक फिल्म में म्यूजिक दिया जिसका नाम था जाबाज। जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिरोज खान साहब की ये फिल्म, और मुझे खुशी इस बात की है कि इस गीत को हमने लंदन में रिकॉर्ड किया, एबी रोड स्टूडियो में, जहां पे पहले बीटल्स रिकॉर्डिंग किया करते थे। और इस गाने को लिखा जाने माने शायर इंदिवर साहब ने, और मुझे आशा है कि आप इस गाने को जरूर पसंद करेंगे। हर किसी को नहीं मिलता यहां प्यार जिंदगी में।

फौजी साथियों, आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म जगत के जाने माने पार्श्व गायक मनहर उदास द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग। कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाया जाएगा इस अंतराल के बाद।

0: अंतराल पूरा हो चुका है और अब हम फिर से सुनवा रहे हैं हिंदी फिल्म जगत के जाने माने पार्श्व गायक मनहर उदास द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग का शेष भाग।
1: फौजी भाइयों, हम सब त्योहारों को मनाते हैं, आप भी मनाते होंगे अपने तरीके से, मगर आप अपने परिवार से दूर हैं, आप हमारे इस शहरी जीवन से दूर हैं, तो ऐसा लगता है कि हर त्योहारों को आप अपने हिसाब से मनाते होंगे। ये गीत मैंने गाया था फिल्म राजपूत के लिए।

फौजी भाइयों, मेरा सौभाग्य है कि 1971 में इंडो पाक वॉर के बाद हमारे बहुत ही जाने माने एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सुनील दत्त साहब ने एक ग्रुप बनाया था, अजंता आर्ट्स। और सुनील दत्त साहब के साथ नरगिस जी और संजय, तो उस वक्त बहुत छोटे थे, वो पूरा ग्रुप बना के साथ में म्यूजिशियंस के साथ, सुनील दत्त साहब का ये मकसद था कि हमारे जवान, हमारे फौजी भाई दूर दराज एरिया में अपना काम कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, कम से कम जाके इस मेहनत में उनको हमें जाके एंटरटेन करना चाहिए। इसलिए हम वो पूरा ग्रुप बना के दत्त साहब के साथ जितने एरियाज थे हमारे, वहां पे हम गए, बॉर्डर एरियाज में, छाम सेक्टर में, पुंछ सेक्टर में, जम्मू में गए। और इतना ही नहीं, हमारे ट्रूप्स ढाका में थे, बांग्लादेश में थे, तो हम दत्त साहब के साथ वहां भी गए, हमारे पूरे फौजी भाइयों का मनोरंजन किया। कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स में, वहां भी हमारे फौजी भाइयों का मनोरंजन किया। ये हमारी खुशकिस्मती है, और ये खुशकिस्मती इसलिए है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका हम शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, मगर जो कर रहे हैं वो कमाल ही कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको ये देशभक्ति का गीत सुनाना चाहूंगा जो मैंने गाया था फिल्म कर्मा के लिए। सुभाष घई साहब की ये फिल्म, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत, ये गीत मैंने गाया था आनंद बख्शी जी का, मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ तू, हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। और ये सही माने में आप लोग बोलते हैं, हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए।

फौजी साथियों, आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म जगत के जाने माने पार्श्व गायक मनहर उदास द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग। कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाया जाएगा इस अंतराल के बाद।

अंतराल पूरा हो चुका है और अब हम फिर से सुनवा रहे हैं हिंदी फिल्म जगत के जाने माने पार्श्व गायक मनहर उदास द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग का शेष भाग।

फौजी भाइयों, उदास भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूं और मेरे छोटे भाई हैं पंकज उदास। एक गाना उन्होंने गाया, ऐसा दिल से गाया कि आदमी जब सुनता है तो रो पड़ता है, और खास तौर से जब अपने देश से दूर, अपने गांव से, अपने वतन से दूर होता है, तब उसको लगता है कि मैं कब पहुंच जाऊं, कब अपने घर जाके अपने परिवार वालों से मिलूं। ये गाना सुनने के बाद हर इंसान सोचता है कि मैं जल्दी से अपने घर जाऊं और अपने परिवार वालों से मिलूं। जब हम भी ये गाना सुनते हैं तो रो पड़ते हैं। मुझे आशा है आपको ये गाना जरूर पसंद आएगा, अपने परिवार की याद दिलाएगा। मेरे छोटे भाई पंकज, जो मुझे जान से प्यारे हैं, उनका गाया हुआ ये गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत फिल्म नाम के लिए, जिसमें उन्होंने खुद फिल्म में एक्टिंग भी की थी। गीत है चिट्ठी आई है।

फौजी भाइयों को खुश करें क्योंकि आप हमारी रक्षा करते हैं, मगर ये शायद दूर की बात है। इस वक्त तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको मजा आया हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मगर जाते जाते आपको फिर सलाम करता हूं और आपको ये फिर से कहता हूं कि जो काम आप कर रहे हैं उसका हमें अंदाजा है, हम महसूस करते हैं जो काम आप कर रहे हैं, हम हमेशा आपके ऋणी हैं। इसलिए हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। मेरा ये गीत फिल्म कुर्बानी से आप सब पे कुर्बान है।

0: फौजी भाइयों, जाते जाते मनहर उदास का सलाम, सिर्फ सलाम नहीं, जय हिंद।
1: फौजी साथियों, अभी आप सुन रहे थे हिंदी फिल्म जगत के जाने माने पार्श्व गायक मनहर उदास द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग।

0: हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
1: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रही कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: आप हैं विविध भारती के संग।

जिज्ञासा जिज्ञासा ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी माइग्रेंट बर्ड डे मनाया जाता है और इस बार की थीम यह है कि हर पक्षी मायने रखता है और आपके अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन भी मायने रखते हैं। अब सवाल यह है कि प्रवासी पक्षी इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं? हर साल भारत में पैसेज माइग्रेंट्स यानी कि रास्ते में रुकने वाले प्रवासी पक्षी आते हैं और लाखों की तादाद में आते हैं। ये पक्षी ना तो गर्मियों में आते हैं और ना ही सर्दियों में, बल्कि मध्य और पूर्वी एशिया में अपने प्रजनन स्थलों से अफ्रीका में अपने शीतकालीन स्थलों की ओर प्रवास करते समय ये पतझड़ और वसंत के मौसम में भारत से होकर गुजरते हैं। गुजरात और राजस्थान पैसेज माइग्रेशन के बहुत बड़े केंद्र हैं। यहां अगस्त से अक्टूबर के बीच हजारों की तादाद में पक्षी गुजरते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बारिश के बाद हरे भरे और कीड़े मकोड़ों से भरे इस इलाके में उपलब्ध भोजन का लाभ उठा सकें। भारत में पैसेज माइग्रेशन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है वो है गुजरात का कच्छ का इलाका। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अफ्रीकी महाद्वीप के करीब है और यहाँ अलग अलग तरह के प्राकृतिक आवास मौजूद हैं। कच्छ से 8 से भी ज्यादा प्रजातियों के पैसेज माइग्रेंट्स गुजरते हैं, जिनमें यूरोपियन रोलर, रेड बैग्ड और रेड टेल्ड श्राइक, स्पॉटेड फ्लाई कैचर, रूफ टेल्ड स्क्रब रॉबिन, ग्रेटर व्हाइट थ्रोन, कॉमन कुकू और ब्लू चीक्ड बी ईटर शामिल हैं। इनमें से रोलर कुकू और बी ईटर की कुछ आबादी भारत के भीतर ही प्रजनन भी करती है। भारत में बहुत सारे पक्षी उत्तरी एशिया, यूरोप, साइबेरिया और टुंड्रा के क्षेत्र में बर्फीली सर्दियों के शुरू होते ही निकल पड़ते हैं। वहां से लंबी यात्रा करके ये बर्ड्स भारत आते हैं और कुछ महीनों तक यहाँ रहते हैं। गर्मी के मौसम के पहले ये यहाँ से वापस चले जाते हैं। इन प्रवासी पक्षियों में साइबेरियन सारस, ग्रेटर फ्लैमिंगो, रफ तिदार, गुलाबी पेलिकिन और गैडवाल प्रमुख हैं। पृथ्वी के ध्रुवों और मध्य अक्षांशों के इलाकों के बीच मौसम और जलवायु में बहुत ही ज्यादा फर्क देखा जा सकता है, लेकिन इस फर्क की वजह से उत्तरी ध्रुव के पास रहने वाले बहुत सारे पक्षी सर्दी का मौसम आते ही सर्दी से बचने के लिए अपने इलाके छोड़ देते हैं और वो गर्म इलाकों की तरफ चले जाते हैं। यहाँ उन्हें उनके हिसाब से कम ठंड का सामना करना पड़ता है, इसलिए जीवन आसान रहता है। भारत के मैदानी इलाकों में झीलों के आसपास सर्दी के मौसम में बहुत सारे पक्षी आते हैं। वैसे आपको बताएं कि मुंबई जहाँ से हम बोल रहे हैं यहाँ पर भी फ्लेमिंगो आया करते हैं और बड़ी तादाद में आया करते हैं। मुंबई में शिवड़ी नाम का इलाका है जहाँ बड़ी तादाद में फ्लेमिंगो आते हैं। इसके अलावा कोंकण के समुद्र तटों पर भी बहुत सारे पक्षी आया करते हैं। भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं साइबेरियन क्रेन या सारस। सारस परिवार की एक विलुप्त प्राय प्रजाति है जो साल का ज्यादातर समय वेस्टर्न साइबेरिया में गुजारती है। ये पक्षी सर्दी के मौसम में साइबेरिया की कड़ाकेदार ठंड से बचने के लिए 4000 मील यानी अगर इसमें 1.5 का

आप गुणा कर दें तो आपको पता चलेगा कि कितने किलोमीटर होते हैं, इतने किलोमीटर दूर आते हैं। और भारत में ये मुख्य रूप से भरतपुर नेशनल पार्क में दिखाई देते हैं। भारत में ग्रेटर फ्लेमिंगो बड़ी तादाद में झुंड के रूप में आते हैं। मुख्य रूप से ये गुजरात में कच्छ की खाड़ी में आते हैं, जो इनका सबसे बड़ा प्रवास होता है। ये केवल अक्टूबर के महीने में आते हैं। रफ पक्षी आर्कटिक के टुंड्रा इलाके के पक्षी हैं। ये भी बर्फीली सर्दियों में भारत का रुख करते हैं, जहां इस मौसम में इन्हें भरपूर खाना मिलता है। लेकिन गर्मियों में इनकी ब्रीडिंग का मौसम शुरू होने पर ये अपने इलाके में वापस लौट जाते हैं। तिदारी यानी उत्तरी शोवेलर को खोखार, गिराह या पुनन भी कहते हैं। ये सतही बतख है जो यूरोप और उत्तरी एशिया में रहती है, लेकिन सर्दियों में दक्षिणी यूरोप, अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप में ये चली आती है। और हैरत की बात यह है कि अपनी इस यात्रा में ये हिमालय पर भी थोड़े समय के लिए ठहरती है। पेलिकन अपनी विशाल चोंच के लिए जाने पहचाने जाते हैं। इनमें गुलाबी पेलिकन या रोजी पेलिकन के पंखों का फैलाव लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तकरीबन 12 फुट का फैलाव होता है इनके पंखों का। ये उत्तर भारत में ऐसे तालाबों और झीलों में आना पसंद करते हैं, जहां मछलियों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। गैडवाल छोटे भूरे रंग की बतख होती है, जो सर्दियों में भारत में बड़ी तादाद में आती है। यूरोप से आती है और साफ पानी वाले तालाबों और झीलों में रहना पसंद करती है। तो भाई, हमने आपको बताया कि 9 मई को माइग्रेंट बर्ड्स डे मनाया जाएगा। और भारत में कौन कौन से प्रवासी पक्षी किन इलाकों में किस मौसम में आते हैं, क्या कभी आपने इन पक्षियों को देखने की और अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की है?

10 मई का दिन एक और महत्वपूर्ण दिन है। दुनिया भर में माओं के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समर्पण को फोकस में रखने वाला ये दिन है मदर्स डे। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है और इस बरस 10 मई को ये दिन मनाया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि मदर्स डे की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। 20वीं सदी की बात है। फिलाडेल्फिया में एना जार्विस रहती थी, जिन्होंने अपनी माँ को याद किया और इस तरह से मदर्स डे की नींव पड़ी। एना जार्विस की माँ सारी जिंदगी महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा के लिए कोशिशें करती रही थी। 1905 में उनकी मौत हुई और बाद में एना ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का फैसला किया। 12 मई 1907 को एना जार्विस ने वेस्ट वर्जीनिया के ग्रेफ्टन में चर्च में अपनी माँ की याद में एक सभा आयोजित की। 5 साल के भीतर अमेरिका के लगभग हर राज्य में ये दिन मनाया जाने लगा। फिर 1914 में अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने इसे नेशनल हॉलिडे घोषित कर दिया। इसके बाद ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया और अब 10 मई को मदर्स डे है, यानी कल के दिन आपको अपनी माँ को करना है सलाम, उनको कहना है थैंक यू और उन पर प्यार बरसाना है।

8 मई को पूरी दुनिया में रेड क्रॉस डे मनाया गया और आज हम आपको बता रहे हैं कि ये दिन कैसे शुरू हुआ। असल में ये आयोजन रेड क्रॉस की इंटरनेशनल कमेटी के संस्थापक जीन हेनरी डोनेंट की जयंती के दिन मनाया जाता है, उनके जन्मदिन के दिन। विश्व रेड क्रॉस डे मनाने का विचार सबसे पहले 1933 में टोक्यो जापान में आयोजित एक इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट सम्मेलन में आया था और इसकी वजह यह थी कि हेनरी ड्यूनेंट की स्मृति को सलाम किया जाए और मानवता की मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। हेनरी ड्यूनेंट ने 1859 में सोलफिरेनो की लड़ाई में घायल सैनिकों की मदद की थी। ड्यूनेंट ने इस बारे में एक किताब लिखी जिसका नाम था अ मेमोरी ऑफ सोलफिरेनो और युद्ध के समय घायलों की सहायता के लिए उन्होंने एक वॉलंटियर ग्रुप बनाया था। मानवता को जिंदा रखने के लिए उन्होंने लगातार कोशिशें की थी। इत्तेफाक की बात है कि 2026 की विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम भी यही रही, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव।

दिन में आजकल एक वाक्य बहुत ज्यादा बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। इस बरस सचमुच बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और मौसम विभाग ने तो ये अनुमान भी दिया है कि मई के महीने में हीट वेव बहुत दिनों तक कायम रह सकती है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि 2026 में सुपर एल नीनो डेवलप हो सकता है। ये मौसम का एक ऐसा पैटर्न है जिसने 1877-78 में भयानक तबाही मचाई थी। अब जिस तरह से पूरी दुनिया में समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन बढ़ रही है, उसके हिसाब से दोबारा सुपर एल नीनो के आने का खतरा बढ़ गया है। वैसे एल नीनो के बारे में आपको बता दें कि ये जलवायु से जुड़ी एक घटना है जिसमें प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से का पानी कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाता है। इससे पूरी दुनिया में मौसम का पैटर्न बदल जाता है। कहीं सूखा पड़ता है, कहीं बाढ़ आती है, मॉनसून कमजोर हो जाता है। प्रशांत महासागर की सतह का तापमान तेजी से बढ़ रहा है जो एल नीनो के बनने का संकेत भी है और इस वजह से गर्मी ज्यादा पड़ सकती है। गर्मी का मौसम आम लेकर आता है, आइसक्रीम और कुल्फी, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां, छतों पर सोना, इन तमाम खुशगवार चीजों के बीच आजकल जो चीज सभी को परेशान कर रही है वो है हीट वेव। हीट वेव के वजह से गर्मियों का जो मजा है वो एक तरह से खराब ही हो रहा है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को खबरदार रहने के लिए चेतावनी भी जारी की है। भाई जिज्ञासा कार्यक्रम में तो हम आपकी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं ना। आप सभी के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये हीट वेव आखिर है क्या। गर्मियों में गर्म हवाएं बहुत तेज चलती हैं, लेकिन हीट वेव तब होती है जब किसी जगह का मैक्सिमम तापमान मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री या उससे ज्यादा हो और पहाड़ी इलाकों में कम से कम 30 डिग्री या उससे ज्यादा हो। अब हीट वेव आपके लिए क्यों खतरनाक है ये हम आपको बता रहे हैं। हीट वेव या लू के चलते चक्कर आ सकता है, सिरदर्द और बेहोशी जैसे लक्षण दिख सकते हैं। इससे पानी की जोरदार कमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर में बहुत भारी गिरावट भी आ सकती है। लंबे समय तक अगर शरीर का तापमान बहुत ज्यादा रहे तो दिल, फेफड़े, गुर्दे, लीवर और दिमाग जैसे अंगों पर भी खतरा बना रहता है। अगर आप बहुत ज्यादा एबनॉर्मल गर्मी में निकलते हैं तो मस्तिष्क में सूजन भी आ सकती है, हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। अब इसके लक्षण हम आपको बता दें, जब कोई व्यक्ति हीट वेव के संपर्क में आता है तो उसका इंटरनल सिस्टम ऊंचे तापमान के अनुकूल नहीं बन पाता। लंबे समय तक गर्मी के संपर्क में रहने के बाद सबसे पहले तो पसीना आने की जो काबिलियत है उस पर असर पड़ता है। पसीना हमारे शरीर को ठंडा करने की एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जब किसी व्यक्ति को पसीना आना बंद हो जाता है तो उसे गर्मी से थकावट होने का खतरा ज्यादा होता है और हीट स्ट्रोक आ सकता है। इसलिए फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए, घर के अंदर रहने चाहिए, ठंडा लेकिन जरूरत से थोड़ा ज्यादा लिक्विड लेना चाहिए। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि लू से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। आमतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को कड़ी दोपहर में बाहर नहीं निकलना चाहिए। हाइड्रेटेड रहना चाहिए, यानी खूब पानी पीना है, बहुत सारे तरल पदार्थ अपने खाने पीने में शामिल करना है। प्यास लगने का इंतजार मत कीजिए, 30 मिनट का अलार्म सेट कीजिए। हर 30 मिनट में आपको थोड़ा ना थोड़ा पानी जरूरी तौर पर पीना है। कैफीन या अल्कोहल या चीनी वाले लिक्विड से बचें, बर्फीली चीजों से बचें क्योंकि ये पेट में ऐठन पैदा कर सकती हैं। जहां तक संभव हो घर के अंदर रहें, सुबह और शाम के वक्त ही आपको बाहर निकलना है। सूती कपड़े पहने, ढीले ढाले कपड़े पहने, छाता लेकर चल सकते हैं, साथ में पानी लेकर चल सकते हैं। हीट वेव से बचिए, गर्मी का सामना कीजिए। अब देखिए मौसम का जो असंतुलन है उसका जो असर है वो तो पूरी दुनिया में दिखाई दे ही रहा है। जिज्ञासा कार्यक्रम में अब हम तलत महमूद को नमन कर रहे हैं। मखमली आवाज के धनी जाने माने गायक तलत महमूद ने आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से गाने का सफर शुरू किया था। 16 बरस की उम्र में उनका पहला गाना आकाशवाणी के लिए रिकॉर्ड हुआ। इसके बाद एक प्रसिद्ध म्यूजिक कंपनी ने उन्हें ऑफर दिया और उनके रिकॉर्ड निकाले गए। फिर 1944 में तलत महमूद गायक और अभिनेता बनने की चाहत लिए कोलकाता चले गए। तपन कुमार के नाम से कई बंगाली और हिंदी गाने गाए और उसके बाद वो मुंबई आ गए और मुंबई में उन्होंने कुछ फिल्मों में एक्टिंग की, लेकिन वो एक बड़े

पार्श्व गायक के रूप में बहुत ज्यादा मशहूर हो गए। तलत महमूद के चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। 9 मई को उनकी याद का दिन होता है। हम उन्हें विनम्र नमन कर रहे हैं।

था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख, स्वर और संपादन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। अब मिलेंगे अगले हफ्ते। जिज्ञासा।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी, और हम आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियां। आज आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पत्नी का पत्र। आइए सुनते हैं इस कहानी का दूसरा भाग, वाचन स्वर ममता सिंह का।

0: पिछले हफ्ते आपने सुना, मृणाल अपने पति के नाम पत्र लिखती है जिसमें अपनी अतीत की तमाम कड़वाहटों का जिक्र करती है। मृणाल की शादी उस घर में होती है जहां पुरुष सत्ता है, स्त्री को दासी या फिर विनम्रता की प्रतिमूर्ति के रूप में देखा जाता है, जहां स्त्री का अपना कोई विचार या अस्तित्व नहीं होता। विधवा माँ की मृत्यु के बाद मृणाल की जेठानी की बहन बिंदु अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार से तंग आकर मृणाल के घर आ गई। पूरी कहानी मृणाल की जबानी है, सुनिए आगे।
1: जब विधवा माँ की मृत्यु के बाद मेरी बड़ी जेठानी की बहन बिंदु ने अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार के मारे एक दिन हमारे घर में दीदी के पास आश्रय लिया था, तब तुम लोगों ने सोचा था ये कहाँ की बला आ गई है ना? देखा, तुम लोग सब मन ही मन खींच उठे हो, इसलिए ना कि उस निराश्रिता लड़की को घेर कर मेरा संपूर्ण मन एकाएक जैसे कमर बांध कर खड़ा हो गया हो। पराए घर में पराए लोगों की अनिच्छा होते हुए भी आश्रय लेना कितना बड़ा अपमान है। यहाँ ये अपमान भी जिसे विवश होकर स्वीकार करना पड़ा हो, उसे क्या धक्का देकर एक कोने में डाल दिया जाता है? हाँ, बाद में मैंने अपनी बड़ी जेठानी की दशा देखी। उन्होंने अपनी गहरी संवेदना के कारण ही बहन को अपने पास बुलाया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसमें पति की इच्छा नहीं है, तो उन्होंने ऐसा भाव दिखाना शुरू किया मानो उन पर कोई बड़ी बला आ पड़ी हो। उन्हें इतना साहस न हुआ कि वे अपनी अनाथ बहन के प्रति खुले मन से स्नेह प्रकट कर सके। वे पतिव्रता थी, पतिव्रता। उनका ये संकट देखकर मेरा मन और भी दुखी हो उठा। मैंने देखा बड़ी जेठानी ने खास तौर से सबको दिखा दिखा कर बिंदु के खाने पहनने की ऐसी रद्दी व्यवस्था की और उसे घर में इस तरह नौकरानियों के से काम सौंप दिए कि मुझे दुख ही नहीं लज्जा भी हुई। मैं सबके सामने इस बात को प्रमाणित करने में लगी रहती थी कि हमारी गृहस्थी को बिंदु बहुत सस्ते दामों में मिल गई है। ढेरों काम करती है फिर भी खर्च

की दृष्टि से बेहद सस्ती है। मेरी बड़ी जेठानी के पितृवंश में कुल के अलावा और कोई बड़ी चीज न थी, न रूप था न धन। किस तरह मेरे ससुर के पैरों पड़ने पर तुम लोगों के घर में उनका ब्याह हुआ था, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। वे सदा यही सोचती रही कि उनका विवाह तुम्हारे वंश के प्रति बड़ा भारी अपराध था, इसीलिए वे सब बातों में अपने आप को भरसक दूर रखकर अपने को छोटा मानकर तुम्हारे घर में बहुत ही थोड़ी जगह में सिमट कर रहती थीं। लेकिन उनके इस प्रशंसनीय उदाहरण से हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती रही। मैं अपने आप को हर तरफ से इतना बेहद छोटा नहीं बना पाती। मैं जिस बात को अच्छा समझती हूँ उसे किसी और की खातिर बुरा समझने को मैं उचित नहीं मानती। इस बात के तुम्हें भी बहुत से प्रमाण मिल चुके हैं। बिंदु को मैं अपने कमरे में घसीट लाई। जीजी कहने लगी, मझली बहू गरीब घर की बेटी का दिमाग खराब कर देगी। वे सबसे मेरी इस ढंग से शिकायत करती फिरती थीं, मानो मैंने कोई अपराध कर दिया हो। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वे मन ही मन सोचती थीं कि चलो जान बची, अब अपराध का बोझ मेरे सिर पर पड़ने लगा। वे अपनी बहन के प्रति खुद जो स्नेह नहीं दिखा पाती थीं, वही मेरे द्वारा प्रकट करके उनका मन हल्का हो जाता। तुम्हें तो मालूम है, देखने में वो इतनी कुरूप थी कि अगर वो फर्श पर गिरकर अपना सिर फोड़ लेती तो भी लोगों को घर के फर्श की ही चिंता होती। और यही कारण है कि माता पिता के न होने पर ऐसा कोई न था जो उसके विवाह की सोचता। और ऐसे लोग भी भला कितने थे जिनके प्राणों में इतना बल हो कि उससे ब्याह कर सके। बिंदु बहुत डरती डरती मेरे पास आई, मानो संसार में उसको जन्म लेने का कोई अधिकार ही न था। इसीलिए वो हमेशा अलग हटकर आंख बचाकर चलती। उसके पिता के यहाँ उसके चचेरे भाई उसके लिए ऐसा एक भी कोना नहीं छोड़ना चाहते थे जिसमें वो फालतू चीज की तरह पड़ी रह सके। जो भी हो, वे लोग थे खूब। यही कारण है कि जब मैं बिंदु को अपने कमरे में बुला लाई तो उसकी छाती धक धक करने लगी। उसका डर देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे कमरे में उसके लिए थोड़ी सी जगह है, ये बात मैंने बड़े प्यार से उसे समझाई। लेकिन मेरा कमरा एक मेरा ही कमरा तो नहीं था, इसलिए मेरा काम आसान नहीं हुआ। आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। मेरे पास दो चार दिन रहने पर ही उसके शरीर में न जाने लाल लाल क्या निकल आया, शायद घमौरी रही होगी या ऐसा ही कुछ होगा। तुमने कहा शीतला, क्यों न हो, वो बिंदु थी ना। तुम्हारे मोहल्ले के एक अनाड़ी डॉक्टर ने आकर बताया, दो एक दिन और देखे बिना ठीक से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन दो एक दिन तक धीरज किसको होता, बिंदु तो अपनी बीमारी की लज्जा से ही मरी जा रही थी। मैंने कहा शीतला है तो है, इसमें क्या, मैं उसे अपने जच्चा घर में लिवा ले जाऊंगी और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। इस बात पर जब तुम सब लोग मेरे ऊपर भड़क कर क्रोध की मूर्ति बनकर गए, यही नहीं जब बिंदु की जीजी भी बड़ी परेशानी दिखाती हुई उस अभागी लड़की को अस्पताल भेजने का प्रस्ताव करने लगी, तभी उसके शरीर के वे सारे लाल लाल दाग एकदम विलीन हो गए। मैंने देखा कि इस बात से तुम लोग और भी व्यग्र हो उठे। कहने लगे अब तो वाकई शीतला बैठ गई है। क्यों, क्योंकि वो बिंदु थी ना। अनादर के पालन पोषण में एक बड़ा गुण है, शरीर को वो एकदम अजर अमर कर देता है, बीमारी आने का नाम नहीं लेती। मरने के सारे आम रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं, इसीलिए रोग उसके साथ मजाक करके चला गया। हुआ कुछ नहीं, लेकिन ये बात अच्छी तरह स्पष्ट हो गई कि संसार में ज्यादा साधनहीन व्यक्ति को आश्रय देना ही सबसे कठिन है। आश्रय की आवश्यकता उसको जितनी अधिक होती है, आश्रय की बाधाएं भी।

उसके लिए उतनी ही विषम होती हैं। बिंदु के मन से जब मेरा डर जाता रहा, तब उसको एक और कुग्रह ने पकड़ लिया। वो मुझे इतना प्यार करने लगी कि मुझे डर होने लगा। स्नेह की ऐसी मूर्ति तो संसार में पहले कभी नहीं देखी। बहुत दिनों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी कि मुझे अपने रूप की बात याद आती। अब इतने दिनों बाद ये कुरूप लड़की मेरे उस रूप के पीछे पड़ गई। दिन रात मेरा मुंह देखते रहने पर भी उसकी आंखों की प्यास नहीं बुझती थी। कहती, जी जी, तुम्हारा ये मुंह मेरे अलावा और कोई नहीं देख पाता। जिस दिन मैं स्वयं ही अपने केश बांध लेती, उस दिन वो बहुत रूठ जाती। अपने हाथों से मेरे केश भार को हिलाने डुलाने में उसे बड़ा आनंद आता। कभी कहीं दावत में जाने के अतिरिक्त और कभी मुझे साज श्रृंगार की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन बिंदु मुझे तंग कर करके थोड़ा बहुत सजाती रहती। वो लड़की मुझे लेकर बिल्कुल पागल हो गई थी। तुम्हारे घर के भीतरी हिस्से में कहीं रत्ती भर भी मिट्टी ना थी। उत्तर की ओर की दीवार में नाली के किनारे न जाने कैसे एक गाब का पौधा निकला। जिस दिन देखती कि उस गाब के पौधे में नई लाल लाल कोपले निकल आई हैं, उसी दिन जान पड़ता कि धरती पर बसंत आ गया है। और जिस दिन मेरे घर गृहस्थी में जुटी हुई इस अनाहत लड़की के मन का और छोर किसी तरह रंग उठा, उस दिन मैंने जाना कि हृदय के जगत में भी बसंत की हवा बहती है। बिंदु के स्नेह के दुसंवेग ने मुझे अधीर कर डाला था। मैं मानती हूँ कि मुझे कभी कभी उस पर क्रोध आ जाता, लेकिन उस स्नेह में मैंने अपना एक ऐसा रूप देखा जो जीवन में मैं पहले कभी नहीं देख पाती थी। वही मेरा मुख्य स्वरूप है। इधर मैं बिंदु जैसी लड़की को जो इतना लाड़ प्यार करती थी, ये बात तुम लोगों को बड़ी ज्यादती लगी। इसे लेकर बराबर खटपट होने लगी। जिस दिन मेरे कमरे से बाजू बंद चोरी हुआ, उस दिन इस बात का आभास देते हुए तुम लोगों को तनिक भी लज्जा न आई कि इस चोरी में किसी न किसी रूप में बिंदु का हाथ है। जब स्वदेशी आंदोलनों में लोगों के घर की तलाशियां होने लगी, तब तुम लोग अनायास ही ये संदेह कर बैठे कि बिंदु पुलिस द्वारा रखी गई स्त्री गुप्तचर है। इसका और कोई प्रमाण न था। प्रमाण बस इतना ही था कि वो बिंदु थी। तुम लोगों के घर की दासियां उनका कोई भी काम करने से इनकार कर देती थी। उनमें से किसी से अपने काम के लिए कहने में वो लड़की भी संकोच के मारे जड़वत हो जाती थी। इन्हीं सब कारणों से उसके लिए मेरा खर्च बढ़ गया। मैंने खास तौर से अलग से एक दासी रख ली। ये बात तुम लोगों को अच्छी नहीं लगी। बिंदु को पहनने के लिए मैं जो कपड़े देती थी, उन्हें देखकर तुम इतने क्रुद्ध हुए कि तुमने मेरे हाथ खर्च के रुपए ही बंद कर दिए। दूसरे ही दिन से मैंने सवा रुपए जोड़े की मोटी कोरी मिल की धोती पहनना शुरू कर दिया। और जब मोती की माँ मेरी जूठी थाली उठाने के लिए आई, तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने खुद जूठा भात बछड़े को खिलाने के बाद आंगन के नल पर जाकर बर्तन मल लिए। एक दिन एकाएक इस दृश्य को देखकर तुम प्रसन्न न हो सके। मेरी खुशी के बिना तो काम चल सकता है, पर तुम लोगों की खुशी के बिना नहीं चल सकता। ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। एक बात याद करके मुझे आश्चर्य होता रहा है कि तुम लोगों ने बिंदु को जबरदस्ती अपने घर से विदा क्यों नहीं कर दिया। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम लोग मन ही मन मुझसे डरते थे। विधाता ने मुझे बुद्धि दी है। भीतर ही भीतर इस बात को माने बगैर तुम लोगों को चैन नहीं पड़ता था। अंत में अपनी शक्ति से बिंदु को विदा करने में असमर्थ होकर तुम लोगों ने प्रजापति देवता की शरण ली।

0: की लिखी कहानियाँ। आज आपने सुना इस कहानी का दूसरा भाग। वाचन स्वर था ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।
1: सुनो कहानी।

चित्रलोक कार्यक्रम को लेकर मैं हूँ आपके साथ नेहा अगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से और लीजिए इस कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं बजरंगी भाईजान फिल्म से। अरिजीत सिंह की आवाज है और इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत प्रीतम का।

0: लावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए सुनिए बाघी फिल्म का गीत मोनाली ठाकुर और मीट ब्रोज की आवाजों में। कुमार की रचना और धुन बनाई है मीट ब्रोज ने।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए इस अंतराल के बाद सुनिए अजहर फिल्म का गीत, अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाजें। मनोज यादव ने इस गीत को रचा है, प्रीतम का संगीत।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में सुनिए ये गीत जिसे लिखा है विधु विनोद चोपड़ा ने। शांतनु मोइत्रा ने इसकी धुन बनाई है। फिल्म का नाम वजीर।

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
0: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लीजिए अब आपको सुनवाते हैं देव नेकी और परोमा दास गुप्ता की आवाजों में गब्बर इज बैक फिल्म का गीत। कुमार ने इसे लिखा है, चिरंतन भट्ट का संगीत।

गब्बर इज बैक इस फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इजाजत, नेहा अगरकर देसाई को नमस्कार।

0: हम FM सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। रात के 8:45 होने वाले हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 99 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
3: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम

भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 14454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रज जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया।

0: गया जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडीए ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। एपीईडीए के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष, विशेष शुक्ला।
0: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एम आई

0: आरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह FM सन सिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं प्रोग्राम आपके लिए विविध भारती से।
2: साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं शीर्षक संगीत। हाँ, यानी कि वही गीत जिनके नाम पर फिल्में बनी हैं, या फिर ऐसा कह लीजिए कि जो फिल्म का नाम है वही गीतों में भी आपको मिलेगा। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं सिंघम फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है सुखविंदर सिंह ने। स्वानंद किरकिरे के बोल है, अजय अतुल का संगीत।

0: इस प्रोग्राम के प्रायोजक
1: आपको सुनवाते हैं रामलीला फिल्म का ये गीत, आवाज भूमि त्रिवेदी की। सिद्ध इसे लिखा है और संजय लीला भंसाली का संगीत।

0: कुल टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
1: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
0: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
2: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध।
1: डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

अन्विता दत्त और कुमार का लिखा ये अगला गीत सुनिए, जिसे संगीतबद्ध किया है विशाल और शेखर ने। बैनी दयाल और नीति मोहन की आवाजें हैं। फिल्म का नाम बैंग बैंग।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम के अंत में शानदार फिल्म का ये गीत, अमित त्रिवेदी की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत।

शानदार फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज थी अमित त्रिवेदी की, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे और धुन बनाई थी अमित त्रिवेदी ने। इसी के साथ शीर्षक संगीत का ये कार्यक्रम आपके लिए यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
1: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। बड़े टेंशन में वो शॉर्ट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

एक ऐसी आवाज जिसका फिल्म संसार में कभी कोई जोड़ नहीं आया, एक आवाज जो अपने आप में निराली है, जो हमारी तन्हाइयों और हमारी उदासियों की साथी है।

तलत महमूद का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मंजूर अहमद थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने पंडित एससीआर भट्ट से मॉरिस कॉलेज लखनऊ में तालीम ली। ये दौर था सन 1920-1930 का। तलत महमूद शास्त्रीय और सुगम संगीत की तालीम ले रहे थे। सन 1939 तलत महमूद ने बतौर गायक अपना करियर शुरू किया। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में तलत महमूद गजलें गाने लगे। ये वो दौर था जब तलत महमूद दाग, मीर, जिगर, मिर्जा गालिब और फैज अहमद फैज जैसे शायरों के अशार आकाशवाणी लखनऊ के लिए रिकॉर्ड करवाया करते थे। इसके बाद तलत महमूद चले गए कोलकाता। कोलकाता में एचएमवी के लिए तलत महमूद गाने लगे तपन कुमार के नाम से। उन्होंने वहां कई रचनाएं रिकॉर्ड करवाई। सन 1941 तलत महमूद की पहली डिस्क आई और ये वो गाना था जिसने उन्हें बेहद मशहूर कर दिया। गाने के बोल थे, सब दिन एक समान नहीं था।

तलत महमूद ऐसे चुनिंदा गायकों में से थे जिन्होंने गैर फिल्मी गजलें और गीत गाकर वो शोहरत हासिल की थी जो लोग फिल्मी गाने गाकर करते हैं। यहां तक तलत महमूद ने फिल्मों में गाना शुरू नहीं किया था। तलत महमूद को फिल्मों में अभिनय का भी शौक रहा। अपने करियर में तकरीबन 16 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। कोलकाता में बनी 3 फिल्में तो बड़ी ही कामयाब रहीं। तपन कुमार के नाम से वो बांग्ला में कुछ गीत भी रिकॉर्ड करवाते थे और अमूमन उनके संगीतकार हुआ करते थे कमल दास गुप्ता। सन 1949 में तलत महमूद मुंबई आ गए। उनका मकसद था फिल्मों में गाने गाना। यहाँ आकर उन्होंने बेमिसाल संगीतकार अनिल बिस्वास से मुलाकात की। अनिल बिस्वास को तलत की आवाज जम गई और फिल्म आरजू में आया उनका पहला

0: कोई।
1: इस गाने से तलत महमूद की फिल्मी कामयाबी का सफर शुरू होता है। इसके बाद तलत महमूद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक कई बेमिसाल फिल्मों में उनके गाने आए और लोगों ने इन गानों को बड़ा मशहूर किया। एक दौर ऐसा भी आया था जब तलत महमूद को अपनी आवाज की लर्जिश पर भरोसा नहीं था। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास के लिए तलत बिल्कुल सपाट गा रहे थे।

तब अनिल विश्वास ने उन्हें जोर से डांटा था और उन्हें ये यकीन दिलाया था कि तुम्हारी आवाज की ये जो लर्जिश है, ये जो कंपन है, यही तुम्हारी ताकत है। और उसके बाद बड़े आत्मविश्वास के साथ तलत महमूद ने गाया। उनकी आवाज का ये कंपन उनकी खासियत बन गया। आइए सन 1957 में आई फिल्म देख कबीरा रोया का ये गाना सुना जाए।

अब्दुलत महमूद ने बहुत सारे संगीतकारों के साथ गाया। उनकी आवाज का एक खास टेक्सचर था, उनकी आवाज का एक अलग ही रंग था और दिलीप कुमार जैसे नायकों पर उनकी आवाज ली गई। आइए सुना जाए सन 1952 में आई फिल्म दाग का गाना।

संगीतकार सलील चौधरी के लिए तलत महमूद ने सन 1961 में लता मंगेशकर के साथ ये गाना गाया फिल्म छाया के लिए। आज भी ये फिल्म संसार के कुछ बेमिसाल गानों में से एक है।

सन 1959 में सुनील दत्त के लिए फिल्म सुजाता में तलत महमूद ने ये गाना गाया था। हीरो टेलीफोन पर हीरोइन से अपने मन की बात कह रहा है।

अब संगीतकार मदन मोहन के साथ तलत महमूद के गानों की बात की जाए और आपको सुनवाया जाए सन 1964 में आई फिल्म जहां आरा का ये गाना।

मदन मोहन ने एक बेमिसाल गाना तैयार किया जिसमें तलत महमूद के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और भूपेंद्र की भी आवाजें थीं। ये था फिल्म हकीकत का गाना, सुनिए।

सबसे दिलचस्प बात ये है कि तलत महमूद ने कई फिल्मों में गाने गाए, उसके बावजूद वे अपने गैर फिल्मी गीतों और गजलों के एल्बम तैयार करते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी की। आइए फिल्म सोने की चिड़िया का गाना सुना जाए। ये फिल्म साल 1958 में आई थी। इस फिल्म के हीरो खुद तलत महमूद थे। ये गाना सुना

घूमकर अपने संगीत कंसर्ट भी किए। तलत महमूद का करियर काफी लंबा रहा। उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 800 गाने गाए हैं। अपनी खास तरह की आवाज, अपने खास तरह के अंदाज के लिए आज भी सुनने वाले उन्हें बेहद प्यार कर

यानी फिल्मों में गायकी, गैर फिल्मी गाने, गीत और गजलें और एक्टिंग, इतना सब किया तलत महमूद ने। उन्होंने सारी दुनिया में घूम

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक तलत महमूद पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

एक ताजमहल, एक लता मंगेशकर, एक विविध भारती। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
2: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

सदियों से होते आए हैं हुस्न इश्क के चर्चे, हुस्न की वादियों में पलता है इश्क। कोई समझे तो एक बात कहूं, इश्क तौफीक है, गुनाह नहीं।

0: वो एक मुख्तसर सी मुलाकात, कुछ नाजुक से जज्बात छलके थे उनकी आंखों में, आते आते कुछ ठहर सा गया था उनके लबों पर, एक छलक देख लिया था कभी आपको, वो कसक दिल से आज तक न गई। काश काश वो एक और मुलाकात का वादा तो करते, देख तो कोई है तेरा मुंतजिर कब से, देख तो कोई है तेरा मुंतजिर कब से, अब तो सूरत दिखा हिजाब न कर।
1: रुख से

मोहब्बतों में नुमाइश की जरूरत ही कहाँ। ये तो वो जज्बा है जिसमें खामोशी भी गुनगुनाती है। लहराते आंचल की बात न पूछिए, रह गई जो दिल में वो बात न पूछिए। इकरार मोहब्बत की अदा तो देखिए हुजूर, जुल्फें जब वो मेरे चेहरे पर बिखरा देती है, बड़ी सादगी से फिर वो मुस्कुरा देती है।

जिंदगी इश्क मोहब्बत से जमा होती है। कल तलक सीने से लगाए फिरते थे दिल अपना, तुमने मुस्कुरा के जो देख लिया दिल मेरा न रहा। ये जलवे ये अदाएं तेरी, जुबां है जवां मोहब्बत की, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी।

फिर कहां का हिसाब रह जाता है इश्क जब बेहिसाब हो जाए। मोहब्बत की कोई हद कोई सरहद नहीं, गुर्बतें लाख खूबसूरत हों, दूरियों में भी दिलकशी है अभी।

वो दरियाए इश्क तुम जिसमें डूब रहे हैं हम सफीने की तरह, उफ ये लहराते गेसू ये उड़ता आंचल, जी चाहे कि उम्र गुजर जाए इनके साए तले। पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, जुल्फों को रुख पे डाल के झटका दिया कि

0: महकते गीतों के साथ आज के छाया गीत का सफर बस यहीं तक। दीजिए इजाजत शेफाली कपूर को, नमस्कार।
1: ये है विविध भारती,
2: विविध भारती देश का रेडियो।
3: मेरे पिया दे रंगू, पिया है वहां से टेलीफोन।
4: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
5: अब सुन रहे थे कार्यक्रम छाया गीत।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
3: आज के फनकार।
1: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
3: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधता।
2: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: हम एफएम सनसिटी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर रात के 11 बजने वाले हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। समाचार पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ

0: जुलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nishit Pramanik and Shudhiram today were

प्रदर्शनी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 5:10 और 59 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का भोर सुहानी की वो महफिल जिसमें जिंदगी से जुड़ी हुई बातें तो होती हैं साथ ही साथ किस तरीके से हम जिंदगी को आगे बढ़ाएं उसकी बातें भी होती है और ये भी कि हम जिंदगी में उन तमाम मुश्किलात से कैसे मुकाबला करते हुए आगे बढ़े और अपनी मंजिल को तय करें लेकिन हर सुबह जब हम जगते हैं हर सुबह जब हम अपने बिस्तर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले हम ईश्वर का नाम लेते हैं खुदा का नाम लेते हैं और खुदा के नाम के साथ ही ईश्वर के नाम के साथ ही हम हर नए दिन का आगाज करते हैं तो हम भी आज उसी खुदा उसी ईश्वर के नाम हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे आज हम भी एक नई सुबह में कदम रख चुके हैं तो आइए आज की सुबह का आगाज करते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर भोर सुहानी में और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज तो आइए आज के इस सफर को